0: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो
0: प्रभात आराधना, हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।

0: संध्या संक्षिप्त समाचार आपसे अदिति नमस्कार।
1: नमस्कार नीतुषा, श्रोताओं को भी नमस्कार। मगोबाकवा जलाशय के गिरते जल स्तर से सबसे ज्यादा फ्लैन विलियम्स वाले इलाके हैं जो प्रभावित हुए हैं, जो उसके नेटवर्क से जुड़े हैं। कुछ इलाकों में कई दिनों से पानी सप्लाई बाधित हुआ है, जिससे सैंपल आलेभ योंक्लेफ फिनिक्स आदि कई इलाकों में कल रात लोगों ने सड़कों पर उतर कर आक्रोश जताया। रास्तों पर पहिए जलाए गए। स्थल पर मौजूद हुए सांसद कुशल लोबी ने लोगों से शांति बनाने और CWA से जल्द जरूरी कदम उठाने की मांग की। उन्होंने कहा कि वे इस बात से भली भांति वाकिफ हैं कि पानी को लेकर देश में स्थिति चिंताजनक है, लेकिन जनता को राहत पहुंचाए जाने के लिए प्रयास तेज किए जाने चाहिए। उन्होंने CWA से पानी के टैंकर भेजने के बजाय दिन में कुछ घंटों के लिए पानी सप्लाई करने की मांग की। सेंट्रल वाटर अथॉरिटी के संचार अधिकारी सुनील गोपाल ने आश्वासन दिया कि स्थिति संभालने के लिए जल्द से जल्द जरूरी कदम उठाए जाएंगे। उनके अनुसार एक कोऑर्डिनेटर की नियुक्ति की जाएगी जो सीधे रूप से बाशिंदों के संपर्क में रहेंगे ताकि उनकी समस्याओं पर सही तरीके से काम किया जा सके। उन्होंने आश्वासन दिया कि CWA के स्तर पर ध्यान रखा जा रहा है कि ऐसी अस्थिरता फिर पैदा न हो। कांग्रेस के विक्टोरिया अस्पताल में एक नई ट्रॉमा एंड इमरजेंसी यूनिट की स्थापना की गई है, जिसका उद्घाटन स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज द्वारा किया गया। इस नई इकाई का मकसद है तत्काल चिकित्सा सहायता की आवश्यकता वाले मरीजों को दी जाने वाली देखभाल बेहतर करना। ये यूनिट मरीजों को इमरजेंसी की स्थितियों में ज़्यादा बेहतर और कुशल सेवा देने के उद्देश्य से कायम की गई है, साथ ही अस्पताल में भर्ती मरीजों का तेजी से इलाज हो सकेगा। उद्घाटन के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने मेडिकल सेवाओं को आधुनिक बनाने और लोगों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने की अहमियत पर बल दिया। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में रूसी ताकतों द्वारा किए गए मिसाइल हमले में उत्तरी यूक्रेन में एक आवासीय इलाके में 19 लोगों की मौत हुई है, जिनमें 5 बच्चे शामिल बताए जाते हैं। 30 से ज्यादा फ्लैट्स नष्ट हो गए हैं। यह हमला तब हुआ जब लोग अपने घरों में सोए हुए थे। यूक्रेनियन राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने इसे मानवता के खिलाफ अपराध कहा। आखिर में स्थानीय मौसम का हाल। आम हालत, पूर्व से आ रहे बादलों का असर रह रहकर हमारे इलाके पर पड़ रहा है। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान, आज सुबह के दौरान पूर्व और ऊंचाइयों पर हल्के बादल घिरे रह सकते हैं, हल्की बारिश की संभावनाएं हैं, जबकि देर दोपहर बाद पूर्व, पश्चिम, दक्षिण पश्चिम और सन प्लातू वाले कुछ इलाकों पर बादल घिराएंगे और रह रहकर बारिश होगी। रात के दौरान भी पूर्व, दक्षिण और सेंट्रल प्लातू पर बारिश की संभावनाएं हैं। हवा पूर्व की तरफ से 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। प्रवाल रेखा के परे समंदर खराब रहेगा। दक्षिण पूर्वी समंदर में 2.50 मीटर तक की ऊंची लहरें उठेंगी। सुबह के दौरान दूर समंदर में न निकलने की सलाह दी जाती है। तापमान सेंट्रल प्लाटो पर न्यूनतम 17 से 19, अधिकतम 23 से 25 डिग्री सेल्सियस, साहिली इलाकों पर न्यूनतम 20 से 22, अधिकतम 27 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सुबह 5:45 पर सूर्योदय हुआ, शाम को 6:09 पर सूर्यास्त होगा। तो ये थी अब तक की खबरें। हम आपसे मिलेंगे ठीक 6:30 मुख्य समाचार बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
2: News on NBC Play and NBC.mu. 819 kilohertz, ये है रेडियो मॉरिशस।

0: ভোর কি বেলা তাজগি ভরি শুরুয়াত। ভোর কি বেলা তাজগি ভরি শুরুয়াত। नया दिन नई शुरुआत एमबीसी रेडियो के साथ श्रोताओ, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 6:04 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में। भोर की बेला इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का हम स्वागत करते हैं। श्रोताओ, गुरुवार का दिन है आज और आज है 9 अक्टूबर 2026। तो चलिए इस समय से लेकर दिन के 11 बजे तक हम आपका साथ देने वाले हैं। तो चलिए, सुबह सवेरे आप हमारा साथ दे रहे हैं, आप जुड़ चुके हैं, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ निभाने के लिए। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत हम करने जा रहे हैं शुभ विचारों के साथ और आपके लाए हैं दिव्य दृष्टि कार्यक्रम।
1: मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन की प्रस्तुति में सुनिए कार्यक्रम दिव्य दृष्टि, ज्ञान भक्ति एवं श्रद्धा का प्रतीक दिव्य दृष्टि।
2: ओम योन्तः प्रविश मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिलशक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। दिव्य दृष्टि के समस्त श्रोताओं को आचार्य सकलानी का सादर अभिवादन। श्रोताओं, ये कार्यक्रम मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल फेडरेशन के तत्वावधान में प्रस्तुत किया जा रहा है। आज हम पितृपक्ष में चल रहे हैं, अभी हमारा पितृपक्ष का कार्यक्रम चल ही रहा है। पूरे देश भर में सभी लोग अपने अपने पितरों का पूजन कर रहे हैं। पितरों का पूजन श्रोताओं बहुत आवश्यक है। चतुर्दशी तिथि शुक्रवार को, कल जो चतुर्दशी तिथि पड़ती है, तो ये चतुर्दशी तिथि विशेष रूप के पितरों का पूजन करने के लिए, जिनका अकाल मृत्यु हुआ है या हथियारों से जिनकी मृत्यु हुई है, एक्सीडेंट वगैरह जिनका हुआ है, तो ऐसे व्यक्तियों के उद्धार के लिए चतुर्दशी तिथि, मतलब कल जो तिथि पड़ रही है उसमें, और ये पिंड इत्यादि कर्म सब करना चाहिए, क्योंकि चतुर्दशी तिथि में और ये सब कर्म करने से ऐसे लोगों की मुक्ति प्राप्त होती है जो अकाल मृत्यु जिनकी हो गई है। तो और फिर उसके पश्चात शनिवार को सर्वपित्री है, जिन लोगों को पूरे पितृपक्ष में समय नहीं मिल पाया अपने पितरों का पूजन करने के लिए, वो कम से कम पितृ अमावस्या के दिन, जो पितृपक्ष का आखिरी दिन होता है जो शनिवार को पड़ रहा है, इस दिन सभी पितरों का पूजन कर दें। जिनको समय नहीं मिल पाया है वो अवश्य करें, है ना, क्योंकि ये अमावस्या है। अमावस्या तो वैसे भी और पितरों का ही तिथि होती है, तो इस तरह से पितरों का पूजन करने के पश्चात अब हमारा जो हिंदू संसार है वो अगले रविवार 11 तारीख से जो हैं हम आश्विन शुक्ल पक्ष में प्रवेश कर रहे हैं। और आश्विन शुक्ल पक्ष, श्रोताओं आप सभी लोग जानते ही हैं कि ये शक्ति की पूजा करने का बहुत बहुत सुंदर समय होता है। इसको हम और दुर्गा पूजा के नाम से ये समय संसार में प्रचलित है। आश्विन शुक्ल पक्ष इसको हम कहते हैं, आश्विन नवरात्र जो हैं ये 11 तारीख से प्रारंभ हो रहा है। नवरात्र में हम आद्याशक्ति भगवती जगदम्बा दुर्गा माँ का पूजन करते हैं। दुर्गा माँ के विषय में और मार्कंडेय पुराण कहता है कि देव्या यया तदमिदं जगदात्मशक्त्या निशेष देवगणशक्ति समूह मूर्त्या

अखिल देव महर्षि पूज्याम भक्त्या नतास्म विदधातु शुभानिसानः। हे माँ, हे भगवती, हे जगदम्बा, अरे आपका जो स्वरूप है ये तो संपूर्ण देवताओं का ही शक्ति समूह है। आपने अपनी शक्ति से संपूर्ण विश्व को व्याप्त कर रखा है, इसलिए आप समस्त देवों तथा महर्षियों के द्वारा परम पूज्य हो। ऐसी माँ भगवती आद्या शक्ति। श्रोताओं, दुर्गा का एक नाम शक्ति है। हमारे ऋषियों ने बारंबार कहा है कि आप दुर्गा की पूजा करो, अर्थात शक्ति की पूजा करो। मतलब निकलता है कि आप शक्तिशाली बनो, कहने का अर्थ ही यही है। क्योंकि इस संसार में श्रोताओं केवल शक्तिशालियों का ही सम्मान है। संपूर्ण संसार जो है, यदि आप देखेंगे तो शक्तिशालियों के सामने ही नमन होता है, वो नमस्कार करता है। यदि संसार किसी के पीछे खड़ा होता है तो किसके पीछे? शक्तिशाली के पीछे। संसार किसी के सामने झुकता है तो किसके सामने? शक्तिशाली के सामने झुकता है। तो ये संपूर्ण संसार में शक्तिशाली का ही गुणगान है। और हिंदू धर्म के हमारे जो आचार्य हैं, हमारे क्रांति दृष्टा जो ऋषि हैं, उन्होंने और सनातन काल से ही वो कहते आ रहे हैं कि आप शक्ति की पूजा करो, अर्थात शक्तिशाली बनो। और इसीलिए हमको माँ भगवती आद्या शक्ति जगदम्बा दुर्गा का जो विग्रह है, यह साक्षात शक्ति का प्रतिमूर्ति है, ये शक्ति का सिंबल है। दुर्गा माँ को और ऋषियों ने किसके ऊपर बिठाया? शेर के ऊपर। कोई किसी की मजाल है कोई शेर के नज़दीक जा सके, है ना? माँ दुर्गा को शेर के ऊपर, शेर कितना शक्तिशाली पशु है, इसको भी और जिन्होंने कंट्रोल कर रखा है, मतलब प्रत्येक व्यक्ति के अंदर में श्रोताओ ये अहंकार, लोभ, लालच रूपी जो है ये सब चीज़ें अंदर भरी पड़ी हुई हैं। ये भी एक प्रकार का और खूंखार शेर के समान हैं। इन सब को नियंत्रण करोगे तभी आपका जीवन है और मंगलमय होगा, तभी आप जो हैं सचमुच शक्तिशाली माने जाओगे। इसीलिए ऋषियों ने माँ दुर्गा को शेर के ऊपर बिठाया, है ना? शक्ति का प्रतीक है दुर्गा माँ, मतलब हम दुर्गा माँ की पूजा करते करते स्वयं शक्तिशाली बने। क्योंकि हमारे ऋषियों का कहना है कि भाई जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? कहते हैं शक्ति है। लेकिन सामान्य संसार में यदि हम ये सवाल लोगों को पूछेंगे तो सभी लोगों का लगभग एक ही उत्तर होता है। यदि आपसे कहा जाए कि भाई आपके ज़िंदगी में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो सबका एक ही उत्तर होता है, पैसा, अर्थ, धन। लेकिन हमारे ऋषियों का कहना ये नहीं है श्रोत। हमारे ऋषि लोग मानते हैं कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है शक्ति। धन भी है, ऐसा नहीं है कि धन नहीं है, धन भी है, लेकिन धन नंबर एक नहीं है श्रोताओं। धन का नंबर दो दूसरा है, धन नंबर दो है। क्योंकि हम मनुष्य बने हैं, हमारे जीवन में चार गोल हैं, चार चीज़ प्राप्त करने के लिए हम मनुष्य बने। पहला चीज़ क्या है? धर्म, जिसको मैं अभी शक्ति के रूप में वर्णन कर रहा हूँ। धर्म, शक्ति, सब एक ही चीज़ें हैं। तो पहली चीज़ है धर्म, अर्थात शक्ति। दूसरी चीज, दूसरा नंबर है अर्थ, अर्थ मतलब वेल्थ, धन दौलत। तो धन, धन का स्थान दूसरा है। आपके पास में धन बहुत है और शक्ति नहीं है, तो फिर वो धन का क्या करोगे? फिर वो धन किस कार्य का, है ना? तो इसलिए जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज शक्ति। और आपके पास शक्ति है तो फिर धन कमाना कौन सा कठिन है? शक्तिशाली सब कुछ कर सकता है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने हमेशा से कहा कि आप शक्ति की पूजा करो, अर्थात आप शक्तिशाली बनो। क्योंकि माँ दुर्गा जो है संपूर्ण देवताओं का ही वास्तव में स्वरूप है। हे, प्रार्थना करते हुए कहा कि हे माँ, यस्या प्रभावमतुलम भगवान अनंतो ब्रह्मा हरश्च नहि वक्तुमलम बलम च सा चंडिका अखिल जगत परिपालनाय नाशाय च शुभभयस्य मतिं करोतु। कि भाई, जिन माँ भगवती आद्या शक्ति जगदम्बा का अतुलनीय प्रभाव और उसका शौर्य का वर्णन करने में साक्षात भगवान शेषनाग

0: जिनके हजार मुख हैं, स्वयं भगवान ब्रह्मा जी, स्वयं भगवान शिव जी भी असमर्थ हैं, ऐसी भगवती चंडिका समस्त विश्व का और पालन कर रही है। हे माँ, हमारा भी कल्याण कर माँ भगवती के सामने और प्रार्थना करो। इस समय माँ भगवती और अपने दिव्य रूप में आपके घर में, आपके गांव में, आपके बैठका में विराजमान हैं। तो अब हमको चाहिए कि हम विधिवत माँ भगवती आदिशक्ति जगदम्बा का व्रत करके उनका कथा सुने, उनके नाम मंत्र का जाप करें। कथाओं में जरूर जाना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक मंदिर, प्रत्येक बैठका में और दुर्गा पूजाओं का आयोजन और पूरा हो रहा है। मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल फेडरेशन से संबंधित जितने भी मंदिर हैं, प्रत्येक मंदिर में और सभी लोग दुर्गा पूजा कर रहे हैं। हमारा आग्रह होगा कि आप लोग अपने अपने गाँव के मंदिरों में जाएं, ताकि आप माँ भगवती की पूजा करें और साथ साथ में वहाँ जो संदेश आपको प्राप्त होगा, जो कथा प्राप्त होगी, जो मंत्र वहाँ प्राप्त होंगे, उससे आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा श्रोताओं। इसलिए कहा, या श्री ही स्वयं सुकृतिनाम भवनेश्वर लक्ष्मी ही पापात्मनाम कृतधियाम हृदयेषु बुद्धिः श्रद्धा सताम कुलजन प्रभवस्य लज्जा ताम त्वाम नतास्म परिपालय देवी विश्वम। जो माँ भगवती धर्मात्माओं के घर में महालक्ष्मी के रूप में निवास करती है, तो वही भगवती और जो पापी लोग होते हैं, दुरात्मा लोग होते हैं, उनके घर में निर्धनता के रूप में निवास करती है। जो लोग विशुद्ध अंतःकरण वाले लोग होते हैं, उनके घर में वृद्धि के रूप में निवास करती है, और सज्जनों के घर में श्रद्धा तथा कुलीन मनुष्यों के घर में लज्जा के रूप में विराजमान रहती है। ऐसी भगवती जगदम्बा का आप पूजन कीजिए माँ भगवती, और आपके सब मनोकामनाओं को परिपूर्ण करेगी। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ माँ भगवती से कि हे माँ, हे जगदम्बा, और आप हमारे समाज में सबको सद्बुद्धि दें, हमारे घरों में सुख समृद्धि और सुख शांति दें। ओम शांति ही, शांति ही, शांति ही।
1: मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन की प्रस्तुति में अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम दिव्य दृष्टि।

श्रोताओ, 6:17 हुए हैं स्टूडियो की घड़ी में। आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से ये विज्ञप्ति सुनिए। जी हाँ श्रोताओ, रूट बासें सेंट क्रॉ के रहने वाले निवासियों को, जिनमें है रूट बासें नंबर 1, नंबर 2 और ले कॉर्नू के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि गुरुवार 8 अक्टूबर 2026 को सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4:30 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। इस असुविधा के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है और बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई सामान्य पर लाई जाएगी। तो श्रोताओ, अभी आप सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से एक विज्ञप्ति सुन रहे थे। ये रेडियो मॉरिशस है। तो आइए इस हिंदुस्तानी सभा को आगे बढ़ाएंगे। इस समय से लेकर 6:30 बजे तक आपके लिए चंद भावगीत।

0: भोर की बेला ताजगी भरी शुरुआत।
1: श्रोताओं, जीवन में कभी सुख है तो कभी दुख है, कभी धूप है तो कभी छांव है, लेकिन हम परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है और जिंदगी जो है आगे बढ़ने का नाम है। मुश्किलें तो आती ही रहेगी, लेकिन हमें बहुत ही शक्ति के साथ इसका सामना हमें करना पड़ता है। तो चलिए श्रोताओं, कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे सकारात्मक सोच के साथ, सकारात्मक विचारों के साथ हमें आगे बढ़ते ही रहना है। तो आइए, कुछ ही घड़ी में 6:30 बजने वाले हैं, पूरा समाचार बुलेटिन आप सुन सकेंगे और 7 बजे हम मिलेंगे सुबह का नज़ाना कार्यक्रम को लेकर।

0: घड़ी मिलाइए, सुबह के ठीक 6:30 बज रहे हैं। नमस्कार, इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। शुरुआत आज की सुर्खियों के साथ। सैफ और लाले भैया क्लेफ ऑफ फिनिक्स आदि कई इलाकों में कल रात लोगों ने सड़कों पर उतरकर आक्रोश जताया। रास्तों पर पहिए जलाए गए। CWA की तरफ से जल्द राहत पहुंचाए जाने का आश्वासन। सौर पैनल बिठाने के लिए खेती से जुड़े सहकारिता संगठनों को 2 मिलियन रुपए तक की नई आर्थिक मदद उपलब्ध कराई जा रही है। इस सुविधा से लाभ उठाने के लिए आवेदन भेजने के लिए 19 नवंबर तक का समय। कौंदोज के विक्टोरिया अस्पताल में एक नई ट्रॉमा एंड इमरजेंसी यूनिट की स्थापना। मकसद है तत्काल चिकित्सा सहायता की आवश्यकता वाले मरीजों को दी जाने वाली देखभाल बेहतर करना। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, रूसी ताकतों द्वारा किए गए मिसाइल हमले में उत्तरी यूक्रेन में एक आवासीय इलाके में 19 लोगों की मौत। नमस्कार, इस बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। मऊ बाकवा जलाशय में गिरते जल स्तर के से सबसे ज्यादा प्रिंस विलियम्स वाले इलाके प्रभावित हो रहे हैं जो उसके नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। कुछ इलाकों में कई दिनों से पानी सप्लाई बाधित हुआ है, जिससे सैपल आले भैया क्लेफ ऑफ फिनिक्स आदि कई इलाकों में कल रात लोगों ने सड़कों पर उतर कर आक्रोश जताया। रास्तों पर पहिए जलाए गए। कुछ निवासियों की प्रतिक्रियाएं जानते हैं। स्थल पर मौजूद हुए सांसद कुशल लोबी ने लोगों से शांति बनाने और CWA से जल्द जरूरी कदम उठाने की मांग की। उन्होंने कहा कि वे इस बात से भली भांति वाकिफ हैं कि पानी को लेकर देश में स्थिति चिंताजनक है, लेकिन जनता को राहत पहुंचाए जाने के लिए प्रयास तेज किए जाने चाहिए। उन्होंने सेंट्रल वाटर अथॉरिटी से जनता के लिए पानी के टैंकर भेजने के बजाय दिन में कुछ घंटों के लिए पानी सप्लाई करने की मांग की। कुशल लोबिन को सुनते हैं।
1: Situation là, pas juste ici là, dans Saint-Paul. Les généraliser la circonscription numéro 15, il y a une circonscription qu'on trouve dans beaucoup d'habitants. Donc, énormément d'enfants peuvent composer l'examen. La solution, il n'y a pas juste pour amener un camion. C'est pas juste là. À Elancy, vous pouvez aller pareil, Castel, pareil, dans Hermitage, pareil, dans Cité-la-Caverne, pareil. Donc, mon appel dans une situation pareille de crise, la CWA prend la responsabilité, l'ordre des lots, au moins désertant, avec un peu de pression pour dire qu'on remplit ce tank. Ou pas besoin de déranger camions qui pouvaient alimenter 2, 3, 4, 5 la case. Donc la situation, c'est une situation à l'ormante, nous comprenons, mais nous dans une situation de crise. Ou pas capable, 5 jours, une goutte de l'eau n'a pas coulé. Elle l'appelle simple, elle l'appelle solennelle, elle l'appelle patriotique qui me peut faire à la CWA.
0: सेंट्रल वाटर अथॉरिटी के संचार अधिकारी सुनील गोपाल ने आश्वासन दिया है कि स्थिति संभालने के लिए जल्द से जल्द जरूरी कदम उठाए जाएंगे। उनके अनुसार एक कोऑर्डिनेटर की नियुक्ति की जाएगी जो सीधे रूप से बाशिंदों के संपर्क में रहेंगे ताकि उनकी समस्याओं पर सही तरीके से काम किया जा सके। उन्होंने आश्वासन दिया कि CWA के स्तर पर ध्यान रखा जा रहा है कि ऐसी अस्थिरता फिर पैदा न हो। सुनील गोपाल को सुनते हैं।
2: Nous pas ciré qui nous pénance la catastrophe répétée. C'est un travail qu'il faut faire de coordination. Nous avons un coordinateur qui nous peut recruter pour mettre au terrain. Le travail, c'est justement être à l'écoute de l'habitant. Parce qu'il ne faut pas

0: si, comment dire, nous avons débordé là, là nous venons écouter. Non, nous avons fini avec ce problème-là avant, prenant plus de travail sur le terrain, avec les élus, avec les forces vives, avec toute la population, parce que nous avons tout le monde pour nous capables de passer un moment difficile qui nous était là.
1: देश में पानी के भंडार की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। महोबा खवा जलाशय में जलस्तर इन दिनों लगभग 35.8% पर है। पिछले दो सालों के दौरान बारिश की कमी के कारण उपलब्ध जल संसाधनों पर और कई इलाकों में जलापूर्ति पर असर पड़ रहा है, खासकर उन इलाकों में जो महोबा खवा की सप्लाई नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए सेंट्रल वाटर अथॉरिटी अपने संसाधन प्रबंधन में बदलाव ला रही हैं और लोगों तक पानी पहुंचाने के लिए विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं। छवि बाचू, आस्था गोबिन।
2: महोबा में इस समय करीब 36% पानी बचा है। वाटर रिसोर्सेज यूनिट के निदेशक लोमेश जगू के मुताबिक पिछले दो साल से बारिश कम हो रही है। बीते 30 साल में ये दूसरा सबसे सूखा साल रहा है।
3: C'est-à-dire en 24-25 et 25-26, nous sommes une fall, comment nous dire, la pluie d'été. Tout le long de l'année, les fines déficitaires, et c'est même qui remplit les réservoirs là, hein, l'ici, en 24-25, l'ici 71%, et 25-26, l'ici à peu près 66%. Et ça, 25-26 là, l'ici deuxième l'année le plus sec qui fin énorme pendant sa 30 dernière année.
2: पानी की कमी का असर अब लोगों के रोजमर्रा की जिंदगी पर भी पड़ रहा है। CWA की हॉटलाइन पर हर दिन करीब 2000 कॉल्स आ रही हैं। शिकायतें दुगनी हो गई हैं और ज्यादातर शिकायतें पानी की सप्लाई को लेकर हैं। सेंट्रल वाटर अथॉरिटी की कोशिश है कि जहां तक संभव हो शिकायत का हल 24 घंटे के अंदर निकाला जाए।
4: Pour plus d'efficacité en ce qui concerne surtout distribution de l'eau par camion-citerne, il y a des affaires qu'il nous peut faire. Un, c'est qu'il nous prenne une personne qui est dédiée, qui pour dans chaque zone, une zone divisée en trois, à ce moment-là, la personne lui pour un peu les yeux et les oreilles de la CWA là-bas pour nous assurer que le travail se fait bien sur le terrain.
2: जिन इलाकों में पानी की ज्यादा कमी है वहां पानी पहुंचाने के लिए CWA अब ज्यादा निजी टैंकर्स की मदद ले रहा है। इस बीच पानी की कमी से निपटने के लिए करीब 10 बोहोल्स को सप्लाई नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। कुछ नदियों के पानी को साफ करके इस्तेमाल करने की भी तैयारी है। मंत्री पैट्रिक आसियावादेन के मुताबिक फिलहाल बारिश के लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा। अच्छी बारिश दिसंबर के दूसरे हिस्से में होने की उम्मीद।
1: मॉरिशस में पानी की कमी चिंता का विषय बनी हुई है, फिर भी किसानों को पाबंदियों और जलापूर्ति की दिक्कतों के बावजूद अपने खेतों की सिंचाई जारी रखनी पड़ रही है। उनकी मदद के लिए सरकार की तरफ से विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। सौर पैनल्स बिठाने के लिए खेती से जुड़े सहकारिता संगठनों को 2 मिलियन रुपये तक की नई आर्थिक मदद उपलब्ध कराई जा रही है। इस सुविधा से लाभ उठाने की इच्छा रखने वाले कोऑपरेटिव संगठनों के पास आवेदन जमा करने के लिए अगले 11 नवंबर तक का समय है। आशा गोविंद।
2: पानी की कटौती के बीच किसानों के लिए सिंचाई पहले ही मुश्किल बनी हुई है और पानी के पंप्स चलाने से बिजली का खर्च भी बढ़ रहा है। इसी खर्च को कम करने के लिए सरकार कृषि सहकारी समितियों को सोलर पैनल्स लगाने के लिए 20 लाख रुपए तक की मदद देगी। ये पैनल्स 30 किलोवाट तक बिजली पैदा कर सकेंगे, जिसे CB को बेचा जाएगा और उससे मिलने वाली रकम सिंचाई के पंप्स के बिजली बिल को कम करने में इस्तेमाल होगी। योजना का लाभ लेने के लिए सहकारी समिति में कम से कम 25 सक्रिय किसान होने चाहिए और उसने 2025-2026 के दौरान बिजली पर कम से कम 1 लाख रुपए खर्च किए हों। इसका मकसद खेतीहरों के लिए सिंचाई का खर्च कम करना और खेती में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा देना।
1: शिक्षा के क्षेत्र में मॉरिशस और फ्रांस के बीच एक नई साझेदारी कायम हुई है। मकसद है स्कूलों में फ्रेंच भाषा के पठन पाठन को बढ़ावा देना। शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार पहकू प्लस नामक इस परियोजना के मकसद के माध्यम से छात्र फ्रेंच भाषा के इस्तेमाल से विज्ञान को एक नए तरीके से समझ पाएंगे, साथ ही पढ़ाई के लिए नए साधन अपनाए जाएंगे। ये परियोजना पायलट स्तर पर देश के 12 प्राथमिक और 12 माध्यमिक स्कूलों में चलाई जाएगी। उर्वशी बिकावी बंजन, आस्था गोविंद।
2: साइंस की पढ़ाई अब फ्रेंच में भी। मॉरिशस और फ्रांस ने मिलकर पॉकू प्लस नाम की एक नई पहल शुरू की है। इस

0: के तहत छात्रों को नए और दिलचस्प तरीके से फ्रेंच में साइंस पढ़ाई जाएगी। शिक्षा मंत्रालय के प्रीतम मोहितराम का कहना है कि इससे बच्चों को फ्रेंच सीखने और साइंस समझने दोनों में मदद मिलेगी।
1: C'est ce qu'on appelle une discipline non linguistique. Il y a plusieurs matières et pour permettre à l'enfant de découvrir et de comprendre le monde, c'est bien qu'il ait accès aux matières scientifiques et en même temps, ça va renforcer son français, c'est-à-dire l'apprentissage de la langue française.
0: शुरुआत में 24 स्कूलों को इस योजना में शामिल किया गया है। इनमें 12 प्राइमरी और 12 सेकेंडरी स्कूल हैं। ग्रेड 4 और 5 तथा ग्रेड 7 और 8 के छात्र अलग अलग शिक्षण सामग्री की मदद से फ्रेंच में साइंस सीखेंगे।
1: Les enseignants concernés, avec les chefs d'établissement des écoles concernées, ont eu la possibilité d'être formés avec les podcasters, également avec les formateurs du réseau Canopée de l'île de la Réunion, et ils ont essayé de prototyper des modèles comment exploiter la pédagogie du plurilinguisme.
0: इस पहल के जरिए छात्रों को सीखने के लिए नए अवसर देने की कोशिश है। साथ ही मॉरिशस में साइंस की पढ़ाई में फ्रेंच के इस्तेमाल को भी धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा।
2: कांग्रेस के विक्टोरिया अस्पताल में एक नई ट्रॉमा एंड इमरजेंसी यूनिट की स्थापना की गई है, जिसका उद्घाटन स्वास्थ्य मंत्री अनिल बेचू द्वारा किया गया। इस नई इकाई का मकसद है तत्काल चिकित्सा सहायता की आवश्यकता वाले मरीजों को दी जाने वाली देखभाल बेहतर करना। ये यूनिट मरीजों को इमरजेंसी की स्थितियों में ज़्यादा बेहतर और कुशल सेवा देने के उद्देश्य से कायम की गई है। साथ ही अस्पताल में भर्ती मरीजों का तेजी से इलाज हो सकेगा। उद्घाटन के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने मेडिकल सेवाओं को आधुनिक बनाने और लोगों की बढ़ती ज़रूरतों को पूरा करने की अहमियत पर बल दिया। मंत्री अनिल बेचू को सुनते हैं।
3: Dans les petites semaines, j'ai fait annonce que dans tout le monde d'hôpital, nous pouvons avoir une ségrégation de bonnes patients. Beaucoup de fois, on a un accident bien, bien grave. Il y en a des gens qui ont un heart attack, qui ont toutes sortes de maladies. C'est un patient vraiment, vraiment besoin d'un soin immédiat. Alors, ils ne sont pas capables de mélanger avec tout. C'est la cause même que le gouvernement, ce décision que tu prends, qu'il n'y a pas besoin d'une special red zone pour les autres. Le traitement besoin de nous autres voisines Sagan, ça ne faut pas tarder. Spécialiste, c'est surtout Sami Wiltekova. Vous avez des Sami, ils sont bien équipés, ils sont bien organisés, ils sont bien entraînés. Et puis ça, vous avez une deuxième catégorie qui est moins dangereuse, de la liale dans yellow. Et puis ça, c'est qui est normal, qui est habitué à venir à l'hôpital, ça c'est assez green. Alors ça, c'est une façon de faire pour beaucoup de monde qui vivait plaigner avant, qui est besoin de waiting list, tout ça là. Alors je dis, vous plaignez, comment vous venez, vous gagnez votre traitement de suite. Alors ça, c'est un bon pas en avant que nous faisons.
2: और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में सबसे पहले भारत की तरफ से प्राप्त ये दुखद समाचार। भारतीय सिनेमा में शोक की लहर चली है। मशहूर अभिनेता नाना पाटेकर का 75 साल की उम्र में आज सुबह निधन हो गया। जानकारियों के मुताबिक उन्हें गोवा स्थित उनके आवास पर बेहोश पाया गया। अस्पताल पहुंचाए जाने पर इस बात की पुष्टि हुई कि दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हुआ है। रूसी ताकतों द्वारा किए गए मिसाइल हमले में उत्तरी यूक्रेन के एक आवासीय इलाके में 19 लोगों की मौत हुई, जिनमें 5 बच्चे शामिल हैं। 30 से ज़्यादा फ्लैट्स नष्ट हो गए। ये हमला तब हुआ जब लोग अपने घरों में सोए हुए थे। यूक्रेनियन राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने इसे मानवता के खिलाफ एक अपराध कहा। और कीनिया में एबोला के कारण एक प्रथम व्यक्ति की मौत हुई है। उसके संपर्क में आए 10 लोगों को क्वारंटीन में रखा गया है। इस व्यक्ति ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य का दौरा किया था। अब उन 57 लोगों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है जिनके संपर्क में वो आया था। इस प्रथम मामले के बाद कीनिया में सुरक्षा के कदम तेज किए जा रहे हैं। आखिर में स्थानीय मौसम का हाल। आम हालत हमारे इलाके पर पूर्व से आ रहे बादलों का असर पड़ रहा है। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान, आज सुबह खासकर पूर्व ऊंचाइयों पर बादल घिरे रह सकते हैं, हल्की बारिश होगी, जबकि देर दोपहर बाद पश्चिम, दक्षिण पश्चिम और सन प्लाटो वाले इलाकों पर बादल घिरे रहेंगे और रह कर बारिश हो सकती है। रात के दौरान भी पूर्व, दक्षिण और ऊंचाइयों पर बारिश की संभावनाएं। हवा पूर्व की तरफ से 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। प्रवाल रेखा के परे समंदर खराब रहेगा। दक्षिण पूर्वी समंदर में 2 मीटर 50 तक की ऊंची लहरें उठेंगी। सुबह के दौरान दूर समंदर में न निकलने की सलाह। तापमान सेंट्रल प्लेटो पर न्यूनतम 17 से 19, अधिकतम 23 से 25 डिग्री सेल्सियस। साहिली इलाकों पर

न्यूनतम 20 से 22, अधिकतम 27 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सुबह 5:45 मिनट पर सूर्योदय हुआ, शाम को 6:09 मिनट पर सूर्यास्त होगा।

उतर कर आक्रोश जताया, रास्तों पर पहिए जलाए गए, CWA की तरफ से जल्द राहत पहुंचाए जाने का आश्वासन। सौर पैनल बिठाने के लिए खेती से जुड़े सहकारिता संगठनों को 2 मिलियन रुपए तक की नई आर्थिक मदद उपलब्ध कराई जा रही है। आवेदन भेजने के लिए अगले 11 नवंबर तक का समय। कांदोस के विक्टोरिया अस्पताल में एक नई ट्रॉमा एंड इमरजेंसी यूनिट की स्थापना। मकसद है तत्काल चिकित्सा सहायता की आवश्यकता वाले मरीजों को दी जाने वाली देखभाल बेहतर करना। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में मशहूर अभिनेता नाना पाटेकर का 75 साल की उम्र में निधन हुआ। देश विदेश की खबरों के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। इसको आप तक पहुंचाने में यूसुफ हमारे साथ रहे। जुड़े रहिए थोड़ी देर में शोक समाचार। Your news on NBC Play.

शोक समाचार सुनिए। शिवाला रोड ब्रह्मस्थान में, शिवाला रोड ब्रह्मस्थान में 80 साल के 80 ईयर्स ओल्ड श्री प्रेमचंद जगर जो तराचंद नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई हैं। आज दिन के ढाई बजे इनके मकान शिवाला रोड ब्रह्मस्थान से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए काथकोको की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टू डेट 2:30 PM। कोऑपरेटिव लेन गांव साबले में 92 साल के 92 ईयर्स ओल्ड श्री ब्रह्मानंद खिलावन जो लालून नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के ढाई बजे इनके मकान कोऑपरेटिव लेन गांव साबले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वो शौकी श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 2:30 PM। न्यू मोसेलमा रोड गुडलैंड्स में, बयासी साल के 82 ईयर्स ओल्ड श्री विद्या सागर बहादुर पूजा सामान नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई हैं। इनकी अर्थी आज दिन के दो बजे इनके बेटे श्री विजय बहादुर के मकान न्यू मोसेलमा रोड द गुडलैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुआहूस गुडलैंड की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 2 PM। रिवालों रोड क्रेव क्यूर में 82 साल के 82 ईयर्स ओल्ड श्री ईसरलाल बंधु जो जीवन नाम से ज़रा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के एक बजे इनके बेटे असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस आनंद बंधु के मकान रिवालों रोड खैफकिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए खैफकिया की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 1 PM। नंबर 278 बेनोंदन दे सैंपियर स्ट्रीट वाले दिपात में, नंबर 278 बेनोंदन दे सैंपियर स्ट्रीट वाले दिपात में 53 साल के 53 ईयर्स ओल्ड श्री कल्याण प्रकाश बागोना जो विशाल नाम से ज़्यादा जानी जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के एक बजे इनके मकान नंबर 278 बेनोंदन दे सैंपियर स्ट्रीट वाले दिपात से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सिपाही भोईले की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 1 PM। रॉयल रोड बुले रोज सेंट्रल फ्लैक में 58 साल के 58 ईयर्स ओल्ड श्री रामाराजन कुलन जो विलासेन नाम से ज़रा जाने जाते थे और पुलिस सर्जन थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 11 बजे इनके मकान रॉयल रोड बुले रोज सेंट्रल फ्लैक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावांचा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 11 AM। महात्मा गांधी रोड लोशेतिया रोज में 73 साल की 73 ईयर्स ओल्ड श्रीमती जसोदा रंगलोल जो बसंती नाम से ज़रा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के साढ़े बारह बजे इनके बेटे श्री रंजीत रंगलोल के मकान महात्मा गांधी रोड लोशेतिया रोज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुआमोशा त्याहूश की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 12:30 PM।

0: सनातन रोड मेबग में, सनातन रोड मेबग में 67 साल की 67 ईयर्स ओल्ड श्रीमती वसंती रामफल, श्रीमती वसंती रामफल जो सरोदा नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 10 बजे, इनकी अर्थिया सुबह 10 बजे के बेटे श्री बाल गोविंद पैंस राम के मकान सनातन रोड मेबग से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए तोम्बो मेबग की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10 AM। कॉम बुलबा रोड समय घोनिये में 77 साल के 77 ईयर्स ओल्ड श्रीमती बसवंती सरचरण, श्रीमती बसवंती सरचरण पैदाशी नाम जगू जो बसंती नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई हैं। इनकी अर्थी आज दिन के 2:30 बजे, इनकी अर्थी आज दिन के 2:30 बजे इनके पति श्री ऋषि सरचरण के मकान कौबुलबा रोड शमेघोनी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कौगोपाल शामुनी की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2:30 PM। शोक में डूबे परिवारों के साथ हमारी गहरी संवेदना है।
1: It entered the 19 kilowatts. This is Radio Mauritius.
2: Sports News. सभी सुनने वालों को अरविंद का प्यार भरा नमस्कार। गुरुवार 8 अक्टूबर 2026 के इस प्रातःकालीन स्पोर्ट्स बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत है। लंबे इंटरनेशनल ब्रेक के बाद कल से यूरोप भर में क्लब फुटबॉल फिर से जारी। इंग्लैंड में लीग चैंपियनशिप है वेस्टहैम यूनाइटेड और क्वींस पार्क रेंजर्स के बीच, स्पेन के ला लीगा में मालागा वर्सेस स्पैन्योल, जर्मनी के बुंडेसलीगा में बोरुशिया डॉर्टमुंड वेर्डर ब्रेमेन, फ्रांस के लीग अन में लांस लियों, ये कल के फिक्स्चर्स हैं। आज कुछ खास नहीं है, प्रमुख लीग में कोई मैच नहीं। आयरिश प्रीमियर डिवीजन में शामरॉक वर्सेस ग्रुहेडा, ब्राजीलियन सीरी आ के मैच भी हैं। फिनलैंड लीग के अलावा इंटरनेशनल फ्रेंडली मैच है, इंडिया की महिला फुटबॉल टीम खेलेगी फुटबॉल यूनियन ऑफ रशिया के खिलाफ। सभी लोग बेसब्री से प्रीमियर लीग की वापसी का इंतजार कर रहे हैं। नजर फिक्स्चर्स पर डालते हैं। शनिवार को सैटरडे मैच, अर्ली किक ऑफ, पहला मैच आर्सेनल लीड्स यूनाइटेड, ये 3:30 बजे। फिर 6 बजे से एस्टन विला ब्रेंटफोर्ड, चेल्सी बोर्नमाउथ, इप्सविच फुलहम, संडरलैंड ब्राइटन और मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए लेट मैच ओल्ड ट्राफर्ड में टोटनहम हॉटस्पर का स्वागत होगा, ये 8:30 बजे 8:30 किक ऑफ। फिर संडे को क्रिस्टल पैलेस नॉटिंघम फॉरेस्ट, हल सिटी एवर्टन और मैनचेस्टर सिटी जाएगा लिवरपूल के अनफील्ड रोड में, ये 7:30 बजे संडे धमाल। मैनचेस्टर सिटी के खिलाफ गिल्टी वर्डिक्ट के बाद पूर्व हेड कोच पेप ग्वार्डियोला पहली बार मैनचेस्टर सिटी का मैच देखने आएगा इतिहाद में पेरिस सेंट जर्मेन के खिलाफ। पैसों को लेकर हेराफेरी के आरोप और फैसले के बाद ग्वार्डियोला कब मालिकों के पक्ष में है उन्हें बक कर रहा है। 115 चार्जेस के लिए गिल्टी, ये केवल प्रीमियर लीग की ओर से है, यूईएफए भी आने वाला है आगे। पेप ग्वार्डियोला को पूरा विश्वास है कि मैनचेस्टर सिटी को कुछ नहीं होगा, वी विल गेट थ्रू दिस टुगेदर, क्लब रिलीगेट भी हो जाए तो सिटी के साथ हैं। साउथहैम्पटन के मैनेजर टुंडा एकर्ट पर जो जासूसी का जो आरोप था जिसे स्पाइगेट नाम दिया गया था, उसके सस्पेंशन को टाल दिया गया है। 6 हफ्तों का टोटल फुटबॉल बैन का फैसला सुनाया गया है पर अगले सीजन के अंत तक सस्पेंशन को टाल दिया गया है। आर्सेनल के मैनेजर मिकेल आर्टेटा की तरह डेक्लन राइस ने भी अपना कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाने का फैसला लिया है। 3 साल पहले वो वेस्टहैम यूनाइटेड से आया था 103 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग पर। आर्सेनल में डेक्लन राइस सीज गया, पक गया है, टीम का अहम क्रूशियल खिलाड़ी बन गया है, उसकी सैलरी भी बढ़ाई जाएगी। अभी आर्सेनल में सबसे ज्यादा कमाने वाला सैलरी बुकायो साका को दिया जाता है, 350,000 pounds sterling, 350,000 pounds sterling पर वीक, यानी हर हफ्ते। ट्रांसफर न्यूज, जनवरी ट्रांसफर विंडो खुलने के इंतजार में अभी से ही नए खिलाड़ियों की तलाश जारी है।

0: Manchester United or Liverpool, Bournemouth और फ्रांस के लेफ्ट बैक एड्रियन ट्रूफेयर के पीछे हैं दाम कम से कम 60 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग। यारेल क्वांशा को वापस इंग्लैंड लाने के लिए चेल्सी, आर्सेनल और लिवरपूल भी तैयार हैं। इधर आने वाले फीफा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए रामोन वेगा यानी इन्फांटिनो के खिलाफ खड़ा होगा। वेगा टोटनहम हॉटस्पर, सेल्टिक और स्विट्जरलैंड का खिलाड़ी था। अगले मार्च महीने में चुनाव होंगे मोरक्को में। टेनिस, चाइना ओपन के कैपिटल ग्रुप डायमंड टूर्नामेंट में कोको गौफ एलिमिनेट हो गई। मेर्टेंस ने उसे 6-3 से हराया। इगा श्वातेक ने योविच को हराया। जेंग और विटोलिना भी क्वार्टर फाइनल में पहुंची। क्वार्टर फाइनल में मेर्टेंस वर्सेस इगा श्वातेक, जेंग, विटोलिना। इधर एटीपी शंघाई मास्टर्स भी चल रहे हैं। आज के कुछ महत्वपूर्ण मैच, सिटसिपास कोपेयांस हुरकास डुकवर्फ मुना ब्रुक्सबी। बाकू अज़रबैजान में इन दिनों 2026 वर्ल्ड जूडो चैंपियनशिप चल रही है। इसमें 93 देशों के बेहतरीन 622 एलीट जूडो का भाग ले रहे हैं। ये लॉस एंजेलिस ओलंपिक्स के क्वालिफिकेशन के लिए गिने जाएंगे। मॉरिशस से रेमी फेये कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडल विजेता वहां है। वो 90 किलोग्राम वाली कैटेगोरी में होगा। पहला मैच आज इंग्लैंड के लैचलन मूरहेड के खिलाफ है। रेमी फेये के पूल ए में जापान का दिग्गज सानशिरो मुराओ और सर्बिया का नेमान्या माचडोव भी है। तो ऑल द बेस्ट, देखते हैं आज हमारा चैंपियन क्या करेगा, रेमी फेये। सो खेल समाचार में फिलहाल इतना ही। आपके ध्यान के लिए शुक्रिया। आज्ञा दीजिए, नमस्कार। आप सभी लोगों को अरविंद की ओर से शुभ दिन।
1: ये है रेडियो मॉरिशस।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: श्रोताओं, आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से चंद विज्ञप्तियां सुनिए। जरूरी मरम्मत कार्यों की वजह से कई इलाकों में बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। सबसे पहले लावांचिया के रहने वाले निवासियों को, जिनमें है विलाज हॉल लेन, शिवाला लेन और रोकुतखया, लावांचिया के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि गुरुवार 8 अक्टूबर 2026 को सुबह 8:30 बजे से लेकर शाम के 5 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। साथ में है मौसलमा अनाफिकॉन्फ्ला के रहने वाले निवासियों को, जिनमें है एवेन्यू मूलह कासे और एवेन्यू दे ट्रुफे, एवेन्यू दे मौले, एवेन्यू दे मेरों, एपास बेकुम के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि गुरुवार 8 अक्टूबर 2026 को सुबह 8:30 बजे से लेकर सपहर के 3:30 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। और अंत में है अल्बियों के रहने वाले निवासियों को, जिनमें है एवेन्यू कॉन्स्टिट्यूशन, एवेन्यू कुटी शॉक, एवेन्यू लैंडिस्क्रे के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि गुरुवार 8 अक्टूबर 2026 को सुबह 8:30 बजे से

लेकर सपहर के 3 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। इन सभी असुविधाओं के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है और बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई सामान्य पर लाई जाएगी। तो श्रोताओं, अभी आप सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से चंद विज्ञप्तियाँ सुन रहे थे, ये रेडियो मॉरिशस है। तो आइए, इस हिंदुस्तानी सभा को हम जारी रख रहे हैं।

चलिए श्रोताओं, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुरुवार का दिन है आज, आज है 8 अक्टूबर 2026। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार और आदाब। वैसे हम एक बहुत ही प्यारा सा सफ़र जो है साथ मिलकर काटने वाले हैं, और ये सफ़र जो है आपके लिए लाए है चैन बेहतरीन से बेहतरीन प्रोग्राम। तो चलिए श्रोताओं, 6 बजे से इस समय तक आप लोगों का साथ रहा, बहुत बहुत धन्यवाद। नया दिन नई शुरुआत एमबीसी रेडियो के साथ, ये है सुबह का नज़ाना कार्यक्रम। आज का दिन आपके लिए बेहद ही शुभ हो, हमारी यही कामना है। तो चलिए कार्यक्रम को हम जारी रखेंगे, आइए डॉक्टर शांति महावीर जी की प्रस्तुति में हम सुनेंगे चिंतन।

0: मूल्य, सदाचार और आत्मिक संतुलन का संगम चिंतन, जहां विचारों में मिठास और मन में शांति। आइए सुनते हैं आज का चिंतन।
1: जब तक किसी बात की पूरी जानकारी न हो, तब तक हमें मौन ही रहना चाहिए। अधूरा सत्य पूर्ण झूठ से कई गुना ज्यादा खतरनाक होता है।

क्रोध और लोभ मैं दज कर जा सकता हूं, तुझको चाहूं भी तो मैं कैसे भुला सकता हूं। तेरा प्यार भी एक बंधन है, तू ही बता क्या मैं मुक्ति पा सकता हूं।

तो चलिए श्रोताओं, आप हमारे साथ निभा रहे हैं। वैसे सही समय पर किया गया सही कर्म जीवन बदल सकता है। समय कभी किसी के लिए रुकता नहीं, इसलिए हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। बीता हुआ समय अनुभव बन जाता है और आने वाला समय उम्मीद। तो चलिए, सुबह का नजाना कार्यक्रम आपके नाम हम कर रहे हैं रेडियो मॉरिशस पे।

वैसे श्रोताओं, वक्त की रफ्तार को कोई रोक नहीं सकता, इसलिए जो पल आज हमारे पास है उसे प्रेम, मुस्कान और अच्छे कर्मों से सजाइए, क्योंकि आज का यही पल कल एक खूबसूरत याद बन जाएगा। सुबह का निशाना आपके नाम हम कर रहे हैं इस समय, तो चलिए अगले गाने की ओर हम बढ़ेंगे। फिल्म का नाम है दूर का राही।

0: श्रोताओ, जिंदगी का हर आने वाला पल हमें एक नया अवसर देता है कुछ सीखने का, कुछ पाने का और खुद को बेहतर बनाने का। कल कैसा होगा ये हम नहीं जानते, मगर आज को खूबसूरत बनाकर आने वाले कल का स्वागत जरूर कर सकती है। ये है सुबह का नजाना कार्यक्रम रेडियो मॉरिशस पे।
1: दिल की बहार, सुबह का नजराना, रेडियो मॉरिशस पर।

चलिए श्रोताओ, जीवन एक ऐसी यात्रा है जहाँ हर मोड़ हमें कुछ नया सिखाता है। कभी रास्ते आसान होते हैं तो कभी मुश्किलें हमारे हौसले को परीक्षा जो है हमें लेनी पड़ती है जिंदगी में। जीवन की खूबसूरती इस बात में है कि हर दिन हमें अच्छा हमें बनाना पड़ता है। बल्कि इस बात जो है पर हमें ध्यान रखना कि हर परिस्थिति में हमें आगे बढ़ते जाना है। तो चलिए चंद प्यारे प्यारे खूबसूरत गीत आपके नाम, चंद सदाबहार गीत जो है जो आप सुनना पसंद करते हैं आपके मनपसंद रेडियो चैनल पे। चलिए अगली भेंट में फिल्म का नाम है सच्चाई और इस फिल्म से लिया गया गीत आशा भोंसले की आवाज़ में आप सुन पाएंगे।

छोटा जिंदगी लंबी हो या छोटी, मायने यह रखता है कि हम उसे कितनी सच्चाई के साथ जीते हैं। सुबह का नजाना कार्यक्रम 7:40 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में। खूबसूरत गीतों का ये कार्रवाई से हम आगे बढ़ाएंगे। वैसे हमेशा की तरह आपके फ़ोन कॉल्स हमें प्राप्त हो रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए गीतों का ये खूबसूरत सफ़र इसे हम आगे बढ़ाएंगे।

श्रोता, जीवन एक यात्रा है, मंजिल नहीं। यह खुशी और दुख, सफलता और असफलता, जन्म और मृत्यु का संगम है। तो चलिए श्रोताओं, चंद प्यारी प्यारी गीत आपकी सेवा में। वैसे जीवन एक बार हमें मिलता है, इसे शिकायत में नहीं धन्यवाद में जियो। हर दिन को आखिरी दिन समझकर हमें जीना होता है। तो चलिए चंद प्यारे नगमे जो है आपके नाम हम कर रहे हैं रेडियो मॉरिशस पे। अगला गीत जो है मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में और बहुत ही बढ़िया सा नज़ाना राख और चिंगारी फिल्म से लिया गया आपके लिए।

श्रोताओं आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये है रेडियो मॉरिशस। सुबह का नजाना कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। कहते हैं कि बिना संघर्ष के जीवन का कोई मूल्य नहीं, संघर्ष ही हमें मजबूत बनाता है, और कहते हैं ना परिवर्तन ही जीवन का नियम है। तो चलिए कुछ ही घड़ी में 8 बजने वाले हैं, भोजपुरी में आप समाचार सुन सकेंगे। समाचारों के उस पार हम वापस मिल रहे हैं सुबह का नजाना कार्यक्रम के दूसरे हिस्से को लेकर।

नमस्ते, पेशवा भोजपुरी के समाचार। महोबाकवा में जलाशय के गिरल जलस्तर से सबसे जस्ती रेन विलियम्स होला सबसे इलाका प्रभावित हुआ था। जे लोग के नेटवर्क हुआ से जुड़ल बा थे, कादगो इलाका में कई दिन से पानी की सप्लाई बाधित होल बा, जेकर से सैंपल आले भुया क्लेफो फेनिक्स आर कई गए कादगो इलाका में काल रात के आदमी लोग सड़क पर उतर के आक्रोश जतैलन जा रास्ता पर ही पहिया जड़ावल गल है। स्थल पर ही मौजूद होल सांसद कुशलोबीन हुआ के आदमी लोग से शांति बना के रखे के RCW से हाल ही जरूरी कदम उठावे के मांग करलन। बोलन कि उ ई बात जानेलन कि पानी के लेके देश में स्थिति चिंताजनक बाटे, बकेर जनता से राहत जनता के राहत पहुँचावे खातिर प्रयास तेज करल जाए के चाहेला। OCWA से पानी के टैंकर भेजे के बजाय दिन में एकाध घंटा खातिर पानी सप्लाई करे के मांग कर ले हवन। सेंट्रल वाटर अथॉरिटी के संचार अधिकारी सुनील गोपाल आश्वासन दिले हवन कि स्थिति संभाले खातिर हाल ही जरूरी कदम उठावल जाए। उनकर अनुसार एगो कोऑर्डिनेटर के नियुक्ति करल जाए जे सीधा रूप से बाशिंदा लोग के संपर्क में रहियन, जे में लोग के समस्या पर ही सही तरीका से काम करल जा सकी। वो आश्वासन दिले हवन कि CWA के स्तर पर ही ध्यान रखल जाता कि ऐसा स्थिति फिरों से पैदा नहीं हुई। मशस पे पानी के कमी चिंता के विषय बनले जाता, फिर भी किसान लोग की पाबंदी और जलापूर्ति के दिक्कत के बावजूद अपन खेत के सिंचाई जारी रखे के पड़ता और लोग के मदद खातिर सरकार देने से विशेष प्रयास करल जाता। सौर पैनल बिठावे खातिर खेत से जुड़ल सहकारिता संगठन लोग के 2 मिलियन रुपया तक के अधिक मदद उपलब्ध करावल जाता। इस सुविधा से लाभ उठावे की इच्छा रखे होला सहकारी संगठन लोग लगे आवेदन भेजे खातिर आवत 11 नवंबर तक की बखत है। शिक्षा के क्षेत्र में मॉरिशस और फ्रांस के बीच एगो नवा साझेदारी कायम होल बाटे। मकसद है सब स्कूल में फ्रेंच भाषा के पठन पाठन के बढ़ावा देवे के। शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी लोग के अनुसार पोकू प्लस नामक ई परियोजना के माध्यम से छात्र लोग फ्रेंच भाषा के इस्तेमाल से विज्ञान के एगो नवा तरीका से समझे सकियन जा। एकर संगे ही पढ़ाई खातिर नवा संसाधन अपनावल जाए। ई परियोजना पायलट स्तर पर ही देश के 12 प्राथमिक और 12 माध्यमिक स्कूल में चलावल जाए। कौंदोस के विक्टोरिया अस्पताल में गो नवा ट्रोमा एंड इमरजेंसी यूनिट की स्थापना करल गेल है, जेकर उद्घाटन स्वास्थ्य मंत्री अनिल बेचू करलन। ई नवा इकाई के मकसद है तत्काल चिकित्सा सहायता की आवश्यकता होला मरीज लोग के देवल जाए होला देखभाल जस्ती अच्छा करे की। ई यूनिट मरीज लोग के इमरजेंसी की स्थिति में जस्ती अच्छा और कुशल सेवा देवे के उद्देश्य से कायम करल गेल है। संगे ही अस्पताल में भर्ती मरीज लोग के तेजी से इलाज देवल जा सकी। उद्घाटन के दौरान स्वास्थ्य मंत्री मेडिकल सेवा के आधुनिक बनावे के और आदमी लोग के बढ़ल जरूरत के पूरा करे की अहमियत पर ही बल देले हवन। दूसर देश के खबर में भारतीय सिनेमा में शोक के लहर चलल बा। मशहूर अभिनेता नाना पाटेकर के 75 बरिस के उम्र में आज फजर के निधन हो गल। जानकारी के मुताबिक उनकरा गोवा स्थित उनकर आवास पर ही बेहोश देखल गल रहल। अस्पताल पहुंचावल गल उनकरा और हुआं पर ही बात के पुष्टि होल कि दिल के दौरा पड़ला से उनकर मौत हो गल। उधर रूसी ताकत लोग दिनी से करल गल मिसाइल हमला में उत्तरी यूक्रेन में एगो आवासीय इलाका में 19 जना की मौत होल बा, जेकर में 5 गो लड़का रहल। 30 ले जस्ती फ्लैट नष्ट हो गल बा। ई हमला तब होल जब आदमी लोग अपन घर में रहलन जा। यूक्रेनियन राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ई एकरा मानवता के खिलाफ एगो अपराध बतैले हवन। तय रहल भोजपुरी के समाचार, तो ध्यान खातिर धन्यवाद। News on NBC Play.

मरनी की खबर सुना जा। यूनियनवेल त्वाबुचिक में 77 बरिस के स्वसांजी से तौके श्रीमती कलावती सुंदर जे सीला नाम से जस्ती जाल जात रलन गुजर गल हवन उनकर माटी आज दिन के दो बजे उनकर घर यूनियन वेल त्वाबुचिक से उठा के अंतिम संस्कार रखा तीर त्वाबुचिक के श्मशान भूमि ले जा जाए। नागिया रोड रोजबेल में 79 बरिस के 79 वों के श्री हरिप्रसाद जगरू जे हरी नाम से जस्ती जान जात रहलन गुजर गल हवन उनकर माती आज दिन के दो बजे उनकर पत्नी श्रीमती जगरानी जगरू के घरे नागिया रोड रोजबेल से उठा के अंतिम संस्कार खातिर मांगी जानी रोजबेल के श्मशान भूमि ले जा जाए। सनातन रोड मायबोमी 67 बरिस के 67 के श्रीमती वसंती बालगोबिन पेदाची नाम रामफल जे सरोदा नाम से जस्सी जान जात रहलन गुजर गल हवन उनकर माती आज फजर के दस बजे उनकर बेटा श्री बालगोबिन फैंस राम के घरे सनातन रोड मायबू से उठा के अंतिम संस्कार खातिर तोबू मायबू के श्मशान भूमि ले जाल जाए। शिवाला रोड ब्रह्मस्थान में 80 बरिस की कथवैजों के श्री प्रेमचंद जगर जे ताराचंद नाम से जस्ती जाल जात रहलन गुजर गल हवन उनकर माती आज दिन के दो बज के आधा उनकर घर शिवाला रोड ब्रह्मस्थान से उठा के अंतिम संस्कार खातिर कथको को श्मशान भूमि ले जाल जाए। कोऑपरेटिव लेन गांव साहब में 92 बरिस के कथवैदूजों के श्री ब्रह्मानंद खिलावन जे लालून नाम से जस्सी जाल जात रहलन गुजर गए हन उनकर माती आज दिन के दो बज के आधा उनकर घरे कोऑपरेटिव लेन गांव साहब से उठा के अंतिम संस्कार खातिर बुशों के श्मशान भूमि ले जाल जाए।

न्यू मोसेलमा रोड गुडलैंड्स में 82 बरिस की कातोवें दोजों के श्री विद्यासागर बहादुर, श्री विद्यासागर बहादुर जे सागर बहादुर पूजा सामान नाम से जैसी जान जाते रहन गुजर गल हवन उनकर माती आज दिन के 2 बजे उनकर बेटा श्री विजय बहादुर के खरे न्यू मोसेलमा रोड गुडलैंड से उठा के अंतिम संस्कार खातिर बहुज गुडलैंड्स के शमशान भूमि ले जाल जाए। रिवालों रोड खैफकिया में 82 बरिस की कतवें दोजों के श्री ईश्वरलाल बंधु, श्री ईश्वरलाल बंधु जे जीवन नाम से जैसी जान जाते रहन वो गुजर गल हवन उनकर माती आज दिन के 1 बजे उनकर बेटा असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस श्री आनंद बंधु के घरे रिवालों रोड गुडलैंड रिवालों रोड खैफकिया से उठा के अंतिम संस्कार खातिर खैफकिया के शमशान भूमि ले जाल जाए। नंबर 278 बेनादर दे सैं पियर स्ट्रीट वाले दिप्रैत में 53 बरिस की सकंतवाजों के श्री कल्याण प्रकाश बगुना, श्री कल्याण प्रकाश बगुना जी विशाल नाम से जस्ती जान जात रहलन गुजर गल हवन उनकर माटी आज दिन के 1 बजे उनकर घर है नंबर 278 बेनादर दे सैं पियर स्ट्रीट वाले दिप्रैत से उठा के अंतिम संस्कार खातिर सिपाही भूले के शमशान भूमि ले जाल जाए। रॉयल रोड बुले रूज सौ दो फ्लाक में 58 बरिस के 58 अंके श्री रामाराजन कुलन, श्री रामाराजन कुलन जे विलासन नाम से जैसे जान जात रहलन आर सर्जेंट पुलिस सर्जेंट रहलन गुजर गल हवन उनकर माटी आज दिन के 11 बजे उनकर घर है रॉयल रोड बुले रूज सौ दो फ्लाक से उठा के अंतिम संस्कार खातिर लावचे के शमशान भूमि ले जाल जाए। महात्मा गांधी रोड लोशे त्यागूज में 73 बरिस के 67 अंके श्री जसोदा रंगलोल, श्री जसोदा रंगलोल जी बसंती नाम से जस्ती जान जात रहलन गुजर गल हवन उनकर माटी आज दिन के 12 बज के आधा उनकर बेटा श्री रंजीत रंगलोल के घरे महात्मा गांधी रोड लोहे त्याऊ से उठा के अंतिम संस्कार खातिर बमौसों के शमशान भूमि ले जाल जाए। कबुलबा रोड शमैगोनिये में 77 बरिस के 77 अंके श्रीमती बसवंती सरचरण, श्रीमती बसवंती सरचरण पैदाशी नाम जगू जे बसंती नाम से जस्ती जान रात रहन गुजर गल हवन उनकर माटी आज दिन के 2 बज के आधा उनकर

0: आज जिनके 2 वर्ष की आधा उनका पति श्री ऋषि सुरचरण के खरे कौबुलबा रोड समय घोनी से उठा के अंतिम संस्कार खातिर गोपाल शामुनि के श्मशान भूमि ले जाल जाए। शोक में डूबल इस सब परिवारों के संगे हमने के संवेदना है।
1: दिल की बहार सुबह का नजराना रेडियो मॉरिशस पर

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: 8:19 हुए हैं। श्रोताओं, आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से ये विज्ञप्ति सुनिए। अल्बियों के रहने वाले निवासियों को, जिनमें है एवेन्यू कॉन्स्टिट्यूशन, एवेन्यू कैटी शॉक और एवेन्यू लेंजिस्के के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि गुरुवार 8 अक्टूबर 2026 को सुबह 8:30 से लेकर दोपहर के 3 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। इस असुविधा के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है और बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई सामान्य पर लाई जाएगी। तो चलिए श्रोताओं, इस समय से लेकर 8:50 पर हम आपके लाए हैं चंद ड्यूएट्स गाने और कार्यक्रम की पहली भेंट में चलिए ये प्यारा सा गीत जो है हम चलाएंगे आशा भोंसले और मोहम्मद रफ़ी की मीठी आवाज़ों में। ये प्यारा सा डुएट जो है बम्बई का बाबू फिल्म से लिया गया आपके लिए।

चलिए, बहुत ही प्यारा सा गीत है जो है बम्बई का बाबू फिल्म से लिया गया, आप के लिए शूटआउट। और इस समय आप सुन रहे हैं चन डुएट्स गाने, तो बहुत ही बढ़िया सा गीत 1960 के सुपर हिट क्लासिक मूवी बम्बई का बाबू फिल्म से लिया गया गीत है जो है आप अभी आपने सुना। तो चलिए, गीतों का ये खूबसूरत सफ़र इसे हम आगे बढ़ाएंगे, और ये अगला गीत जो है एक सालगिरह गीत है, और गीत बहुत ही पॉपुलर है। फिल्म का नाम है मुलजिम, और ये गीत जो है आशा भोंसले और

हमद अज़ीज़ की मीठी आवाज़ों में आप सुन पाएंगे। वैसे जितने भी लोग आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं, एमबीसी की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं।

चलिए श्रोताओ, सदाबहार गीत 1988 की मूवी फिल्म मुलजिम से लिया गया ये प्यारा सा बर्थडे गीत जो है आज भी हर महफिल की शान है। और जितने भी लोग आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं, ढेर सारी शुभकामनाएं। वैसे जन्मदिन हो तो दिन अपने आप खास बन जाता है, तो चलिए हमेशा आपके चेहरे पर मुस्कान बनी रहे आपकी लंबी उम्र की कामना करते हुए। चलिए बढ़ेंगे अगले गाने की ओर। अगला गीत जो है फिल्म दुनिया से लिया गया, ये गीत जो है आप किशोर कुमार और आशा भोंसले की आवाज़ों में आप सुन पाएंगे।

तो चलिए श्रोताओं, गीतों का एक खूबसूरत सफ़र इसे हम आगे बढ़ाएंगे। एक से बढ़कर एक गीत आपके नाम हम कर रहे हैं, बहुत ही प्यार के साथ आप निभा रहे हैं। तो चलिए श्रोताओं, आपके फ़ोन कॉल्स के लिए हम कहेंगे बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए अगले गाने की ओर हम बढ़ेंगे, और ये बहुत ही बढ़िया सा नज़ाना जो है मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की मीठी आवाज़ों में आप सुन पाएंगे।

वैसे श्रोताओं, जिंदगी में कुछ ऐसी यादें होती हैं जिन्हें हम चाहकर भी भूल नहीं सकते। वक्त कभी जाता है, लोग बिछड़ जाते हैं, पर यादें जो है हमेशा जिंदा रहती है। तो चलिए एक अंतिम नजाना आपके नाम हम करेंगे। फिल्म आराधना से लिया गया, मोहम्मद रफी आशा भोंसले की मीठी आवाजों में ये प्यारा सा डुएट जो है, इसे आप जरूर गाइए, गुनगुनाए हमारे साथ।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: चलिए श्रोताओं, समय हुआ है हमारी धरोहर कार्यक्रम का। ये कार्यक्रम किरण जानकी की प्रस्तुति में।
2: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ। हमारी धरोहर।
3: नमस्ते, हमारी धरोहर में आपके स्वागत बा। आज हमनी के चर्चा रही विश्व प्रवासी पक्षी दिवस पर, जोन की बरिस में दो हला मनावल जाला। एगो है 6 मई के और दूसरा है 10 अक्टूबर के। चिराई लोग हजारन किलोमीटर के फासला तय करके एगो महाद्वीप, एगो कॉन्टिनेंट से निकल के दूसर कॉन्टिनेंट में जालन सा, जहाँ मौसम अच्छा बा, दाना पानी भरपूर बा। का तू सोच ले हवा कि इस छोटा छोटा चिड़ई बिना पासपोर्ट के, बिना मैप के हजारन किलोमीटर के सफर कैसे तय करे लन सा? साइबेरिया से उड़ के एगो छोटा चिड़ई हमने के मॉरिशस में कैसे चलावे लन सा? कहे कि उ लोग के विश्वास है कि हियाँ उ लोग के घर मिली। ये बरिस 2026 के थीम और विषय बहुत विशेष बा। हर चिड़ई मायना रखेला और उ लोग पर ध्यान देवे के भी उतना ही मायना रखेला। एवरी बर्ड काउंट्स, योर ऑब्जर्वेशंस मैटर। एकर का मतलब है कि जे तोहर घर के छत पर, खेत में, समुन्दर किनारे एगो भी प्रवासी चिड़ई माइग्रेटोरी बर्ड तू देखबा, तो जे ओकर गिनती करला तो तू वैज्ञानिक के काम करत हवा। बहुत जरूरी बा ई सब चिड़ई के गिनती करे के। आज दुनिया भर में ई बर्ड और आई नेचुरलिस्ट और ऐप्स पर आदमी लोग अपन आँख से देखल प्रवासी पंछी के गिनती पर ध्यान देवत हवन सा, और एकर से पता चलेला कि कौन कौन चिड़ई कमती होवता और केकर रास्ता बदल गल बा, और हमने के कौन कौन झील और तालाब चाहे ई लोग खातिर बचा के रखे के। याद रखिए कि ये चिड़ई खाली चिड़ई नहीं है, हमने के लॉविगोनमा पर्यावरण के डॉक्टर हवन सा। ये लोग बिया हियाँ से लेके हुआ जाके फैलावेलन सा, फसल में जोन कीड़ा रहेला ओके खालन सा, और बतावेलन सा कि हमने के हवा और पानी कितना सफा बा। बकिर आज ये चिड़ई लोग खतरा में हवन सा मोबाइल टावर के रोशनी, प्लास्टिक के वजह से, और फिर झील गायब हो ले जाता इस दुनिया में, उन लोग के घर भी एकर संगे संगे खत्म होता। तो आज का चाहिए करे के हमने के बस दू गो काम करा। पहला, आप अपन घर के आसपास पानी के बर्तन रखिया। दूसरा, जब कोनो चिड़ई लौकी तो खाली ओके देखिया, ओके महसूस करिया, और जे हो सकी तो ओकर एगो तस्वीर लेके ई बर्ड में डाल दिया। ई रहल विश्व प्रवासी दिवस, वर्ल्ड माइ

0: सेक्रेटरी दिवस पर आज के कार्यक्रम कहे कि ई चिराई लोग विश्व धरोहर के गिनती में आवेलन स। ध्यान खातिर बहुत धन्यवाद। नमस्ते।
1: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ। हमारी धरोहर।
2: चलिए श्रोताओं, हमारी धरोहर किरण जानकी की प्रस्तुति में कुछ ही घड़ी में 8-9 बजने वाले हैं और आप समाचार सुनेंगे। समाचारों के उस पार कार्यक्रम जो है आज की चर्चा, इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करेगी अनुराधा, तो उनका साथ जरूर दीजिएगा। वापस मिलेंगे 10 बजे भक्तिधारा कार्यक्रम को लेकर। आप सभी को हम कहेंगे शुभ दिन। तो चलिए एक भोजपुरी गीत आपके लिए।

0: महोबाकवा जलाशय के गिरते जलस्तर से सबसे ज़्यादा पेन विलियम्स इलाके प्रभावित हो रहे हैं जो उसके नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। इस कुछ इलाकों में कई दिनों से पानी सप्लाई बाधित हुआ है जिससे सैपल अलेब्रियों क्लेफू फिनिक्स आदि कई इलाकों में कल रात लोगों ने सड़कों पर उतरकर आक्रोश जताया, रास्तों पर पहिए जलाए गए। स्थल पर मौजूद हुए सांसद कुशल लोबी ने लोगों से शांति बनाए रखने और CWA से ज़्यादा ज़रूरी कदम उठाने की मांग की। उन्होंने कहा कि वे इस बात से भली भांति वाकिफ हैं कि पानी को लेकर देश में स्थिति चिंताजनक है, लेकिन जनता को राहत पहुंचाए जाने के लिए प्रयास तेज किए जाने चाहिए। उन्होंने CWA से पानी के टैंकर भेजने के बजाय दिन में कुछ घंटों के लिए पानी सप्लाई करने की मांग की। सेंट्रल वाटर अथॉरिटी के संचार अधिकारी सुनील गोपाल ने आश्वासन दिया कि स्थिति संभालने के लिए जल्द से जल्द जरूरी कदम उठाए जाएंगे। उनके अनुसार एक कोऑर्डिनेटर की नियुक्ति होगी जो सीधे रूप से बाशिंदों के संपर्क में रहेंगे ताकि उनकी समस्याओं पर सही तरीके से काम किया जा सके। उन्होंने आश्वासन दिया कि CWA के स्तर पर ध्यान रखा जा रहा है कि स्थिति में ऐसी अस्थिरता पैदा न हो। मॉरिशस में पानी की कमी चिंता का विषय बनती जा रही है, फिर भी किसानों को पाबंदियों और जलापूर्ति की दिक्कतों के बावजूद अपने खेतों में सिंचाई करना जारी रखना पड़ रहा है। उनकी मदद के लिए सरकार की तरफ से विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। सौर पैनल बिठाने के लिए खेती से जुड़े सहकारिता संगठनों को 2 मिलियन रुपए तक की नई आर्थिक मदद उपलब्ध कराई जा रही है। इस सुविधा से लाभ उठाने की इच्छा रखने वाले कोऑपरेटिव संगठनों के पास आवेदन जमा करने के लिए अगले 11 नवंबर तक का समय है। शिक्षा के क्षेत्र में मॉरिशस और फ्रांस के बीच एक नई साझेदारी कायम हुई है। मकसद है स्कूलों में फ्रेंच भाषा के पठन पाठन को बढ़ावा देना। शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार पॉकू प्लस नामक इस परियोजना के माध्यम से छात्र फ्रेंच भाषा के इस्तेमाल से विज्ञान को एक नए तरीके से समझ पाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में भारतीय सिनेमा में शोक की लहर चली है। मशहूर अभिनेता नाना पाटेकर का 75 साल की उम्र में निधन हो गया। जानकारियों के मुताबिक उन्हें गोवा स्थित उनके आवास पर बेहोश पाया गया। अस्पताल पहुंचाए जाने पर इस बात की पुष्टि हुई कि दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हुआ है। उधर रूसी ताकतों द्वारा किए गए मिसाइल हमले में उत्तरी यूक्रेन में एक आवासीय इलाके में 19 लोगों की मौत हुई है, इनमें 5 बच्चे शामिल बताए जाते हैं। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए, आगे आ दीजिए, नमस्कार। Your news on NBC Play and NBC.mu.
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MBC Radio.

आप सभी को नमस्कार। आज की चर्चा इस प्रोग्राम में आप सबों का हार्दिक स्वागत हम करते हैं, और अगर आप तैयार हैं, हम भी बिल्कुल तैयार हैं। हमारे साथ तकनीकी साथी हैं यज, हमारी जो प्रोडक्शन सहायिका हैं उरुसा, और ये प्रोग्राम रत्नमाला द्वारा निर्मित हो रहा है ये प्रोग्राम और आप तक पहुंचाया जा रहा है। तो इन लोगों की ओर से नमस्कार, और हमारी ओर से भी आप सबका हार्दिक स्वागत हम करते हैं। वैसे किसी वस्तु या सेवा से अगर हम संतुष्ट नहीं, तो इसके लिए शिकायत करना ज़रूरी पड़ता है, शिकायत करना चाहिए। लेकिन कभी कभार मन में ये सवाल उठता है कि शिकायत कहाँ करें, किससे संपर्क करें।

0: इस शिकायत पर कार्रवाई कैसे होगी, और अगर समस्या या समाधान न हो तो अगला कदम क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए। इन्हीं महत्वपूर्ण सवालों पर आज की चर्चा हम प्रस्तुत कर रहे हैं। और वैसे अगर देखा जाए वो टॉपिक जो है आज है कंप्लेंट्स और रिड्रेस मेकानिजम्स, यानी कि शिकायत और उसके निवारण का अधिकार एवं तंत्र। और इन इस विषय पर चर्चा करने के लिए उद्योग एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्रालय से आए हुए दो कंस्यूमर अफेयर्स हैं, श्रीमती सुपोल जी और श्री मीतू जी हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं। आप दोनों को नमस्कार और स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। और जैसे कि अभी हम बोल ली, हमने जैसी कंप्लेंट पर चर्चा कर जा तो श्रीमती सुपोल जी हम यही खोजब जाने के पहला कि जो कंप्लेंट जो है ये कौन सी है।
1: कंप्लेंट जैसे बोली ला सर, जब एगो आदमी एगो ग्राहक अपन चीज खरीदारी कर लग बा या एगो सर्विस ले लग बा उससे सैटिस्फे नहीं होल बा तो एगो कंप्लेंट आई करे। जैसे बातें लिवरेजन तौदे होल बा, प्रोड्यूआ कासे टूटल बाटे, प्रोड्यूआ नीमन से काम नहीं करता तो अब आदमी ग्राहक तक किन ले लग, अब का करी नहीं सकी सेवी करी तो का करी। तो हमी के मिनिस्टर में एगो सेक्शन बाटे, सेक्शन कंप्लेंट, जहाँ इस सब चीज इस सब कंप्लेंट देखिला सब। तब का करे के चाहना पहला
0: कंप्लेंट जोन है एक जगह महत्व कौन चीज है भाई।
2: कंप्लेंट कैसे बोल जा एगो आदमी एगो एगो ग्राहक एगो एगो एगो सर्विस पर एगो फौजू किन लेबा, तब फौजूआ जैसे किन लेबा तब सर्विस का जो जैसे किन लेबा तब एगो प्रॉब्लम होला, जब फौजूआ नहीं सकता सर्विस करे तब एगो कंप्लेंट करेला। तब कंप्लेंट तो हमी लग आवेला तो हमने देखेला सर कंप्लेंट कैसे है, कौन कौन एक्शन चला लेके देपा हूँ कंप्लेंट वापर। तब एगो आदमी अब कंप्लेंट करेला काहे कंप्लेंट करेला का प्रॉब्लम काहे कंप्लेंट आवेला, जब एगो आदमी को सर्विस से सैटिस्फाइड नहीं जीतू मैं जो चीज़ फौजू किन लेबा बोले फिट फॉर द पर्पज कौन किन लेबा, जैसे को मास नलावे किन लेबा तो मास नलावे का काम नहीं करता था नेक्स्ट का सर्विस करे तो प्रॉब्लम हो जाला, तब था कंप्लेंट करके हाँ कंप्लेंट कहे जला बस की जैसे अगर प्रोग्राम कर रहे सर राइट्स ऑफ कंज्यूमर बोल सर तो एगो राइट्स बोला राइट टू रिड्रेस, रिड्रेस बोल जला जब एगो पोतेज गला कौन समझते कि जब वो प्रॉब्लम होला तो कैसे कुछ सोल्यूशन से कब आने उके दे कैसे कब से एगो एगो सोल्यूशन बो सर थ्री दवा जहाँ था कुमिया समा प्लीज ग्राहक के ये सोल्यूशन अब सर जब दोनों जना
0: योग एक सिचुएशन में संतुष्ट हो जाए लोग तो हो हुई जो न एगो कंप्लेंट जो ने को शिकायत वो बहुत बहुत जरूरी
2: है। इंपोर्टेंस तो है कंप्लेंट वाके जब एगो आदमी एगो ग्राहक एगो एगो एगो फौजी किन लग तब फौजुआ निश्चित सेवी करे तब कौन चीज करी, जब जब कॉम्प्लेट नहीं करी तब कोई नहीं जाने टूटल बा जहाँ पर से किनने बा तो चाहे ओके कॉम्प्लेट करे के जब वहाँ पर कॉम्प्लेट हुआ जाला करे जब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होला जहाँ पर एगो फौजुआ किनने बा एगो मागाजन में जब गल एगो एगो प्रॉब्लम हो गल तब मागाजन में रिपोर्ट कर गल बोले एगो प्रॉब्लम होल बा तब मागाजन ला गल मागाजन कुछ नहीं करता तब भी कहते हैं लैपोथा सह कॉम्प्लेंट वाक हम नहीं लगावेला, जब फोमी सोल्यूशन नहीं मिलेला ग्राहक और कॉम्प्लेंसवा के तब प्रॉब्लम होला तब आवेला हम नहीं लगो कॉम्प्लेंट लैपोथस का है जो एक्शन हुआ नहीं होता जब मिनिस्टर इन्वॉल्व हुई तब काम कॉम्प्लेंट नियमन से सबसे एगो सुधार आने से पागो
0: फॉलोअप चाहे तो ग्राहक लोग के हक कायम रखे के काहे काहे जरूरी है।
2: जैसे बोले सर हक काहे है जब उन लोग के जैसे बोला पुवा दासा वो भी उनके जो चीज किन ले हुआ सर उनके चाहक मजा जो जो किन ले हुआ सर उनके फौजुआ के हिसाब से उनके और सेविसा मिला था जैसे एगो एगो पैसा पे कर लगो फौज के और उन्हें से तो सेविंग करी तो काहे काहे नहीं से तो सेविंग करी उतना पे कर लो सेविंग करके चाहे ना जब उन्हें से किन से सेविंग करे तब उनके एहबूतों हक मजा राइट्स रह के जैसे राइट्स नहीं रही था कैसे सब पूछते करे जो कौन सी माथे की दुआ में नहीं रही वो दुआ नहीं जानी तब कैसे जानी वो प्रॉब्लम बा तब प्रॉब्लम जानी कौन प्रॉब्लम प्रॉब्लम को दवा जानी आगे तब जानी को प्रॉब्लम है ना जो नहीं जानी को मौसम होता कैसे जानी को प्रॉब्लम है उन्हें जानी को चाह करके वो प्रॉब्लम हो तो अपला सही कुछ नहीं करी नहीं जाने कहाँ कॉम्प्लेन करके चाहे ना तब को प्रॉब्लम हो जाला तब ग्राहकों को सैटिस्फैक्शन मिला जो किन लेकर नहीं से कैसे प्रोटेज करे कैसे प्रोटेज करे।

0: प्रॉब्लम है। उन्हें जाने कुछ यहाँ करी के एगो प्रॉब्लम हो तो अपना सही कुछ नहीं करी नहीं जाने कहाँ कंपनी करके छाए ना तब को प्रॉब्लम हो जाला तब ग्राहकों के ओकर सैटिस्फैक्शन मिला जो जी किन लेबा ओकर ने से कैसा प्रोटेज करे कैसे प्रोटेज करे
1: इस तरह बगा तू ने हुई ऐसा हम ही के मिनिस्टर लगे आयन सा कंप्लेन करे पहला चीज चाहला निमन से बोले के कब किन्ने हो प्रोड्यू आ कौन प्रॉब्लम बा प्रोड्यू आ में और ये जे गो प्रोड्यू में गारंटी बा तब बोले के चाहला कितना गारंटी बा जिसों किन ले हो 2024 में 2 ans गारंटी तो 2026 2 ans गन बा तब फिनी होता तब महीना पर बोलियन सा तो दिसंबर में किन लगवा तो अभी ले गारंटी बा ओकर में तब ये सब चीजवन देखी ला सा कंप्लेंट दर्ज करी ला सा तब वो एगो कंप्लेंट पर्सनल कंप्लेंट आदमी ग्राहक को अपन नाम चाहना दे के नाम नहीं दियन सा तो जब इंस्पेक्टर लोग अपन काम कर दे तो एगो फीडबैक नहीं मिली कंसोमाते हुआ के एगो फीडबैक नहीं मिली ये सब चीज इम्पोर्टेंट है ताजा अपन नाम दे के कहाँ किन ले होवन सा प्रोड्यू हुआ कब किन ले होवन सा जे गारंटी बा या गारंटी नहीं बा और एक नेचर कौन क्वालिटी प्रॉब्लम मिला था जैसे एगो मशीन अलावे तो बोलियन सा मशीन अलावे टूटल बा नहीं सकते होवन सा धोई एक्सेट्रा तब ये सब चीज हमें कंप्लेंट दर्ज करी ला
2: तो एक उपभोक्ता के कंप्लेंट जो शिकायत दर्ज करने के सबसे आसान तरीका कौन सी है
1: सबसे आसान तरीका हमें के मिनिस्टर एक हॉटलाइन जैसे बोलिया सा दिल्ली हो सा 185 रोज
2: 185 एन विथ सैंक
1: एन विथ सैंक 185 निवेर आ 4 पाँच दिन लेंदी से शुक्रवार ले ऑफिस मिनिस्टर में रह लंग सा वो लोग टेलीफोने करियन सा तो टेलीफोन लेके कंप्लेंट सके सा दर्ज करी देजेम बा हमी के मिनिस्टर के निमो टेलीफोन जनरल जैसे बोली सा लो रिसेप्शन 460-2500 कब 185 में टेलीफोने करें सा तो ढेर आदमी लोग टेलीफोने करें सा कोनो आदमी लोग कंप्लेंट नहीं मैं एगो रेंसेमेंट ले खातिर टेलीफोन बिजी रहेला तो रिसेप्शन से पासे हुई सर तब रिसेप्शनिस्ट हमी के कंप्लेंट सेक्शन में कोलवा विदा करी और अब तो न्यू जमाना टेक्नोलॉजी के जमाना ईमेलो सेक्शन से विदा करे हमी के ईमेल बा जन consumerpu@gov.mu.org और ग्राहक के सुविधा के लिए एगो व्हाट्सएप नंबर वो बातें ऊपर अपन कंप्लेंट सक्षम से करें
2: तब हर तरह की सुविधा बातें हम के ग्राहक को अपन अधिकार जताए के उलो की आसानी से अपन कंप्लेंट सकेला करें
1: हाँ और ये कोनो ग्राहक लोग प्रेफर करें सब मिनिस्टर हुए आए के
2: पर्सनली
1: मिनिस्टर आयन सा जो हम के मिनिस्टर एबेन में बातें सिकम टावर एबेन जहाँ जो ऑफिशियल लोग बातें जब आयन सा ऑफिशियल लोग के रिसीवर करें सा पारे जन जन चित पूछप सा कौन प्रॉब्लम बा का नाम सब तब लोग के कंप्लेंट ले ला सा
2: तो भाई मीतू जी हमने के सब बोले बतावे कि कंप्लेंट के कितना तरह के कंप्लेंट रहे ना
0: हाउ हाउ आवतली कंप्लेंट है गो यू कंप्लेंट जनरल है तो हमने के चाहला हमने लग देखो नेचर ऑफ कंप्लेंट कौन कंप्लेंट है जैसे हमने लग कंप्लेंट आवला प्रोडक्ट के प्रोडक्ट जैसे बोल जला एको प्रोड्यू किनला नेक्स्ट से सेवी करे मैं गारंटी बा तो उगो डिफेक्टिव प्रोडक्ट हो जाला तो परफॉर्म एगो सर्विस रहेला एगो सर्विस के एगो एगो एगो नेचर ऑफ कंप्लेंट सर्विस है कैसे जैसे लोग प्रोड्यू करें बोला जाए कि रिपेयर करें ये लोग रिपेयर की करके ढेर लेता होता तो प्रॉब्लम है सर्विस के तो हमने क्या देखा और ही बार कंप्लेंट आवेला जो कॉन्ट्रैक्चुअल रहेला वो कॉम्प्लेंट आवेला जो इनको आजा बिजनेस टू बिजनेस था हमने लगे हमने कौन से माते प्रोटेक्शन ने कौन से माते हैं ऐसा ग्राहक के ऊपर ऊपर राज के सुरक्षा कहला सा तो हमें देखिए सर कौन कॉम्प्लेंट आवेला देपा कौन कॉम्प्लेंट कौन लालवा कुवे करता जैसे एगो फौजी बा इलेक्ट्रोमिनाजे एगो लालवा ओकर इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिक डोमेस्टिक अपायंस ओकर ओकर हिसाब से देखी ला सर कॉम्प्लेंट कहाँ पर गिरेला कौन चीज कौन प्रॉब्लम होल बा कहाँ नीचवा है तब एक्शन लेला आप उपयोग दापे है अब एगो कॉम्प्लेंट आए जे एगो एगो आदमी एगो ग्राहक एगो आदमी के देख ले वो काम करके दरमियान काम वहाँ नहीं करता तब आसपा कौन सी बात है प्रॉब्लम हो जा कौन था चलो चला तब हमने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करी ला सर जब देखी ला सर हमने मिनिस्टर पर नहीं गिरेला तब बोला सर वो केस करके सिविल जाए केस पर लाकू जाए के हमने मिनिस्टर हमने लगे केस क्रिमिनल करी ला सर सिविल ऑडियो अधिनियम चला करे कि क्रिमिनल वाला जो लालवा बोले ला हमने केसवा जब एगो कहाँ कहे बदल क्रिमिनल जब एगो एगो कंप्लेंट कर ला

0: तब लो इंक्वायरी के दौरान जब कर ली सर, तब लिखा ली सर एगो एगो एगो सिचुएशन में अली सर जब कॉम्प्लेटवा नहीं सकते सर रिजूट करी दुनिया को जब ब्लॉक कर बा तब कुछ कह रहा सर, तब जैला सर लाकू के देखी सर, तब अमीनक बनाए ला सर ओके स्टेटमेंट दिला सर तो केस आवेले के सर लाकू, अब लाकू डिसीजन करी केसवा कौन छो कहाँ पर जाए, तब वही खातिर हमने ज़्यादा से ज़्यादा बोला सर आदमी लोग के एगो रेजोल्यूशन है कि बोझ पर अच्छी से मजा कॉम्प्लेट तो यहाँ पर सॉल्व हो जाए नहीं छा लाखों के लिए जो सब करके वो बोगो छान जा रहा हूँ बोला तो वही खातिर जाए ला सर, जब को नका नहीं होला नहीं से क्या सब कुछ कही तब लाख हो जाए, तब बस कि हमने को एनफोर्समेंट रूप से है सर हमने को लीगल होता नहीं है सर लीगल लाखू करेला तो लाखों के हम के लॉस लॉस स्टेज है कोर्ट के जाके जब लाखों देश देख करेला कैसे कॉम्प्लेट हो इस बार कौन के का हित में जाए बेस ऑन हाउ बान बान बान डॉक्यूमेंट एलिमेंट्स ऑफ ऑफेंस है सर वो लोग लाखों देश देख करेला कौन सी कौन डिसीजन रही।
1: तो पिछला दो तीन साल की स्टैटिस्टिक का बता बता एक मतलब जन एकर संख्या बढ़ता कि मतलब कम हो होता
2: जैसे हम ढेर एडमिशन करेला सौ टू सब में जाए लासा बच्चाए लासा तो देखते हैं सर जस्ती ग्राहक लोग जाने लग सर एगो कंप्लेंट करी कम से आगे नहीं जाने से लग सर कंप्लेंट चाहे करे के नहीं करे के का हुई एगो फौजी के लंग सर फौजिया डिफेक्चुअल बात डॉक्यूमेंट में डाल लिया सर अब नहीं है सेंसिटाइजेशन एजुकेशन जन सबसे करेला कौन सो माते लोग जस्ती जागरूक हो गल बात जस अब देख ला सर जस्ती कंप्लेंट मिलेगा मैं सिलमा कंप्लेंट वो जब मिला था ते तब ट्रेडर लोग वो लोगों निमन से कंप्लेंट वा हैंडल कर रहे हैं सर तो देखा था इसे को बैलेंस बात है जितना कंप्लेंट मिला था लाओ 80% 90% सब कंप्लेंट वा एगो रिजनेबल डिले में जैसे बोली रहा सर सॉल्व हो जाएगा।
1: अच्छा
2: जो बाकी 1-2% रह गल बा वो लोग में जैसे गो बीच के समाधान नहीं मिला बा तो इन्हें थोड़ा कंप्लेंट ज़्यादा लाकू कोनो ग्राहक को बोला नहीं नहीं अब नहीं आगे
1: नहीं जाइए
2: नहीं तो है जे कंप्लेंट वहाँ फिनी हो जाए
1: तो कबो कबो ऐसे हो जाला कि जिन एक कंप्लेंट उन लोग दर्ज कर लन जा एक परिणाम से उन लोग संतुष्ट नहीं हो बिला तो
0: हाँ जब नहीं होला काहे नहीं होला हमने लालवा के हिसाब से एगो सोल्यूशन दे दी सर जब वो के नहीं सेटिस्फे होला तब देखिए सर बोले से कुछ करी हमने लगा केस क्रिमिनल वो सेटिस्फे नहीं हुई तब देखा हमने तुझो आलप से कोई सेटिस्फेक्शन बोला सर लालवा कैसे बा लालवा कुछ प्रोविजन दे ली बा कुछ कौन एक्शन चला
1: लेके
0: एडवाइस दे सर जैसे बोला सर कुछ कर बा हवा प्रॉब्लम है बा दुबाप सोल्यूशन से नहीं सेटिस्फे होता तब कुछ ना करके तो वो केस सिविल से करे पूछे के ओके डायरेक्टमो जब हमने लगे केस क्रिमिनल नहीं बनल एलिमेंट्स नहीं बा केस क्रिमिनल करके तब एलिमेंट से कि जाए डायरेक्टमो केस सिविल करे ऊपर अपन आबूका देखी अपन सब चीज़ देखी तब जाकर केस करे हमें लगे क्रिमिनल होला हमने केस आवे के लाकू लाकू की डिश देखे हुआ वो अपन अपन को मौसम से अपने करी आबूका देखी केस करी लाकू में लोजे लोजे करी तब जाए लाकू पर केस करी गुजर हा हम लाइक क्रिमिनल होला मिनिस्टर को ते केस वा फाइट होला तब देखला कहाँ पर गिरी कंसुमा प्रोटेक्शन कंसुमाते खातिर ओकर हिसाब से गिरी ला ला सिविल वो देखला बोस पड़ती सर देखला कहाँ पर गिरी तब हमने के जैसे बोला सर कॉम्प्लेंट मिले ला जब प्रोग्राम करें सर आगे तब कंसुमाते लोग ग्राहक लोग के सेंसिटाइजेशन होल बा कॉम्पाउंड से कुछ चल कर रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे आगे जाते सांत में बचाए तब आदमी लोग बोलता था कहाँ जा कॉम्प्लेन करे छोड़ दे
1: दूध डल
0: बा कुछ कब दूसर की नीला तब लोग नहीं जाते वो लालवा बा कि वो लेकर फोतेजे कहला तब वही कहना आदमी लोग की आंखों को आजे कर ली सर जब गोजे कर सर आए कि कॉम्प्लेन करके बोली ला सब प्रॉब्लम नहीं बा कॉम्प्लेट जब वो कॉम्प्लेट होला पर्सनल फौजी के जब छा नाम दे के जब छा हमने नाम खा दे तब बस जब से कॉम्प्लेट और करे इंक्वायरी तो हम जब से बोले कौन नाम के आदमी कौन सी किन ले बा कौन गाँव अच्छी बा तब बोला गवर्नमेंट प्रॉपर कॉम्प्लेट करे ला कि माजे अपन आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करे ला वो खुशी लग माजे एगो प्रॉब्लम बा प्रॉब्लम के कुछ सोल्यूशन हो समय ऊपर नाम नहीं डिस्क्लोज करी माजे एगो प्रॉब्लम है लॉन्ग ड्रामे पा घूम पड़े एगो एगो सीमें सुगम आ समय एगो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए मैं सब ग्राहक बेनिफिट करी एगो आदमी नहीं देवेला को नहीं देवेला वो दे पाओ हाँ दे पाओ को आदमी लोग माजे एगो प्रॉब्लम ऐसे घाव बा तब उसका नाम नहीं माजे नहीं छा मैंशन कर लेके सब बोली जब फौजी होला पर्सनल के सर तब चाहे नाम लेके बस इंक्वायरी के दौरान के चाहे नाम बोल के कुछ कुछ बा आलो को साफ बोल कहीं जब एगो एगो फौजी किन बता गाँवची चाहे ला मिले के चाहे रिटर्न रह के नहीं चाहे अजीज बोले के गाँवची बा दे जाओ एगो पापी नहीं बा फूवे करके जब हम जब सर लौकेत करे तब बोले सर गाँवची बा कि नहीं बा तो वो लोग बोला नहीं जाएगा बोले वहाँ सर गाँवची बा

0: जाप्त थे देख लिख बोला गाँव ची बस कभी की गाँव ची है नहीं हा उगाचो नहीं हा नुबो लालुआ तो आपके उम्मीद सब चीज एगो डिफ्रॉ रही हबी जो एक्जिस्टिंग लोग भाव पर काम करते जब जे कोई बोलेगा गाँव ची पापी नहीं मिलेगा कोई जान सर रिसीव नहीं मिलेगा तो प्रॉब्लम हो जाए हमने के कॉम्प्लेन करके देखे कि तो नहीं जान सर के किन लेबा किका नाम में किन लेबा गाँव ची मिले बा कि नहीं मिलेगा तब भी खाली हमको प्रॉब्लम ले ला सर सिम हम के लौके एलिमान रहेगा लौके तो देखिए जब सब चीज मिलेगा तब लालवा के लालवा के हिसाब से देख ला सर देवा कुछ कर लेवा तब जैसे जयला सोल्व लगे तब केसवा सोल्व चला
1: अभी तक हमने कितना प्रोग्राम सब जा बोले कितना प्रोग्राम MBC रेडियो टीवी के जरिए बहुत प्रोग्राम कर दीजा जैसे अभी श्रीमती सिपोल जी बताई लेन कि कितना कोई अब मतलब उतना डर नहीं लगेगा आकर के अपन कंप्लेंट दर्ज करेगी सीख ले लें सर कि जहाँ उन लोग के अधिकार सब बा
2: उन लोग के दुआ है कंप्लेंट करे के एगो जब एगो फौजी के लिए हुआ तो ओके सेटिस्फैक्शन मिले के सकबा से भी करें नहीं कि एगो फौजी के लिए हुआ अब नहीं सकते हो से भी करें अपन पैसा भी दैला अपन लेता हूँ सब चीज़ भी लागल तो चाहे ला कंप्लेंट करे के और ही जब कंप्लेंट करबा तब जानब स तब को मैं ऐसा हो जानी जिन जो फौजी बेच लगबा तो अच्छा नहीं बातें चला एगो सोल्यूशन किने के जामे कंप्लेंट कमती मिली
1: तो ई प्रोग्राम के जरिए हमने के काफ़ी लाभ उन लोग के देलन जा जितना श्रोता जितना के दर्शक हमने के सुना अभी हम लोग एक ब्रेक लेते हैं फिर इस चर्चा को जारी रखेंगे

0: आज की चर्चा।
1: एक जागरूक उपभोक्ता के रूप में हमारे अधिकार क्या हैं और शिकायत के समाधान के लिए उपलब्ध रास्तों का सही तरीके से उपयोग कैसे किया जाए, इसी विषय से संबंधित आज की चर्चा इस समय आप देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं। तो हमारी जो दो अतिथि हैं, श्रीमती सुपोल जी और श्री मितू जी, वो जो कंज्यूमर अफेयर्स ऑफिसर्स हैं, और अब हमने खोजब जाने के कि कंप्लेंट के घटाई के घटाई खातिर कौन कौन कदम चाहे ना लेके।
2: तो एगो कंप्लेंट बोले मौसम से कंप्लेंट एगो आदमी टेलीफोन के रजिस्टर करे हम लागे, तो हमने एगो पोर्टल में रजिस्टर कर लिया सर। तब कंप्लेंट रजिस्टर हो जाला तब ओके एगो निमेरो मिलेगा कॉल पोर्टल में। एगो कंप्लेंट एगो आदमी आदमी पेंस के कंप्लेंट होला तो एक्शन नहीं लेगा सर। तो ऐसे नहीं होगा, मैं जब कंप्लेंट होला रजिस्टर होला सिस्टम में मिलेगा सी एस यू में, तब आदमी पर निमेरो पोर्टल मिला। तो जैसे कंप्लेंट रजिस्टर होला तो एगो निमेरो डायरेक्टली कॉल पोर्टल में चला जाला, ओकर रेफरेंस है एगो टेल निमेरो टिकट नंबर से बोला सर, ओकर रेफरेंस का कंप्लेंट है। अब जैसे है कंप्लेंट जब मिले हम लगे तब हर एगो कंप्लेंट एगो इंस्पेक्टर हमने के कार्ड में कंप्लेंटों के दीवार जला को लॉकेट करके, तब जो लॉकेट करेला तब फीडबैक देवेला आदमी कुछ होता पकड़ो डॉक्यूमेंट मौके बा लालवा कुछ बोलेला ओके फीडबैक देवेला है। अब कौन से अब घाटा है कि कैसे बात है, जब थ्रेडर लोग और कौन से माते उनके धुआं जाने ला तब एगो कंप्लेंट काहे होना मिला गे। फोमियमा वो कंप्लेंट होला जब एगो आदमी को फौजी किन लेवा, जैसे वो कमियासन लागे वो प्रॉब्लम हो तो हम ही लाग नहीं ना वो जगह कौन सा कमियासन लागे वो कंप्लेंट करी हम लापारी ने छवा टूट गल बा लालवा बला बनाए के था
1: जहाँ किन लेबा हुआ जाए सबसे आगे।
2: जब हुआ जाए वो लापारी बल के रिटिन्यू हो जाए तो हम ही लाग कंप्लेंट नहीं करी बस वो प्रोमियर आ प्रिलिमिनरी स्टेप में वो कंप्लेंट सॉल्व हो गल बा। जब हुआ गल तब लिखा था कमियासन हुआ जहाँ किन लेबा प्रॉब्लम करता तहदी करता है करता ओके बता अकाल आए के हाउ समय आए के
1: आप लोग
2: तब जब आदमी हो जाला है सब दाफेवन से स्ट्रेस हो जाला तब बोला कुछ करा कुछ
1: नहीं करता।
2: हाँ तो दीपो है कोनो आदमी एक समय के बाद कहला कंप्लेंट कोनो आदमी आता है कहला एक बजे को वैसा कर लेता जला एन मुआ दे मुआ तब हमें लगावला दे या रिजोर्ट हमें लगावला। जब नहीं होला हम वापस सॉल्व प्रॉब्लम नहीं होता तब हमें लगावला तब हम जब एंटेविनिय कही रास्ता प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए एन चुमा काहे कुमौसम काहे नहीं था लोग प्रोसीजर प्रोसीजर आदमी साथ ही कोचा कंपनी में के तब हमने मिनिस्टर के चर्च से इंटरव्यून कही रास्ता लालवा पर आधार पर एक्शन ले रास्ता तब काम हालियल हो जाला। अब कंप्लेंट काहे जिम्मे कर सर जब आदमी लोग के सब कुमौसम में ऑन द आउटसेट कुमौसम में थ्री डबल सही को यहाँ किन लेबा हुए से प्रॉब्लम सॉल्व होता तो हमें कंप्लेंट कम थी होला जो आदमी कंप्लेंट नहीं करेला चाहे वो प्रॉब्लम चला समझो कि कंप्लेंट कौन छा फिर आदमी सैटिस्फाइड में गुजाफिया से तो फौजी से पर सर्विस से तब हमें आवेला तब कुमौसम से जो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो हमें लग नहीं आयु तब देखेला और जो प्रोमियर कुमौसम जो सोल्यूशन मिलल वो सैटिस्फाइड नहीं बा तो हमें लग आवेला तो हमें देखेला सर लालवा कुछ बोलीला तब दौरान से बोलिए सर कौन रेजोल्यूशन सबसे दी तब ऐसे ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए कमियासों में लोग लोगों के जागरूक हो बाकी कौन फोन सब प्रॉब्लम कहाँ है पफल को प्रॉब्लम आदमी साचिफ है तो इतना और बोला जैसे एगो एगो एगो एगो कंप्लेंट कर ला एगो एगो पी एस तो मासिन में टूटल बा तो पफा पी एस वाल नहीं रहेगा चला ऐप होती करेगी तब हाउ ले चवा मैं तो इतना और जला जे गाँव से नहीं पहुँचवा मैं तो जैसे लालवा बोला चुके चला सब पूछे देखे सहवी करेंगे जे गाँव से नहीं रही तब हमारा गाँव से लालवा नहीं हिलेगा तब कुछ अतान करके पी एस वा आए कि तब बनाए के तब पफा हमने एस पी ए के दे सकला क्योंकि पोचे जो ऐसे है तो पफा समझे लंग से पफा नहीं समझे लंग से जब नहीं समझे लंग से तब तब तब इधर से कोई दूसरा केस कर
1: सर मैं कितना समय लगे लाए को कंप्लेंट आप लोग के यहाँ मतलब सुलझावेंगे
2: देपा हाँ जैसे तारा बड़ी नेचर वो कंप्लेंट जैसे एगो बा एगो आदमी कंप्लेंट कर लेगा एगो एग्जाम्पल दुआ था एगो आदमी कंप्लेंट कर लेगा एगो प्लस गर्ल एगो स्पैम वर्सेस को लाभ चिक में बोला फ्री नहीं बा तो वो कंप्लेंट कर लग तब कंप्लेंट कर लग आज कल हमने किस बार दो दिन बाद हमें कंप्लेंट मिला गर्दी सा एक्शन ऐसी ले ली सा जगह का तब कंप्लेंट बोली सा कुछ हल बात एक समय हो जाला अब वो कंप्लेंट बा डिफेक्टिव प्रोजेक्ट वाले वो प्रोजेक्ट नहीं छा तब चाहे कंप्लेंट कर ली कि वो लोग ये कुछ बोले ला गाँव ची बा दूसरा दिए कि दीपा हाँ कौन कौन कौन प्रोसीजर है एवरेजली एगो एगो कंप्लेंट सिंपल सिंपल वा एन समय में हो जाला दीपा हाँ जैसे हमके कंप्लेंट मिला

0: turkey. Le turkey le ba ha problem ha combat une telle lamba jala au départ on peut si des petits éléments là que c'est beau complète mais là checker quelle que j'ai au deuxième place tout dirait quoi le départ ha seulement au combat ça qui là problème le goal l'appareil c'est chaque là juste il est en ligne ça qui là comme il est en ligne au départ ha case to case au complète quelque
1: jabego matabego vyakti au complète carrière ta au cas parinam kon expectation
2: ज़्यादातर केसेस में देखी रहा सा आदमी लोग जैसे गो प्रोजी डिफेक्टिव आते रिपराशन के बिलाफ रंग सा ते नहीं आतान करे रंग सा रिपराशन बोले रंग सा गो प्रोजी नेफ दे के नवा प्रोजी ऐसे डायरेक्ट डायरेक्ट नहीं मिले ला एगो प्रोसेजियर हा नवा प्रोजी मिले के तो पहला स्टेज पहला स्टेप कदम चला जब जालंग साबन फौजी छोड़े रिपराशन करे के तो वो लोग के चाहना एगो डायग्नोसिस करे के देखे के का नहीं अच्छा बात है फौजियों में कुछ टूटल बा का बा सकियन सा रिपारे करे तो रिपारे करके फौजुआ रेतूने करे रंग सा जब फौजुआ रेतूने होल ग्राहक ले लग देखा था सकता सेवी करे सचिस्फे बाते तो हाइजे कंप्लेटवा बंद हो जाला अब जब कबो एगो फौजी गल रिपारे करे आ घरे सेवी कर लंग सा फिर से टूटल तब फिर से गल रिपारे करे तब ई थोड़ा जस्ती लंबा ले ला जे सेम नेचर ऑफ प्रॉब्लम हो तब चाना दूसर चीज वहाँ थ्रेडर लोग के बोली रहा सर काहे फौजुआ हर कुछ टूटा था चाहे ना देखे कि कौन प्रॉब्लम बा इन डेफ तब ई में इन्वेस्टिगेशन थोड़ा जस्ती लेता हूँ लेवेला से मॉल आप ही पहुँचता हूँ जब ग्राहक के कंप्लेंट करेला वो लोग के वो लोग आतान करे लंग सा कि कुमार जाओ लोग के कंप्लेंट हाली से हो जाए
1: बंद हो जाए समाधान मिल जाए जल्दी जल्दी अब हाली हाली से
2: ठेर का मैं देखिला सब कंसुमाते हैं लोग ने जा ने खोजे जालंग सा लाकू बंग सा लाकू एगो झंझट लाकू ने जालंग सा मैं वह मैं लाकू जाए के एगो लंबा प्रोसीजर है लंबा कबो रेजोल्यूशन मिली नहीं मिली ये सब हाँ मिनिस्टर पर नहीं दे पान बातें सब लाखों पर दे पान मजिस्ट्रा लोग के दे पान
1: और कबो कबो देख ला जा कि कोनो जो ग्राहक कोनो उपभोक्ता वो हिचकिचावे ला एगो कंप्लेंट दर्ज करावे कबो कबो बोले जा कि हमारे तक कंप्लेंट तक छोटा है वो कंप्लेंट वहाँ नहीं दर्ज करी तो इमें तो नहीं छोटा के बड़ा कंप्लेंट तो कंप्लेंट है
2: हाँ कंप्लेंट छोटा बड़ा नहीं है एगो प्रोजेक्ट किनला एगो सर्विस लेला उमें सैटिस्फैक्शन मिल उतो लोग के हक है चाहे ला आगे आए के बोले के हम पैसा पे कर ली तो हमके सैटिस्फैक्शन नहीं मिला था हमारे प्रोजेक्ट हमारे सर्विस से तो का सकब करे एंड कमीशन के ओब्लिगेटरी बातें एगो समाधान दे के जैसे बातें प्रोजेक्ट किनला प्रोजेक्ट ने डिफेक्टिव उन लोग के चाहे ला रिपराशन करे के
1: और रही बात ऑनलाइन ख़रीदारी ये तो अभी आजकल के मतलब कैसे बोलो अब जा आजकल सब कोई ऑनलाइन ख़रीदारी करे तो ई में जो कंप्लेंट मिलेला तो ई अलग है जो कंप्लेंट हो जाला
2: हाँ
1: कैसे लोग
2: ज़्यादातर देख ला सब कंप्लेंट ऑनलाइन अब तो एगो रेगुलेमेंट है बातें आज सच ऑनलाइन में से सब कोई ऑनलाइन बेचा था पा नेसेसेरमेंट एगो कॉमर्स हाँ वो लोग के रजिस्टर्ड बिजनेस में बातें तब हमें डिफिसिल हो जाला कंप्लेंट जाए के इन्वेस्टिगेशन करे के ऑनलाइन बिजनेस में जब एगो खरीदारी करूँ तो एगो गारंटी नहीं देवे रंग सा कबो गारंटी नहीं देवे रंग सा कबो कंप्लेंट ग्राहक लोग बोले रंग सा जब अब टेलीफोन करता तो टेलीफोन बंद बातें तो ये सब फिर से जैसे आगे बोल ली है सब कौन सुमाते के रिस्पॉन्सिबिलिटी बात जब एगो प्रोजेक्ट किना था वो ऑनलाइन चाहे ला रिव्यू चाहे ला सब चीज़ देख के चाहे ला जाने के कि ऑनलाइन बिजनेस हुआ एगो रजिस्टर्ड बिजनेस है उबिया कि एगो इंडिविजुअल इसने एगो प्रोजेक्ट लेके बेचा था ते ये सब चीज़
1: तब ओकर प्रक्रिया अलग
2: बात प्रक्रिया अलग बातें कबो जब हमी के मिनिस्टर से नए समाधान नए सकब सब कुछ करे तो ला पुलिसों के विदा करी ला सर जैसे एगो केस फ्रॉड हो गया जैसे कोई कोनो ग्राहक लोग प्रोजेक्ट प्रोजी पे कर दे हो सर तो कबो नहीं लिवरेजों सामने नहीं कबो नहीं होल बा
1: हाँ
2: तब ये गो का फ्रॉड मैं गनाई जैसे अब टेलीफोन कराता थे तो आदमी वहाँ ग्राहक कमेसा वहाँ टेलीफोन नहीं लेवा था वो भी आदमी वहाँ के ब्लॉक कर दे लगवा तब कहाँ जाए
1: तब ऐसे में आप लोग सब मजे को मतलब एडवाइस दे कि ई सब

0: जिन को पैकवा चला फोन के जरिए, तो आप लोग फोन करके बोल सकबा।
1: हाँ, फोन करके लोग के और ये हमी के शिक्षों में हमी के ऑफिशियल लोग बातें कोम्प्लेटवान देखियन सा, तब हम ये के मिनिस्ट्री से कोम्प्लेटवा कमिश्नर डी पुलिस के विदा कर दिला सा, तब हो जा वो लोग देखियन सा कौन बाशाफी
0: जारी रही लाभ।
2: हाँ, जैसे ऐसे बोला ऑनलाइन ऑनलाइन एगो सुविधा है सबको के, अभी वो ट्रेन बग मार सबको घर बैठे वो जैसे कमान करे इसमें सब चीज में एगो एगो रिस्क है माजे एगो रिस्क माजे फौजवा तो पारी नहीं मुझे देखला पास की सकेला को फौज है कुले बात को डिलीवर बहावला तो हमने जैसे बोला सा ऑनलाइन एगो एगो जैसे ग्राहकों को रिस्पॉन्सिबिलिटी है देखे के कि नहीं कि ना वो कितना के देखे बस कि जैसे जब बोलता राइट टू इन्फॉर्मेशन एंड राइट टू चूज वो लोग के आधार पर बा तब वो कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जैसे बोला सा जैसे एगो एगो एगो एगो एगो प्लस में ऑनलाइन बेचा था देखा होगा को फिजिकल एड्रेस बा हजे सीताजे वो कुमे सो बा बिजनेस बा सगलू सगलू ऑनलाइन वो दिवा था जब वो प्रॉब्लम था कार सब वो गला जाए जी तब प्रॉब्लम नहीं रही तब एगो तब एगो सुविधा से कि मीना मिला गई। अब एगो ऑनलाइन खरीदारी के ना बिजनेस रजिस्टर ने हा ओके लालवा रेगुलेट ने करेला अब ग्राहक ओकर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके किन ला तब ओके ओको में थोड़ा हमें अब ओके बोलन सा पे कर जूस कर पैसा ट्रांसफर कर तब हो जुआ आए मजे इन्फासों मारे वो अपन बिजनेस करा था प्लीज क्लियवा के बोलता है ग्राहक को बोलता बिकीने के चाहना तब हमने जैसे बोला सा तू लेता हूँ जब कैश ऑन डिलीवरी के ऑप्शन की सहसरी करा का है पस जब आए बता भोजवा देख बात रहा ना तब पे करता जितने साक्ष होता नहीं पे करा और वो मैं ऑनलाइन में रिसी नहीं है गाहौची नहीं है तब कल वो कंप्लेंट बोलता हमने के इन्फॉर्मेशन होता मौके पर कौन कैसे इंक्वायरी कर सकता प्रॉब्लम में जरा तो हमको बोला हालात झेक तो जाके साहब काम जिला पुलिस का आवाज करके तब ला पुलिस तब ऊपर आप याद रहे से जिला कहाँ पर बिजनेस करेगा।
0: तो कभी ऐसा स्थिति चला बा जब कोई कंप्लेंट शिकायत कोई दर्ज कर दे बा पर वो लोग के अपन जिन मतलब समाधान नहीं मिलल बा तो मतलब गुस्सा कर लन सब मंत्रालय से ऐसे आप ही लोग ऑफिशियल से अपन
1: निकाले होला ये सब बातें जैसे बोलिया सा डिफिकल्ट कस्टमर कोनो ग्राहक लोग नहीं समझे लंग सा लालवा का
0: शोभा नहीं देवेला।
1: हाँ, ये शोभा नहीं देवेला सिलमा टॉक पोसी हैंडल कर लेला सर
0: बिल्कुल
2: ग्राहक जिफिसल है हमके साथ कॉम्पॉइन के सिकोलॉजी है ओके वो एगो ओपिनियन बना के आलवा हमके छा ऐसे करे के ऐसे करे के तो हमके लालवा है ना लालवा ऐसे बोले ला तब बोले सर अभी हमने ओके कौन से माथे के पोते से नहीं खेला सर जब आदमी पहुँच सकेला प्रोटेक्शन कंज्यूमर प्रोटेक्शन कौन से माथे तो बोले एनसेल अम्बरेला क्या बोला सब हमने के लालवा को जिफिस करा मैं सैतन बन कैटेगोरी quand même qu'on se mette à l'anglais n'est aïe mais seulement on est préliminaire et inquiry curry là ça t'as dit que ça n'est ce qu'il a fait que l'institution appropriée qui transfère curry là ça t'as bien ce boy là ça t'as le problème pour le bas t'as j'essaie ego admis un gougar au complet que l'ac expired food c'est pas ou galego produit qui n'est produit expiré bah gâté ou galba t'as ça qui complètement mis la curry c'est moi on mis la qui complètement j'ai mis c'est la santé direct parce que hamni ke minister ke ne okata ine girela tab la santé ou pan procédure kari tab pa fabela sa hiya kala ba complet toi huma chal gaba ko chul ba pa bidon en go go feedback ne milata tab ila sa ko so ta huma chal gaba ta chala huma se dekhe ki ta hamni ke sampark kari kuma pri par hamni ne sabse bole kuch hain bose loke procédure jis par hamni se kan ni boila sa ba pa lok ne satisfait hola boila sa na yo complet kal ba hiya ko chul ba pa action ile ta sok ma complet ki bekhala
0: sa hola hola तो शिकायत और उसके निवारण का अधिकार एवं तंत्र इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। और अगर आपके पास कोई सवाल हो या कोई विचार हो आप 2408085 पर हम लोगों को फ़ोन कर सकते हैं।

0: आज की चर्चा इस प्रोग्राम को हम जारी रखते हैं, शिकायत और उसके निवारण का अधिकार एवं तंत्र, मतलब इस पर चर्चा करते हुए इस विषय को जारी रखते हैं। तो अगर देखा जाला हमने के जो बुजुर्ग लोग रहला वो तो 185 यानी एन विच सैंक या फिर जो आप लोग यहाँ के जो निमेरो रहला तो वो लोग सकेला कोई कॉम्प्रेट है मर बुजुर्ग लोग तो वो लोग नहीं सके करे तो वो लोग के कौन कौन सुझाव कौन चीज बोल बा लोग के
1: कबो बुजुर्ग लोग टेलीफोने नहीं सके लंग सा करे बे निमोवा ने याद रहेला तो कैसे दर्ज करियन सा। अब वो लोग के तो कबो मेल वो नहीं सके लंग सब या करे इलेक्ट्रॉनिक मेल
0: या व्हाट्सएप
1: और ये बैन में आए के तो डिफिकल्टी मिलेला ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा अवेलेबल कबो नहीं रहेला तो लोगों खातिर एगो सुविधा बाटे वो लोग के रीजन में जैसे बोले सा कब ऑफिस बाटे सब सब रीजन में कब ऑफिस बाटे तो सकियन सा कब ऑफिस जाए हो जा बाद ऑफिशियर बाटे कब ऑफिस में ऑफिशियर काम करेला मिनिस्टर हमी के मिनिस्टर के ऑफिशियर हैं कब ऑफिस के ऑफिशियर हो सा तो वो लोग के कंप्लेंट दर्ज करियन सा तब कंप्लेंट वाले लियन सा पारे नाम नेचर कंप्लेंट निम्बो टेलीफोन एक्सेट्रा तब कब ऑफिस का करेला हो कंप्लेंट हमी के मिनिस्टर में भेजेगा तब जब हमी के मिनिस्टर में आवेला तब हमी हैजा से शुरू करिया सा लॉन्ग के टू सा
0: ऐसे देखा चला तो काबो फिसवा सघरो बा हमने के देश में
1: हाँ
0: ऑल अराउंड
1: रीजन वाइज
0: तो ऐसे होला कबो कबो
1: हमें के ढेर कंप्लेंट मिलेला काबो फिस पर
0: से और मतलब जैसे सोशल मीडिया देने से कबो कबो शिकायत देखी ला जा तो सोशल मीडिया पर शिकायत करना और आधिकारिक शिकायत दर्ज करना मतलब क्या दोनों में कोई अंतर है?
1: हाँ अंतर है। जब एगो ऑफिशियल कंप्लेंट करबा तब ऑफिशियल लोग जाला इन्वेस्टिगेशन करे। सोशल मीडिया में तो सब कोई सब चीज़ सकेला कमेंट में डाले ये सब कमेंट में हमी के मिनिस्टर नहीं लेवेला ऑन कंसिडरेशन। जब एगो कंप्लेंट रहेला तो चना ऑफिशियली कंप्लेंट वा करे जैसे बान समाधान बोली मीडियम बातें कंप्लेंट करके टेलीफोन व्हाट्सएप ईमेल कब ऑफिस उबिया मिनिस्टर आए के हाई सब मीडियम से कंप्लेंट करबा
0: तो लोग के होला
1: हाँ वो लोग के कंप्लेंट दर्ज करब सर तब इन्वेस्टिगेशन
0: सोशल मीडिया
1: पर नहीं
0: ई मंत्रालय ई में मतलब
1: एगो अभी ले एगो पॉलिसी ने बातें ई पर सकेला फ्यूचर में हो ये नहीं सकब सब बोले मैं अभी

0: आज़ाद दे कुआं जाए सोशल मीडिया के कमेंट पर हमें कंप्लेंट नहीं ली जा सकती।
1: नहीं, इस बोला सोशल मीडिया को प्लेटफॉर्म सबको एक्सेस एक्सेसिबल है सबको ये तब एको प्रॉब्लम होला तब एको आदमी लोग पर अपन ओपिनियन दे बोले लंग सा स्पाहाई ने छबा उका उका एक्सपीरियंस के दौरान से वो बोला है ने छबा सके हो आदमी को अच्छा लगो तो तब वो बोला ऐसे नहीं थे कमेंट के पर हिला कि नहीं पर हिला ऑफिशियल लगो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जब एक आदमी को प्रॉब्लम बा पारे देखा था एक प्रॉब्लम भूलबा वो पहुँच सकता था ओकल को प्रॉब्लम बा पारे जैसे बोलते हैं कॉन्समाते हैं तो सके हमें लगा टेलीफोन करे तो वो कंप्लेंट दे ऑफिशियली तो ऑफिशियली को कंप्लेंट होला था ऑफिशियली ओके को निमोरो मिला तब लॉन्केट को मौसम होला तेने से कि जाए बोले सोशल मीडिया में एक प्रॉब्लम बा सोल्यूशन नहीं मिला था तो है कोई एक्शन नहीं हमने के को रूल्स एंड रेगुलेशन हम जिससे कि हाउ के दौरान से काम किया सर फिर को ऑफिशियल कंप्लेंट मिली तो ऑफिशियली हमने के कंप्लेंट मिली या कि लॉन्केट करके ना तब ओके फीडबैक दिया सर ऑफिशियल कुछ बोला जब मैं अपन नाम दे अपन अपन अपन कोडने दे कि बहुत टेलीफोन दे कहाँ पर किन ले बा कुछ किन ले बा कब किन ले बा गाँव जी भाई सर एफ मौसम के चाहिए कि लॉन्केट को मौसम करके जब एक सोशल मीडिया में अपन लुपिनियन ला दो अच्छा बात है अपन लुपिनियन तब हमने लुपिनियन नहीं दिखला सर ना हमने के मिसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में हाउ पर नहीं काम किया ओकर गो एगो सीट हो गया कभी कंप्लेंट रजिस्टर कर सी एस यू में हाउ पर काम किया सर आदमी सुने कहला ईमेल आवे कहला टेले आवरी बिरो आवेला तो कंप्लेंट दे सर ऑफिशियल तब एक्शन ले सर ऑफिशियली अच्छा बा सोशल मीडिया में अपन अपन ओपिनियन दे है अच्छा बा सबके जानकारी मिलेगा संभाली ऑफिशियल ने हम इंस्टे के
2: और उपभोक्ता के मतलब खरीदारी करे रहन से कौन कौन डॉक्यूमेंट या एविडेंस चाहेला तो जैसे मतलब संभाल कर उन लोग के रखना चाहिए जैसे आप लोगों ने बोला उसका रिसीप्ट इनवॉइस वारंटी सब लोग के चाहेला रहेगी
0: ये सब चीज़ इम्पोर्टेंट है कि जैला एगो मंगासे में किन ले ला पैसा पे कर दे ला ना कुछ ले ला डॉक्यूमेंट सब नहीं ले ला अब प्रॉब्लम होता
2: बहुत जरूरी है
0: बहुत तो मगाजा में ढेर ढेर क्लियर हो तो लोग के इंचफे करे के है जे किन ले हुआ उबे दूसर मगाजा में तो प्रॉब्लम हो जाला चाहे ला एगो प्रव दाशा तुलेता रहे के
1: तब एगो है एगो आदमी जब किन लगो फौजी अच्छा हम एगो फौजी किन ली एगो दूसरा आदमी के नाम वो किन लेवा फौजी हुआ हम गई फौजी हुआ किने ओकर नाम बस मो तब आदमिया तब एगो प्रॉब्लम होल जब जो रिसीद आदमिया के नाम पर बा वो कॉम्प्लेट नहीं करता सब ओकर को फार्म ही कॉम्प्लेट करता तब बोला सर तो हाउ आदमिया कॉम्प्लेट ऑफिशियल जैसे बोला लीगल ओनर ऑफ द गुड्स आदमिया जो को रिसीव बा तब वो आदमिया तब कॉम्प्लेट नहीं सकता करे ये करता जब केस सॉल्व होता कोई बा जब केस कॉम्प्लिक हो जाला तो जो आदमिया को मौसम से किन लेवा ओके चलाए कि स्टेट पर लेके लाख पूजा तब वो एक अच्छी प्रॉब्लम लगा है बस आदमिया के व्यवसाय जिफो ये तो एक दूसरा व्यवसाय बोला था हम ही चाहते हैं आदमिया के व्यवसाय वो किन लेवा रिसी ओकर नाम पर बा वो पे करता काहे खातिर वो फार्मी आता करे कंप्लेन तो बिना सर नहीं अच्छा भाई कंप्लेन करता से वो मेन मेन कंप्लेन था जो आदमिया तो किन लेवा तब इवन में जब कहो जब सा किने रिसी मांग गाँव से मांग सब चीज़ मांग पूछा फौजुआ कैसे कौन चीज़ होला गाँव से कुछ कुछ करता फौजुआ कैसे से सर्वे करके सब पूछा आगे किने के तब जब जब एफ मौसम तो मिल रहा है तो कॉम्प्लेन झिझकते में चल रहा करें वहाँ पर ही तो हमें लग नहीं चला आए के खूब मौसम से जब देख रहा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता तब हमें लग चला आए
2: तो हमें पूर्ण आशा है कि काफ़ी जानकारी हमारे श्रोताओं दर्शकों को मिला होगा इस विषय पर तो शिकायत करना केवल अपनी समस्या का समाधान पाने का माध्यम नहीं है बल्कि इससे बाजार में जवाबदेही के और बेहतर कंज्यूमर सर्विस को भी बढ़ावा मिलता है तो आज हमारे साथ यज उरुसा और रत्नमाला के निर्देशन में ये प्रोग्राम प्रस्तुत किया गया और हमारे साथ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड मतलब कॉमर्स कंज्यूमर प्रोटेक्शन यूनिट से आए हुए श्रीमती सुपोल जी और श्री मितु जी को इन सारी जानकारियों के लिए हम धन्यवाद देना चाहेंगे बस सही जानकारी मिलल हुई ऐसी हम कामना करते हैं एक अगली भेंट तक आप लोगों से आज्ञा चाहेंगे फिर मिलेंगे नमस्कार।

0: आइए अभी के लिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आपके साथ अदिति। नमस्कार आपको।
1: नमस्कार मनीष्मा, श्रोताओं को भी नमस्कार। महोबाकवा जलाशय के गिरते जल स्तर से सबसे ज्यादा प्लेन विलियम्स वाले इलाके प्रभावित हैं जो उसके नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। कुछ इलाकों में कई दिनों से पानी सप्लाई बाधित हुआ है जिससे सैंपल आलेबो योंक्लेफो फिनिक्स आदि कई इलाकों में कल रात लोगों ने सड़कों पर उतर कर आक्रोश जताया। रास्तों पर पहिए जलाए गए। सेंट्रल वाटर अथॉरिटी के संचार अधिकारी सुनील गोपाल ने आश्वासन दिया है कि स्थिति संभालने के लिए जल्द से जल्द जरूरी कदम उठाए जाएंगे। उनके अनुसार एक कोऑर्डिनेटर की नियुक्ति होगी जो सीधे रूप से बाशिंदों के संपर्क में रहेंगे ताकि उनकी समस्याओं पर सही तरीके से काम किया जा सके। देश में पानी के भंडार की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। महोबाकवा जलाशय में जलस्तर इन दिनों लगभग 35.8% पर है। पिछले दो सालों के दौरान बारिश की कमी के कारण उपलब्ध जल संसाधनों पर और कई इलाकों में जलापूर्ति पर असर पड़ रहा है, खासकर उन इलाकों में जो महोबाकवा के सप्लाई नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए सेंट्रल वाटर अथॉरिटी अपने संसाधन प्रबंधन में बदलाव ला रही है और लोगों तक पानी पहुंचाने के वास्ते विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं। कौंदस के विक्टोरिया अस्पताल में एक नई ट्रॉमा एंड इमरजेंसी यूनिट की स्थापना की गई है जिसका उद्घाटन स्वास्थ्य मंत्री अनिल बेचू द्वारा किया गया।

0: इस नई इकाई का मकसद है तत्काल चिकित्सा सहायता की आवश्यकता वाले मरीजों को दी जाने वाली देखभाल बेहतर करना, साथ ही अस्पताल में भर्ती मरीजों का तेजी से इलाज किया जा सकेगा। उद्घाटन के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने मेडिकल सेवाओं को आधुनिक बनाने और लोगों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने की अहमियत पर बल दिया। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, कीनिया में एबोला के कारण एक प्रथम व्यक्ति की मौत हुई है। उसके संपर्क में आए 10 लोगों को क्वारंटीन में रखा गया है। इस व्यक्ति ने कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य का दौरा किया था। अब उन 57 लोगों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है जिनके संपर्क में वो आया था। इस प्रथम मामले के बाद कीनिया में सुरक्षा के कदम तेज किए जा रहे हैं। ये थी अब तक की खबरें, थोड़ी देर में शोक समाचार। समाचार सुनिए। रॉयल रोड बोनाकय में 74 साल की 74 ईयर्स ओल्ड श्रीमती राजमणि मदन, पैदाशी नाम चकोरी, जो सविता नाम से ज़्यादा जानी जाती थी और पहले स्वास्थ्य मंत्रालय में फैमिली प्लानिंग विभाग की पूर्व कर्मचारी थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के तीन बजे इनके बेटे श्री विशाल मदन के मकान रॉयल रोड बोनाकय से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बोनाकय की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे या 3 PM। नागिया रोड रोजबेल में 79 साल के 79 ईयर्स ओल्ड श्री हरिप्रसाद जगरू, जो हरी नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के दो बजे इनकी पत्नी श्रीमती जगरानी जगरू के मकान नागिया रोड रोजबेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मागजानी रोजबेल की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे आर 2 PM। यूनियन वेल थ्वाबुचिक में 77 साल की 77 ईयर्स ओल्ड श्रीमती कलावती सुंदर, जो सीला नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के दो बजे इनके मकान यूनियन वेल थ्वाबुचिक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थ्वाबुचिक की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे आर 2 PM। शोक में डूबे इन परिवारों के साथ हमारी गहरी संवेदना है। News on MBC Play and MBC.MU.
1: ये है रेडियो मॉरिशस।

चलिए श्रोताओं, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये रेडियो मॉरिशस मीडियम वेव 819 किलोहर्ट्ज पे हमारा प्रसारण हो रहा है। तो चलिए, भक्ति धारा कार्यक्रम इस समय से लेकर दिन के 11 बजे तक आपके मनपसंद रेडियो चैनल पे। तो चलिए श्रोताओं, आज है गुरुवार और गुरुवार का दिन आपको पता है कि इस समय जो है चंद भक्ति गीत आपकी सेवा में हम प्रसारित करते हैं। और आज का दिन जो है बहुत ही पावन दिन है, जहाँ पर हम एक और भगवान विष्णु जी को पूछते हैं, उनके अनेकों स्वरूप को पूछते हैं, और दूसरी ओर हम भगवान साईं बाबा को भी हम पूछते हैं। तो चलिए, चंद प्यारे प्यारे भक्ति गान जो है आपके नाम हम करने वाले हैं इस कार्यक्रम के अंतर्गत। वैसे श्रोताओं, प्रभु को पाने के लिए बड़ी बड़ी चीज़ों की नहीं, सच्चे मन और निर्मल भाव की आवश्यकता होती है। तो आइए, इसी शुभ विचार के साथ कार्यक्रम की शुरुआत गणेश माला से हम करेंगे।

चलिए श्रोताओं, भक्ति धारा कार्यक्रम को हम जारी रख रहे हैं। वैसे कुछ खराबियां पाई जा रही है, तो इसके लिए हमें वाकई खेद है। तो चलिए कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। आज है गुरुवार और आपको पता है कि गुरुवार का दिन समर्पित है भगवान विष्णु को। और आज का दिन जो है बहुत सारे लोग जो है विष्णु चालीसा का पाठ करते हैं। वैसे विष्णु चालीसा है क्या? जैसे कि हनुमान जी की 40 चौपाइयों को हम हनुमान चालीसा कहते हैं, वैसे ही भगवान विष्णु की स्तुति में लिखी 40 चौपाइयों को विष्णु चालीसा कहते हैं। और आपको पता ही है कि भगवान विष्णु जो है वो पालनहार है और पूरी सृष्टि की रक्षा करते हैं। तो मन को शांति मिलती है जब हम विष्णु चालीसा का पाठ करते हैं, साथ में घर में सुख शांति, जहाँ घर में सुख शांति सुख समृद्धि बनी रहती है जब हम विष्णु चालीसा का पाठ करते हैं। और हमें भय की मुक्ति भी मिलती है जब हम इसका पाठ करते हैं। तो चलिए आपके लिए हम लाए हैं विष्णु चालीसा रेडियो मॉरिशस पे।

श्रोता, वो आपको पता है कि भगवान विष्णु को जब हम पूजते हैं, वो हिंदू धर्म के तीन प्रमुख देवताओं में से एक है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश में से एक देवता है भगवान विष्णु। उन्हें सृष्टि का पालन करता भी हम मानते हैं। उनका निवास शिव सागर में है और वे शेषनाग पर विश्राम करते हैं। माता लक्ष्मी उनकी पत्नी है। जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है तो विष्णु जी राम कृष्ण जैसे अवतार लेते हैं और विष्णु चालीसा उनके इन्हीं अवतारों और महिमा का वर्णन करता है। तो चलिए श्रोताओं, विष्णु चालीसा के बाद कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। और आपको पता है आज का दिन जो है हम साईं बाबा को भी पूजते हैं। बहुत भक्तगण जो है साईं बाबा को पूजते हैं और उनके सिद्धांतों को जो है उसको फॉलो करते हैं, आगे बढ़ते हैं ज़िंदगी में। सबका मालिक एक है, बस इसी धारणा के साथ उन्हीं के दिए हुए सीख को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। तो आई चंद भजन जो है भगवान साईं बाबा पर आधारित आपके लिए। और ये पहला जो भक्ति गान है, पहला जो भजन है, अनूप चलुता के स्वर में हम सुन पाएंगे।

श्रोताओं, भक्ति धारा इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। चंद भक्ति गीत आपकी सेवा में हम प्रसारित कर रहे हैं। 10:45 हो चुके हैं। वैसे ये अगला भजन जो है बहुत ही प्यारा सा भजन है। वैसे जब हम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय इस मंत्र का जाप करते हैं तो इसका अर्थ ये है कि हे ईश्वर, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो। झूठ धोखा दिखावे की जिंदगी से निकाल कर सच्चाई के रास्ते पर ले जाओ। मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। अज्ञान नफरत डर जैसे अंधेरे से निकाल कर ज्ञान और समझ के उजाले की ओर ले जाओ। तो चलिए इसी शुभ संदेश को लेकर हम ये बहुत ही प्यारा सा भजन जो है आपके नाम कर रही है।

चलिए श्रोताओं, भक्ति धारा इस कार्यक्रम का समापन हम करने वाले हैं। जब हम साईं बाबा की बात करते हैं तो बात होती है श्रद्धा की, सबूरी की। तो इसी बातों को, जहाँ इन्हीं बातों को लेकर हमें आगे बढ़ते ही रहना है। तो चलिए श्रोताओं, सुबह 6 बजे से इस समय तक आप लोगों का साथ रहा, बहुत बहुत धन्यवाद साथ निभाने के लिए। और जिस तरह से मैंने कार्यक्रम को पसंद किया, और आशा करती हूँ कि आप लोगों ने भी

हमारा साथ बहुत ही प्यार के साथ दिया। तो चलिए श्रोताओं, कुछ ही घड़ी में 11 बजने वाले हैं और आप समाचार सुनेंगे, समाचारों के उस पार उर्दू कार्यक्रम सायदा के साथ। तो वापस हम मिल रहे हैं कल भक्ति धारा कार्यक्रम को लेकर। तो चलिए आप सभी को हम कहेंगे शुभ दिन।

0: सभी को नमस्कार। अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार अदिति से। अदिति, आपको नमस्कार।
1: नमस्कार पूनम, श्रोताओं को भी नमस्कार। मॉरिशस में पानी की कमी चिंता का विषय बनी हुई है। फिर भी किसानों को पाबंदियों और जलापूर्ति की दिक्कतों के बावजूद अपने खेतों की सिंचाई जारी रखनी पड़ रही है। उनकी मदद के लिए सरकार की तरफ से विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। सौर पैनल्स बिठाने के लिए खेती से जुड़े सहकारिता संगठनों को 2 मिलियन रुपए तक की नई आर्थिक मदद उपलब्ध कराई जा रही है। इस सुविधा से लाभ उठाने की इच्छा रखने वाले कोऑपरेटिव संगठनों के पास आवेदन जमा करने के लिए अगले 11 नवंबर तक का समय है। शिक्षा के क्षेत्र में मॉरिशस और फ्रांस के बीच एक नई साझेदारी कायम हुई है। मकसद है स्कूलों में फ्रेंच भाषा के पठन पाठन को बढ़ावा देना। शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार पाकू प्लस नामक इस परियोजना के माध्यम से छात्र फ्रेंच भाषा के इस्तेमाल से विज्ञान को एक नए तरीके से समझ पाएंगे। साथ ही पढ़ाई के लिए नए साधन अपनाए जाएंगे। ये पायलट परियोजना स्तर पर देश के 12 प्राथमिक और 12 माध्यमिक स्कूलों में चलाई जाएगी। कांदोस के विक्टोरिया अस्पताल में एक नई ट्रॉमा एंड इमरजेंसी यूनिट की स्थापना की गई है। उद्घाटन स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज द्वारा किया गया। इस नई इकाई का मकसद है तत्काल चिकित्सा सहायता की आवश्यकता वाले मरीजों को दी जाने वाली देखभाल बेहतर करना। उद्घाटन के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने मेडिकल सेवाओं को आधुनिक बनाने और लोगों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने की अहमियत पर बल दिया। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में भारतीय सिनेमा आज शोक की लहर चली है। मशहूर अभिनेता नाना पाटेकर का 75 साल की उम्र में आज सुबह निधन हो गया। जानकारियों के मुताबिक उन्हें गोवा स्थित उनके आवास पर बेहोश पाया गया था। अस्पताल पहुंचाए जाने पर इस बात की पुष्टि हुई कि दिल का दौरा पड़ने से उन

0: की मौत हुई है। उधर रूसी ताकतों द्वारा किए गए मिसाइल हमले में उत्तरी यूक्रेन के एक आवासीय इलाके में 19 लोगों की मौत हुई है, जिनमें 5 बच्चे शामिल बताए जाते हैं। यूक्रेनियन राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने इसे मानवता के खिलाफ अपराध कहा। ये थी अब तक की खबरें, थोड़ी देर में शोक समाचार। नंबर 24, लॉरिकोल स्ट्रीट वालेपिटो पोर्ट लुइस में। नंबर 24, लॉरिकोल स्ट्रीट वालेपिटो पोर्ट लुइस में 76 साल के 76 years old जनाब मोहम्मद अली मुती, जनाब मोहम्मद अली मुती जो बाई अली नाम से ज़रा जाने जाते थे, इंतकाल कर गए हैं। इनका जनाजा आज दिन के डेढ़ बजे इनकी बीवी मिसेस बीबी रशीदा मुती के मकान नंबर 24 लॉरिकोल स्ट्रीट वालेपिटो पोर्ट लुइस से उठाकर पहले नमाजी जनाजा के लिए वालेपिटो की अबू बकर सिद्दीकी मस्जिद ले जाया जाएगा, फिर दफनाने के लिए रिश्ते का कब्रस्तान। फ्यूनरल टुडे एट 1:30 PM। रॉयल रोड बोनाकर में, रॉयल रोड बोनाकर में 74 साल की 76 ईयर्स ओल्ड श्रीमती राजमणि मदन, श्रीमती राजमणि मदन पैदाशी नाम चकोरी जो सविता नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई हैं। वे पहले स्वास्थ्य मंत्रालय में फैमिली प्लानिंग विभाग की पूर्व कर्मचारी थी। इनकी अर्थी आज दिन के तीन बजे इनके बेटे श्री विशाल मदन के मकान रॉयल रोड बोनाकर से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बोनाकर की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टू डे 3 PM। शोक में डूबे इन परिवारों के साथ हमारी गहरी संवेदना है।
1: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
2: शम्मे फरोज़ा।

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور بڑا رحم والا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پانی کا ہر قطرہ ہے رحمت کا ایک نشان. पानी का हर ख़तरा है रहमत का एक निशान. इसमें छुपा हुआ है मेरे रब का फैज़ो शान. ये आबे ज़िंदगी है इसे बेकद्र ना करो. रब की अता है पानी इसे ज़ाया ना करो. मौज़ सामीन, उम्मीद है आप बफ़ज़्ल खुदा खैर आफियत से होंगे. इस वक्त आप समात फरमा रहे हैं हमारी उर्दू नशरियात शम्मे फरोज़ा रेडियो मॉर्शस के ज़रिए सैयदा सुबाई के साथ. आज की इस उर्दू मजलिस में आप समात फरमाएंगे तिलावत क़ुरान पाक, हम्द और नातो सलाम. ताखिर न करते हुए आइए आगाज़ करते हैं कलाम इलाही से. आऊज़ु बिल्लाही मिनश्शैतानिर्रजीम.
1: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम.

सदकल्लाहु लज़ीम। अभी आप समाअत फरमा रहे थे सूरह अर्राद की इतलावत। क़ुरान मजीद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वो मुक़द्दस कलाम है जो दिलों का नूर, रूहों का सुकून, बीमार दिलों के लिए शिफा, परेशान हाल इंसानों के लिए तसल्ली और भटके हुए लोगों के लिए हिदायत का सरचश्मा है। कुरान पाक वो अजीम किताब है जिसकी तिलावत से दिलों को इत्मीनान नसीब होता है, जिसकी आयात में रहमत है, जिसके अहकामात में हिकमत है और जिसकी तालीमात में दुनिया व आखिरत की कामयाबी का रास्ता है। कुरान

नूर भी है, हिदायत भी है, शिफा भी है और रहमत भी है। ऐ पाक परवरदिगार, हमें हमेशा तिलावते कुरान पाक की तौफीक अता फरमा। आमीन।

वो चाहे तो सहरा में भी दरिया बहा दे, वो चाहे तो बंजर ज़मीन को सजा दे, उसी के करम से बरसते हैं बादल, वो चाहे तो हर सिमत रहमत लुटा दे। मौज़े सामेईन, आज हम सब अपने रब की बारगाह में आजिज़ी के साथ हाथ उठाते हैं। या अल्लाह, तू ही बादलों का मालिक है, तू ही बारिश का मालिक है, तू ही ज़मीनों आसमान का परवरदिगार है। या रब्बुल आलमीन, हमारे प्यारे मुल्क मॉरिशस पर अपनी रहमत की निगाह फरमा, आमीन। मौज़े सामईन, इस वक्त स्टूडियो की घड़ी में 11:34, जी हाँ 11:34 हो चुके हैं। अक्टूबर की 8 तारीख है और माह रबीउस्सानी की आज 26 तारीख है। आप अपने पैगामात हमें व्हाट्सएप या नॉर्मल मैसेजेस के ज़रिए इस नंबर पर भेज सकते हैं, 5251-7005, जी हाँ 5251-7005 के ज़रिए आप अपने पैगामात हमें भेज सकते हैं। आइए इसी के साथ समाप्त फरमाइए चंद ऐलानात। जुम्मा 9 अक्टूबर सुबह 10 बजे जामिया अयूबिया रिजविया पोर्ट लुइस निकोले रोड में शैला आपा की सरपरस्ती में उर्स 11वीं शरीफ का, महफिल 11वीं शरीफ का अहतमाम किया जा रहा है। बाद नमाज ज़ोहर लंगर भी तकसीम किया जाएगा। तमाम ख़वातीन को शिरकत की दावत है। और इसके अलावा सनीचर 10 अक्टूबर शाम के 4 बजे उर्स शरीफ हज़रत सैयदना गौसुल आज़म शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का एहतमाम किया जा रहा है आलिमिया कॉलेज हाईलैंड्स फिनिक्स में।

मौजूद सामीन, ज़मीनो आसमान का वाहिद मालिक अल्लाह है, हवाओं का रुख बदलने वाला अल्लाह है, समंदरों में मौजें उठाने वाला अल्लाह है, बादलों को चलाने वाला भी अल्लाह है, और आसमान से बारिश बरसाने वाला भी वो रब्बे करीम है। इस कायनात का ज़र्रा ज़र्रा उसी के हुक्म का पाबंद है, ना कोई पत्ता उसके इल्म के बग़ैर गिरता है, ना कोई बादल उसकी कुदरत से बाहर है। वो रब जो वसी व अरीस समंदरों का मालिक है, जो हवाओं को चलाता है, जो बादलों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, क्या वो हमारे प्यारे वतन मॉरिशस पर अपनी रहमत की बारिश नहीं बरसा सकता? क्यों नहीं? बेशक वो हर चीज़ पर कादिर है, उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। वो चाहे तो खुश्क ज़मीनों को सरसब्ज कर दे, सूखे हुए चश्मों को जारी कर दे, खाली आबी ज़खायर को भर दे, और प्यासी ज़मीन को अपनी रहमत से सैराब कर दे। बस उसके हुक्म कुन की इंदेर है। या रब्बुल आलमीन, हमारे प्यारे मुल्क मॉरिशस पर रहमत की बारिश नाज़िल फरमा।

बरकत का जरिया हो, आमीन या रब्बुल आलमीन। आप तमाम सामईन ने हमारा साथ दिया, हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं। अल्लाह ने चाहा तो फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में सैयदा सुबाई को भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।

0: శ్రోతలు, ఇంతటితో నేటి ప్రసారం పూర్తి అవుతున్నది. మమ్మల్ని వినడానికి అనేక కృతజ్ఞతలు సమర్పిస్తున్నాం. మీ చెల్లమ్మ గిరిశాలినికి సెలవు ఇవ్వండి. ధన్యవాదాలు, నమస్కారాలు.
1: आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से एक विज्ञप्ति सुनिए. ज़रूरी मरम्मत कार्यों की वजह से ब्लू बे के निवासियों को सूचित किया जाता है. खासतौर इन गलियों के मोसलमा ब्लू बे, एवेन्यू डिजेग्रेट, एवेन्यू मॉलें, एवेन्यू पायोंक और आसपास के निवासियों को सूचित किया जाता है कि कर शुक्रवार 9 अक्टूबर 2026 को सुबह के 8:30 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी. तो इस असुविधा के लिए सीबी अपने ग्राहकों से क्षमा प्रार्थी हैं. बिना पूर्वा सूचना लिए बिजली की सप्लाई फिर शुरू हो जाएगी. तो अभी आप सुन रहे थे विज्ञप्ति सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से. ये है रेडियो मॉरिशस.
2: 819 kilowatts. This is Radio Mauritius.

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलो हर्ट्ज पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: मौजिला गुजरात नो रंग रंगारंग एमबीसी रेडियो पर गुजराती गीतों नो प्रोग्राम रंगारंग रंगारंग।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: आपकी पसंद। गुरुवार 8 अक्टूबर, घड़ी मिला लीजिए, दोपहर के 2:45 हो रहे हैं। रेडियो मॉरिशस पर आपकी पसंद इस प्रोग्राम में आप सभी श्रोताओं का, आप सभी लिसनर्स का वेलकम हम करते हैं, आप सभी का स्वागत हम करते हैं। सुमिता की ओर से प्यार भरा नमस्कार स्वीकार करें। कैसे हैं आप सभी? गुरुवार का दिन है, उम्मीद करते हैं ये दिन बहुत अच्छा जा रहा होगा आप सभी के लिए। और चलिए जुड़ जाइए हमारे साथ आप सबके पसंदीदा कार्यक्रम आपकी पसंद में, जो चलेगा अभी से लेकर 4 बजे तक। ऑब्वियसली फरमाइशी गीतों का प्रोग्राम है, जहां पर आप अपनी फरमाइशें हम तक पहुंचा सकते हैं 4028085 पर। और वहीं पर आप 5251700005 पर भी हमें मैसेज कर सकते हैं। और कोई ख़ास मौका है, किसी का जन्मदिन है, किसी की शादी की सालगिरह है, कोई ख़ास मौका है जिसे आप अपनों के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनके लिए गाना डेडिकेट करना चाहते हैं, तो इस प्रोग्राम में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अभी के लिए इस खूबसूरत गाने के साथ आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं।

0: की पसंद।
1: यकीनन प्यार मोहब्बत अपनेपन से इन्हीं सब से तो दुनिया चलती है, ये सब है तो दुनिया है। कहीं ना कहीं प्यार और अपनापन जो है लोगों को एक साथ जोड़ता है, एक दूसरे के बीच में भाईचारे और सम्मान की भावना को लाता है। और जिनसे हम प्यार करते हैं बदले में वो भी हमसे प्यार करते हैं, तो मानो ज़िंदगी की जो अहमियत है वो और भी बढ़ जाती है ना। चलिए बड़े ही प्यार से आप इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रोग्राम में साथ दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और बढ़ेंगे हम इस अगले तराने की ओर। ये जो गाना है यहाँ पर हम चलाने वाले हैं, आप सभी के नाम दिल है तुम्हारा इस फिल्म से लिया गया। और ये गाना खासकर सीता देवी रामतोहल जी की ओर से इस गाने की फरमाइश आई है। इस गाने को वो मांग रही है अपनी बहन सुवीरा को याद करते हुए, अपनी बहन सुवीरा के नाम इस गाने को वो डेडिकेट कर रही है। यही गाना उनकी ओर से जाता है पूरे रामतोहल परिवार के नाम जो इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और चलिए यही गाने के इसी गाने के साथ जो है यहाँ पर हम बढ़ेंगे 3 बजे के समाचार की ओर। और समाचारों के उस पार फरमाइशी गीतों का ये जो प्रोग्राम है ये जारी रहेगा, तो आप हमारा साथ यूं ही देते रहे रेडियो मॉरिशस पर आपकी पसंद इस प्रोग्राम में।
0: आपकी पसंद

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: गुरुवार 8 अक्टूबर, घड़ी मिला लीजिए सुबह के 3 बज रहे हैं, समय हुआ है समाचार का। आइए बढ़ते हैं समाचार की ओर।
2: सुनते देश विदेश की खबरें आपसे गीता, नमस्कार आपको।
3: नमस्कार नीतूषा, सभी को हमारा नमस्कार। लाकाबियन फिनिक्स के लोग कल रात सड़कों पर उतर आए। वजह ये थी कि उन्हें कई दिनों से पानी नहीं मिल रहा है। वे कम से कम 1 से 2 घंटे पानी देने की मांग कर रहे हैं ताकि उनका घरेलू वाटर टैंक भर सके। अंतरिम प्रधानमंत्री आगिया नावा मागी ने जनता से समझबूझ और धैर्य रखने की मांग की है। ऊर्जा मंत्री पत्रिका सियावादेन ने बताया कि ये समस्या मऊफाक्वा जलाशय के सूखने के कारण पैदा हुई है। सेंट्रल वाटर अथॉरिटी जनता को राहत देने के लिए रात दिन काम कर रही है। हमारे जलाशयों में, खासकर मऊफाक्वा में, पानी के स्तर के चिंताजनक स्थिति से कम होने के कारण CWA पानी की आपूर्ति बरकरार रखने के लिए अतिरिक्त कदम उठा रही है। आज सुबह ऊर्जा मंत्री पत्रिका सियावादेन ने लामागी ट्रीटमेंट प्लांट का दौरा किया ताकि स्थिति का जायजा लिया जा सके और समाधान ढूंढे जा सके। 156 नर्सिंग अफसरों को आज MGI में आयोजित एक समारोह के दौरान उनकी डिग्रियां प्रदान की गई। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री ने ऐलान किया कि बहुत जल्द हमारे अस्पतालों में 200 नर्सों की भर्ती की जाएगी। जाने माने अभिनेता नाना पाटेकर का 75 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट के बाद निधन हो गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि नाना पाटेकर जैसे विशिष्ट व्यक्तित्व और अनोखा प्रभाव बहुत कम अभिनेताओं में देखने को मिलता है। नाना पाटेकर का हिंदी और मराठी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ा योगदान है। महाराष्ट्र सरकार ने ये घोषणा की है कि अभिनेता का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। दुनिया भर के मौसम विशेषज्ञ एल नीनो के बारे में चेतावनी दे रहे हैं और इसके ऐसी स्थिति में पहुंचने का दावा कर रहे हैं जो पहले कभी नहीं देखी गई। विशेषज्ञों का कहना है कि प्रशांत महासागर में भारी मात्रा में जमा हुई गर्मी के बाहर निकलने के कारण आने वाले महीनों में पृथ्वी का एक बड़ा हिस्सा असामान्य रूप से गर्म रहेगा। एल नीनो सर्दियों में भी अपनी पूरी ताकत के साथ बना रहेगा और अमेरिका को छोड़कर हर जगह पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार।
4: Your news on MBC Play and MBC.mu.
0: 819 kilohertz, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: गुरुवार 8 अक्टूबर, घड़ी मिला लीजिए 3:03, यहाँ पर हो रहे हैं। आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से एक विज्ञप्ति सुन लीजिए। रेसिडेंस लाखिया, यहाँ पर रहने वाले ग्राहकों को सूचित किया जाता है। यहाँ के इन इलाकों और गलियों में रहने वाले ग्राहक रोबेयर स्कॉट, क्राउन लैंड रोबेयर स्कॉट, चिरोद्रिक, CWA लाख्य, यहाँ पर और आसपास रहने वाले ग्राहकों को सूचित किया जाता है कि यहाँ पर जो है शनिवार 10 अक्टूबर को सुबह के साढ़े आठ बजे से दोपहर के 3 बजे के बीच, शनिवार 10 अक्टूबर को सुबह के 8:30 बजे से दोपहर के 3 बजे के बीच यहाँ पर ज़रूरी मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी और कार्य संपन्न होते ही बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई फिर से शुरू कर दी जाएगी। इन सभी असुविधाओं के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है। तो ये थी एक ज़रूरी विज्ञप्ति CEB की ओर से।
0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
5: आपकी पसंद।
1: चलिए पसंदीदा गीतों के इस प्रोग्राम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत हम करते हैं और जहाँ कहीं से भी आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं आप सभी के लिए बहुत बहुत आप सभी के साथ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए यहाँ पर प्रोग्राम को आगे ले जाते हैं। हरियाली और रास्ता फिल्म का ये जो तराना, इसका टाइटल ट्रैक अभी हम चलाने वाले हैं, ये खास कर जाता है।

है गीता जी, आपके नाम आपकी ओर से आपके पति रोहित के लिए। आपके बेटे हैं, तीन बेटे तीन बहुएं साथ में हैं, आदित्य, आरव, तनिष, जानवी, सभी परिवार के नाम आपकी ओर से। यही गाना हमारे MBC रेडियो की पूरी टीम के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद।

की पसंद। यकीनन जीवन के दो पहलू हैं, हरियाली और रास्ता, और ज़िंदगी के ये राहें हमें कभी कभार ऐसे अनजान मोड़ पर ले आती है जहाँ पर हम समझ नहीं पाते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है ना कि ज़िंदगी के इस राहों पर हमें चलते रहना चाहिए, क्या पता कौन सा अनुभव हमें कहाँ और कितनी दूर ले जाए। चलिए, अभी के लिए 3:11 हो रहे हैं और आज जो है हिंदी सिनेमा के एक बेहतरीन बहुमुखी अभिनेता नाना पाटेकर जी अब हमारे बीच नहीं रहे, और उन्होंने एक्टिंग के ज़रिए, एक्टिंग तो नहीं कहेंगे हम, दमदार एक्टिंग के ज़रिए, अपने अलग अंदाज के ज़रिए अपने दर्शकों के दिलों में एक खास जगह बनाई है। उनका असली नाम विश्वनाथ पाटेकर है, और नाना पाटेकर जी की बात करें तो अपने दमदार डायलॉग डिलीवरी, अपनी गहरी आवाज़ और रियलिस्टिक एक्टिंग के लिए बहुत ही जाने जाते हैं। कई नेशनल अवार्ड, कई फिल्मफेयर अवार्ड्स इन्होंने जीता है। और व्यक्तिगत जीवन की इनकी बात करें तो बहुत सादगी में रहना ये पसंद करते हैं। सामाजिक कार्यों में अपना योगदान इन्होंने हमेशा से ही दिया है। और फिल्मों की बात करें तो क्रांतिवीर, परिंदा, अग्निसाक्षी अब तक 56 जैसी फिल्मों में दमदार एक्टिंग से इन्होंने अपने चाहने वालों के दिलों में एक ऐसी जगह बनाई है कि ये जगह हमेशा रहेगी। और चलिए, गुलाम-ए-मुस्तफा फिल्म के इस गाने के ज़रिए हम एक श्रद्धांजलि देते हैं नाना पाटेकर जी को, जो आज हमारे बीच नहीं हैं। ऐसे नाना पाटेकर जी पर कुछ खास गाने पिक्चराइज नहीं है, एक्टिंग के क्षेत्र की बात करें तो काफ़ी फिल्मों में उन्होंने एक्टिंग की है, लेकिन गुलाम-ए-मुस्तफा इस फिल्म में एक गाना है जो नाना पाटेकर और रवीना टंडन पर पिक्चराइज हुआ था। तो ये गाना नाना पाटेकर जी के सभी फैंस के नाम, सभी चाहने वालों के ओर से नाना पाटेकर जी को एक श्रद्धांजलि।

0: की पसंद।
1: जी हैं, बड़ा ही खूबसूरत सा गीत अभी हम सुन रहे थे यहाँ पर, जो पिक्चराइज्ड हुआ था नाना पाटेकर जी और साथ में थी रवीना टंडन। चलिए अभी के लिए प्रोग्राम को आगे ले जाते हैं। 3:18 यहाँ पर हो रहे हैं और फरमाइशी गीतों के इस प्रोग्राम में सिलसिला फिल्म के इस गाने को हम जोड़ते हैं, देखा एक ख्वाब। गाना जाता है यहाँ पर मौदालबिया के अनीता जी आपके नाम, करुणा है, अमृता है, इंदिरा है, साथ में है कविता। सभी दोस्तों के लिए, सभी परिवार के लिए जो इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमेशा हमारे रेडियो प्रोग्रामों में जुड़ते हैं। चलिए यहाँ पर विश्वानी दुमन जी वाकवा से साथ दे रही है और गाना जाएगा आपकी बहनों के लिए। इंदिरा है, शारदा है, नीला है, प्रतिभा है, शोभा है, गीता जी है और सभी दुमन परिवार के नाम जो बड़े ही प्यार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रोग्राम का मज़ा उठा रहे हैं। और यहाँ पर ज्योति जी शातो बनारस से हमारा साथ दे रही हैं। गाना जाएगा सभी मधव फैमिली के नाम, साथ में यही गाना आशनी, रेखा और सुरेखा के लिए भी।

चलिए 3:25 हो चुके हैं और खूबसूरत गानों का सिलसिला यहाँ पर जारी है और इस अगले गाने के साथ हम इस गाने को डेडिकेट करेंगे वाकवा की उषा जी, आपके नाम, आपकी ओर से गाना जाता है आपकी बहनों के लिए। शोभा है, मेधा है, कामिनी है, सभी शिवधारी परिवार जो इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस समय बंधु परिवार ट्रियोले से हमारा साथ दे रहा है। आपने जो गाना मांगा वो हमने ऑलरेडी चला दिया है, तो इस गाने को आप सभी के नाम हम डेडिकेट करते हैं।

0: keep us in.
1: चलिए यहाँ पर देखते ही देखते दोपहर के 3:30 बज चुके हैं। आपकी पसंद इस प्रोग्राम में आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी सुनने वाले आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं, आपके परिवार के सदस्य आपका जन्मदिन मना रहे हैं, आप सभी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएँ हमारी ओर से, हमारी पूरी टीम की ओर से। यहाँ पर जन्मदिन की शुभकामनाएँ मानिता जी की ओर से आई है, आपकी प्यारी मौसी राजनीति, उनका जन्मदिन है, लिस्पेरॉन्स त्रिबुशे रहती है, और आपको ढेर सारा प्यार, ढेर सारी शुभकामनाएं राजनीति जी। आपकी नीसिस की ओर से सचिता है, मानिता है, साथ में बबीता है, सचिता है, मानिता है, साथ में राहुल है, यादव है, कीशा है, और यहाँ पर पूरे परिवार की ओर से राजनीति जी जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं आपको। और यहाँ पर आज ही जन्मदिन मना रहे हैं बेटा योवेद दंसु, जो 29 साल के हो रहे हैं, मोचिदा रहते हैं। योवेद दंसु, आपको जन्मदिन के हार्दिक शुभकामनाएं, मामा प्रिया, पापा सुदेश, भाई रितेश, चाचा सत्यम और सभी दंसु परिवार की ओर से। और यहाँ पर दादी, नानी, सभी दंसु परिवार, सभी जीवन परिवार और सभी रोहिबारी परिवार की ओर से शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद आपके नाम। प्रीति मुत्तुवीरन भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है। प्रीति, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं सभी की ओर से, खासकर सभी मुत्तुवीरन परिवार की ओर से। और जितने भी सुनने वाले आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, जन्मदिन मना रहे हैं, ये खूबसूरत सा तराना आप सभी के नाम।

0: की पसंद।
1: जी हाँ, बड़ा ही खूबसूरत सा तराना आई मिलन की बेला फिल्म से लिया गया, तुमको हमारी उम्र लग जाए। और चलिए, यहाँ पर खूबसूरत गानों का ये जो सिलसिला है इसे हम आगे ले जाते हैं। इस समय बड़े ही प्यार से हमारे साथ शिमला जी बेलरोज से हमारा साथ दे रही है, और कयामत से कयामत तक इस फिल्म का तराना उन्होंने मांग की है। गाना खासकर इनकी बहनों के लिए, रूमा है, आरती है, इंदिरा है, भाई है राकेश, धीरे धीरज, साथ में बेटा है निमलेश, बेटी है कीर्तिना, सभी सुनने वालों के नाम, ये तराना उनकी ओर से। ज्योति जी यूनियन पार्क से साथ दे रही है, और यहाँ पर जन्मदिन है आदर्श नमह का, और आदर्श जी आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मामा प्रीति, भाई मयूर, विवेक, साथ में बहनें हैं वेदना, विमला, केनिता, और सभी परिवार की ओर से आदर्श आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे आपको। और इसी समय यहाँ पूरा परिवार हमारे साथ जुड़ा हुआ है यूनियन पार्क से ज्योति जी, तो ये गाना आप लोगों के लिए भी हम यहाँ पर करेंगे, और बस ऐसे ही आपका प्यार भरा साथ हमें मिलता रहे। कमला दीनू जी मौताबा से हमारा साथ दे रही हैं, खासकर गाना जाता है रियांश बॉयरप के नाम, साथ में यहाँ पर गाना जाता है पापा सतीश बॉयरप के लिए, और मामा है स्वावेना, दादी है सीता, दादा है सत्यानंद, सभी भैरव परिवार के नाम अगला गाना, और दादी कमला की ओर से भी ये तराना सभी परिवार के लिए।

0: आपकी पसंद।
1: चलिए उम्मीद करते हैं इन गानों का मज़ा आप भी उठा रहे होंगे यहाँ पर और हमारा साथ दे रहे हैं। स्वस्ति जी कटरबोन से हमारे साथ जुड़ी हुई है, कह रही है कि आज उनके पिता की जन्मतिथि है, आज अगर वो होते तो एक अलग बात होती, और ऐसे में वो अपने पिता नरेंद्र सिंह बहादुर को याद करते हुए हिल स्टेशन फिल्म के इस अगले गाने की फरमाइश उन्होंने की है। खासकर नरेंद्र जी उनकी मतलब कि स्वस्ति जी की माता की ओर से, सभी परिवार की ओर से, खासकर सभी बहादुर परिवारों की ओर से नरेंद्र जी को याद करते हुए ये तराना चल पड़ा।

0: चौधरी छोड़ो उसे, कहीं नहीं भागेगी। इसने कितने पैसे दिए थे मुझे मारने के लिए?
1: 1 करोड़।
0: मैं 2 करोड़ देता हूं, मारो इसे। कहां से पैसे देगा ये? है क्या इसके पास? कल तक मेरे बाप के फेंके हुए टुकड़ों पर पल रहा था, आज मेरी मेहरबानी पर जी रहा है। कहां से लाएगा ये पैसे? मारो, मैं 3 करोड़ देता हूं, मारो इसे।
2: गुरुवार 8 अक्टूबर को एमबीसी 16 पर शाम के 7 बजे हिंदी फीचर फिल्म हम दोनों, नाना पाटेकर, ऋषि कपूर और पूजा भट्ट पर फिल्माई गई हिंदी फीचर फिल्म हम दोनों।
0: तुम क्या समझते हो, तुम्हारे लिए मेरे दिल में हमदर्दी है? रास्ते में मार देना चाहिए था तुम्हें। मारो इसे, इसके अलग से पैसे दूंगा। मारो, मारो इसे भी।
3: देखिए, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, इतना रुतबा ही शर्म है कि किसी भी घर में अगर रिश्ता बनाना चाहूँ तो कोई ना नहीं कह सकता। बस एक अच्छा खानदान चाहिए, एक शरीफ नेक लड़का चाहिए।
2: गुरुवार 8 अक्टूबर को एमबीसी 4 पर दिन के 3:30 बजे कॉमेडी से भरपूर मूवी वेलकम। इस फिल्म में नाना पाटेकर ने भूमिका निभाई थी उदय शेट्टी की। आप देख पाएंगे ये मूवी एमबीसी 4 पर दिन के 3:30 बजे।
3: आपने बिजनेस के बारे में नहीं बताया, संजना एयरवेज, संजना टेक्सटाइल्स, काफी फैला हुआ बिजनेस है।

कैसे बताऊं मैं तुम्हें मेरे लिए तुम कौन हो, कैसे बताऊं, कैसे बताऊं मैं तुम्हें, तुम धड़कनों का गीत हो, जीवन का तुम संगीत हो, तुम जिंदगी, तुम बंदगी, तुम रोशनी, तुम ताजगी, तुम हर खुशी, तुम प्यार हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो, आंखों में तुम, यादों में तुम, सांसों में तुम, आहों में तुम, नींदों में तुम, ख्वाबों में तुम हो, मेरी हर बात में तुम हो, मेरे दिन रात में तुम, सुबह में तुम, शाम में तुम, सोच में तुम, काम में, मेरे लिए पाना भी तुम, मेरे लिए खोना भी तुम, मेरे लिए हंसना भी तुम, मेरे लिए रोना भी तुम, और जागना सोना भी तुम, जाऊं कहीं देखू कहीं तुम हो वहां, तुम हो मैं, कैसे बताऊं मैं तुम्हें, तुम बिन तो मैं कुछ भी नहीं, कैसे बताऊं मैं।

ये जो तुम्हारा रूप है ये जिंदगी की धूप है, चंदन से तरसा है बदन, बहती है जिसमें एक अगन। ये शोखियां ये मस्तियां तुमको हवाओं से मिली, जुल्फे घटाओं से मिली, होठों में कलियां खिल गई, आंखों को छीले मिल गई, चेहरे में सिमटी चांदनी, आवाज में है रागिनी। शीशे के जैसा अंग है, फूलों के जैसा रंग है, नदियों के जैसी चाल है, क्या हुस्न है क्या हाल है। ये जिस्म की रंगीनियां जैसे हजारों तितलियां, बाहों की ये गोलाइयां, आंचल में ये परछाइयां, ये नगरियां हैं ख्वाब की, कैसे बताओ मैं तुम्हें हालत दिले बेताब की, कैसे बताओ मैं तुम्हें मेरे लिए तुम कौन हो, कैसे बताओ।

कैसे बताऊं मैं तुम्हें, मेरे लिए तुम धर्म हो, मेरे लिए ईमान हो, तुम ही इबादत हो मेरी, तुम ही तो चाहत हो मेरी, तुम ही मेरा अरमान हो। तकता हूं मैं हर पल जिसे, तुम ही तो वो तस्वीर हो, तुम ही मेरी तकदीर हो, तुम ही सितारा हो मेरा, तुम ही नजारा हो मेरा। यू ध्यान में मेरे हो तुम, जैसे मुझे घेरे हो तुम, पूरब में तुम, पश्चिम में तुम, उत्तर में तुम, दक्षिण में तुम, सारे मेरे जीवन में तुम, हर पल में तुम, हर चिन्ह में तुम, मेरे लिए।

रास्ता भी तुम, मेरे लिए मंजिल भी तुम, मेरे लिए सागर भी तुम, मेरे लिए साहिल भी तुम। मैं देखता बस तुमको हूँ, मैं सोचता बस तुमको हूँ, मैं जानता बस तुमको हूँ, मैं मांगता बस तुमको हूँ। तुम ही मेरी पहचान हो, कैसे बताओ मैं तुम्हें। देवी हो तुम मेरे लिए भगवान हो, कैसे बताओ मैं तुम्हें मेरे लिए कौन हो।

0: दिन में अफसाने बयां होंगे, वहां रे हमको सुन लेंगे।
1: देखिए, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शौहरत है, इज्जत है, इतना रुतबा ही शर्म है कि किसी भी घर में अगर रिश्ता बनाना चाहूं तो कोई ना नहीं कह सकता। बस एक अच्छा खानदान चाहिए, एक शरीफ नेक लड़का चाहिए। मैं ऐसा काला कलूटा वो गोरी चिट्टी इसलिए पूछ रहा है ना, शंकर शेट्टी दो शादी किया मेरा बाप।
2: मराठी फिल्म अभिनेता विश्वनाथ पाटेकर, जिन्हें हम नाना पाटेकर के नाम से अधिक जानते हैं, 8 अक्टूबर 2026 को 75 वर्ष की आयु में उनके निधन की खबर ने बॉलीवुड इंडस्ट्री को हिला के रख दिया है। नाना पाटेकर ने अपनी अदाकारी से सभी के दिलों को छुआ है और आज हम उन्हें दिल से श्रद्धांजलि देते हैं। उनकी फिल्मों के माध्यम से वे सदा हमारे दिल में बसे रहेंगे। अंगार, तिरंगात, क्रांतिवीर, अग्नि साक्षी, खामोशी जैसी फिल्मों के मुख्य अभिनेता, आपको हमारा अंतिम नमन।
3: आपकी पसंद।
4: जी हाँ, नाना पाटेकर जी आज हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन एक कलाकार चला जाता है लेकिन उसकी कला हमेशा रहती है। तो चलिए, आज MBC पर काफ़ी प्रोग्राम, काफ़ी जो है फिल्में नाना पाटेकर जी की चलाई जाएंगे, उनको श्रद्धांजलि देते हुए। तो आप ज़रूर उन फिल्मों को देखिए और नाना पाटेकर जी कहीं ना कहीं अपनी दमदार डायलॉग डिलीवरी के लिए, अपने दमदार एक्टिंग के लिए सदा ही याद किए जाएंगे। तो चलिए, इसी के साथ श्रोताओं, आज का जो हमारा आपकी पसंद प्रोग्राम है, इसे हम आगे ले जाते हैं।
3: आपकी पसंद।
4: और बढ़ते हैं इस अगले गाने की ओर। नागिन फिल्म का ये जो तराना है जाएगा माधुरी, परी, वीना, शोभा और रेखा के नाम, जो इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपकी पसंद इस प्रोग्राम में हमारा साथ दे रहे हैं। वसंती जी बोबासन से हमें सुन रही है और कह रही है कि बस किसी भी गाने में उनका नाम जोड़ दीजिए। तो चलिए वसंती जी, ये गाना आपके लिए हम करते हैं। ग्रांगुप से सुनीता जी भी हमेशा हमारे साथ जुड़ी रहती है, तो यही गाना आपके लिए भी हम करते हैं सुनीता जी। साथ ही आफिस जी लावीनिया से हमारा साथ देती है, तो आपको भी हम नहीं भूले हैं आफिस जी।

और चलिए दोस्तों, 3:55 ऑलरेडी हो चुके हैं। इसी गाने के साथ जो है आपकी पसंद ये कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। इतने प्यार से आज भी हमारा आपने साथ दिया आपकी पसंद इस प्रोग्राम के अंतर्गत। जाते जाते ये गाना आप सभी प्यारे श्रोताओं के नाम, और प्रोग्राम तो ख़त्म हो रहा है लेकिन हमारी आपकी मुलाकात जो है वो जारी रहेगी। 4 बजे से शुरुआत होगी भक्ति सागर इस प्रोग्राम की, तो आप हमारे साथ यूँ ही जुड़े रहिए रेडियो मॉरिशस पर। धन्यवाद।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: भक्ति सागर।
2: गुरुवार 8 अक्टूबर, घड़ी मिला लीजिए, सपेर के 4 बज रहे हैं। रेडियो मॉरिशस पर एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत हम करते हैं। आप सबका अभिवादन भक्ति सागर इस कार्यक्रम में। यहाँ से इस कार्यक्रम की शुरुआत होती है। प्रोग्राम जो है चलेगा शाम के 5 बजे तक। भक्ति सागर इस कार्यक्रम के अंतर्गत आपको याद दिला देते हैं कि आप सुन पाएंगे कार्यक्रम पीयूष धारा भी डॉक्टर शांति महावीर जी से। श्रोताओं, कहते हैं कि जीवन में कभी कभार कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जो हमारी परीक्षा के समान होती है, और परीक्षा में हम उत्तीर्ण तभी हो सकते हैं जब हमारा मन शांत होता है, जब हमारा चित्त शांत होता है, जब हमें स्वयं पर विश्वास होता है कि हम बेहतर परिणाम दे पाए। तो जीवन में आने वाली कठिनाइयों से हमें कभी घबराना नहीं चाहिए, कभी डरना नहीं चाहिए, कभी हार नहीं मानना चाहिए। अगर किसी परिस्थिति, किसी कठिन परिस्थिति से अगर हम व्यतीत हो रहे हैं तो उसे परीक्षा के समान समझकर उसे जीना चाहिए, उससे सीखना चाहिए और धैर्य बनाए रखना चाहिए और सब कुछ उस ईश्वर के हाथ में छोड़ देना चाहिए। ये जो समय है किसी के लिए रुकता नहीं है, ठहरता नहीं है। समय जो है बदलता है और समय अवश्य बदलेगा, इस बात का विश्वास हमेशा रखना चाहिए। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ आज के कार्यक्रम का शुभारंभ हम करते हैं।

श्रोताओं, ईश्वर की शरण में हर कोई जाना चाहता है, ईश्वर की कृपा को हर कोई प्राप्त करना चाहता है, ईश्वर के आशीर्वाद को हर कोई प्राप्त करना चाहता है। हर भक्त जो है अपने प्रकार से ईश्वर से प्रार्थना करता है, ईश्वर से कामना करता है, ईश्वर से याचना करता है। कभी कभार हम ईश्वर को बाहर ढूंढते हैं, लेकिन कहते हैं कि ईश्वर कहीं ना कहीं हमारे भीतर ही तो है, बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। और जब मन शांत होता है, भाव हमारे निर्मल होते हैं, हमारे भीतर का अंधकार जब मिट जाता है, तो कहीं ना कहीं ईश्वर की अनुभूति हर एक भक्त करता है।

0: जी हाँ, माता पिता की सेवा करना, उनका ध्यान रखना, उनका सम्मान करना, ये कहीं ना कहीं सभी बच्चों की जिम्मेदारी होती है। माता पिता हमें जन्म देते हैं, हमारा पालन पोषण करते हैं, हमारे अच्छे भविष्य के लिए संघर्ष करते हैं और कहीं ना कहीं पूरा जीवन अपने बच्चों की सफलता के लिए लगा देते हैं। चलिए, सभी माता पिता को हम नमन करते हैं, सभी हमारे बड़े जनों को हम नमन करते हैं। और अभी के लिए देखते ही देखते यहाँ पर 4:15 बज चुके हैं, समय हुआ है पीयूष धारा इस कार्यक्रम का, इसे हम सुनेंगे डॉक्टर शांति महावीर जी से। तो आइए बढ़ते हैं इस कार्यक्रम की ओर।
1: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
2: डॉक्टर शांति महावीर की प्रस्तुति में सुनिए भक्ति एवं आध्यात्मिकता पर आधारित कार्यक्रम पीयूष धारा।

प्रिय श्रोता भाई बहनों, पीयूष धारा कार्यक्रम में मैं आप सबका सादर अभिवादन और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। श्रोताओं, संसार की अनेक भाषाओं में जो उच्च कोटि के महाकाव्य उपलब्ध हैं, उनमें महाकवि वाल्मीकि मुनि द्वारा रचित रामायण का स्थान सर्वोच्च है, क्योंकि अन्य ग्रंथों में महाकाव्य के समस्त गुण मिल तो जाते हैं, परंतु जिस आस्तिकता, धार्मिकता, प्रभु भक्ति, उदात्त और दिव्य भावनाओं का वर्णन रामायण में मिलता है, वह अन्यत्र मिलना संभव नहीं है। महर्षि वाल्मीकि प्रणीत रामायण आर्य सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। इसकी अनुपम कथा को आगे बढ़ाने से पहले आइए हमें गीत सुनते हैं।

श्रोताओं, श्री राम सीता, लक्ष्मण उर्मिला, भरत मांडवी और शत्रुघ्न श्रुतकीर्ति का धर्म विवाह, महर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र के आशीर्वाद और कृपा से सुनिश्चित हो जाता है। महर्षि विश्वामित्र महाराज जनक से कहते हैं कि पुत्रा दशरथ स्येमे रूप यौवन शालीन लोकपाल समाह सर्वे देवतुल्य पराक्रमाः, कि हे विदेह राज जनक जी, आपका कुल धर्म ध्वजा को सदा ऊपर रखता है। महाराज दशरथ का कुल भी महिमावान है, उनके लिए धर्म सर्वोपरि है। रघुवंशी महाराज दशरथ के चारों पुत्र रूप में और यौवन में संपन्न हैं, अद्वितीय हैं। वे लोकपालों के समान हैं, देवों के समान पराक्रमी हैं। इक्ष्वाकु कुल निर्दोष निष्कलंक हैं, नीमी कुल भी पुण्यकर्मी हैं। श्रोताओं, लोकपाल का शाब्दिक अर्थ होता है जनता का रक्षक, जो सभी की रक्षा करे उसे लोकपाल कहते हैं। श्रीराम और उनके भाइयों को महर्षि विश्वामित्र लोकपाल कहकर संबोधित करते हैं, उन्हें देवता कहते हैं, प्रजा के रक्षक कहते हैं, उन्हें न्यायमूर्ति कहते हैं। सबका कल्याण चाहने वाले विदेहराज जनक महर्षि विश्वामित्र से बड़े ही विनम्रता पूर्वक कहते हैं कि हे महर्षि, जिन कुलों के बीच संबंध जोड़ने वाले स्वयं आप और महर्षि वशिष्ठ जैसे महान ऋषि हों, वे कुल तो धन्य होंगे ही। इसीलिए मेरे मन में अपनी पुत्रियों के वैवाहिक जीवन को लेकर कोई भी संदेह नहीं है। मैं वैसा ही करूंगा जैसा कि आपकी इच्छा हो। बस मेरा एक ही निवेदन है, क्या चारों राजकुमारों और राजकुमारियों का विवाह एक ही दिन संपन्न हो सकता है? श्रोताओं, विदेहराज जनक की प्रार्थना सभी लोग खुशी खुशी स्वीकार करते हैं और विवाह की तैयारियों में जुट जाते हैं। कथा को आगे बढ़ाते हुए महाकाव्यकार वाल्मीकि मुनि लिखते हैं कि जनक जी के शील और सुंदर आचरण देख रघुवंशी महाराज दशरथ बहुत ही प्रभावित होते हैं। विदेहराज जनक की प्रशंसा करने के लिए वे अपने आप को रोक नहीं पाते हैं और कहते हैं कि युवाम संख्येय गुणौ भ्रातरौ मिथिलेश्वरौ ऋषयो राज संघाश्च भवत भयाम भी पूजिता, कि हे विदेहराज मिथिला नरेश, आप और आपके अनुज राजा कुशध्वज अपार गुणों के स्वामी हैं। आप दोनों की अतिथि सेवा से मैं बहुत ही प्रभावित हुआ हूँ। अतिथि का सत्कार करना कोई आप दोनों भाइयों से सीखे। अतिथि यज्ञ संपन्न करने में आप दक्ष हैं। आप दोनों ऋषि संतानों से प्रभावित होकर मैं भी अतिथि सेवा भली भांति पूर्ण करके उसका फल चखना चाहता हूँ। श्रोताओं, हमारे शास्त्रों में ऋषियों ने 5 महायज्ञों का विधान बताया है। अतिथि यज्ञ को नृ यज्ञ भी कहा गया है और यह 5 महान यज्ञों में से एक है। शास्त्र कहता है कि अतिथि पूजन से व्यक्ति सुख आयु और यश प्राप्त करता है। मनुजी महाराज कहते हैं कि

आसना वसथौ शय्यामनु व्रज्यामुपासनाम उत्तमेशोत्तमम कुर्याधीने हीनम समे समम। इस श्लोक के माध्यम से अतिथि सेवा की विधियों को रेखांकित करते हुए मनुजी महाराज कहते हैं कि जब आपके घर में अतिथि आए तब उन्हें बैठने के लिए आसन, रहने के लिए स्थान, प्यास बुझाने के लिए जल और भूख मिटाने के लिए भोजन देकर उनका सत्कार करना चाहिए। उत्तम से उत्तम वस्तुएं प्रदान करके अतिथि को तृप्त और संतुष्ट करना चाहिए। अतिथि देवता जब भोजन आदि करके प्रसन्न हो जाए तब उनके चरणों में बैठकर उनसे ज्ञान विज्ञान का उपदेश सुनना चाहिए। अतिथि देवता के संसर्ग में रहकर व्यक्ति धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए अपना मार्ग प्रशस्त करता है। जो अतिथि विदेहराज जनक के यहाँ पधारे हुए थे वे उच्च कोटि के विद्वान, परोपकारी, जितेंद्रिय, सत्यवादी, छल कपट से मुक्त धर्मात्मा थे। विद्या धर्म का प्रचार करना और जन कल्याण ही उनका उद्देश्य था। भारतीय संस्कृति कहती है कि पांच प्रकार की हिंसा से बचने के लिए व्यक्ति को पांच महायज्ञ करने पड़ते हैं। महाराज जनक धर्मज्ञ पुरुष थे, इसीलिए वे अतिथि सेवा करके अपने को दोषों से मुक्त रखते थे। विदेहराज जनक अपनी आत्मा, अपने परिवार और अपनी प्रजा की विद्या की वृद्धि के लिए अतिथि सेवा किया करते थे। उनकी अतिथि सेवा से प्रेरित होकर महाराज दशरथ कहते हैं कि हे विदेहराज, मैं भी श्रद्धापूर्वक अपने पुत्रों के विवाह में उपस्थित अतिथियों, ऋषि मुनियों, उपाध्यायों, आचार्यों, ऋत्विजों और पितरों की सेवा करूंगा। विधिपूर्वक शास्त्रों के अनुकूल उनका सत्कार करूंगा। मिथिला आकर मैं तो धन्य हो गया, मेरा और मेरे कुल का कल्याण हो गया। वाल्मीकि मुनि लिखते हैं कि महाराज जनक के संग का ऐसा अचूक प्रभाव महाराज दशरथ पर पड़ता है कि वे दूसरे दिन से ही अतिथि सत्कार में संलग्न हो जाते हैं। महाकवि लिखते हैं कि स गत्वा निलयम राजा श्राद्धम कृत्वा विधानतः प्रभाते काल्य मुत्थाय चक्रे गोदान मुत्तमम। महाराज दशरथ अगले दिन ही प्रातः उठकर अतिथियों के श्राद्ध और तर्पण में लग जाते हैं, ब्राह्मणों को गौदान करने लग जाते हैं, स्वस्थ दुधारू हृष्ट पुष्ट गौओं का दान करके अतिथियों को तृप्त करने लगते हैं। अपने चारों पुत्रों की मंगल कामना के लिए वे ब्राह्मणों को लाखों गौएं दान करके धर्म पूर्वक उनका सत्कार करते हैं। और श्रोताओं, राजा दशरथ केवल गौओं का ही नहीं बल्कि बछड़े और दूध रखने के लिए कांसे के बर्तन भी दान करते हैं। ब्राह्मणों की सेवा का सर्वश्रेष्ठ साधन गोदान माना गया है। महाभारत महाकाव्य में गोदान की महिमा का बखान करते हुए महर्षि वेद व्यास लिखते हैं कि स्वाहाकार वशत्कारौ गोशु नित्यं प्रतिष्ठितौ गावो यज्ञस्य नित्रयो वै तथा यज्ञस्य तामुखम्। यानी कि गौ दिव्य अमृत धारण करने वाली इस संसार की माता है। सारा संसार गौ के आगे सिर झुकाता है। गौ इतनी महान है कि इसके बिना यज्ञ सफल नहीं होता है। गौ तो यज्ञ का मुख है, स्वर्ग की सीढ़ी है। जो व्यक्ति उन्नति और वृद्धि करना चाहता है उसे गौ का सम्मान अवश्य करना चाहिए और गोदान करना चाहिए।

श्रोता भाई बहनों, पुत्र वत्सल महाराज दशरथ अपने पुत्रों के सुख के लिए अतिथियों को लाखों गौएं दान करके उन्हें प्रसन्न करते हैं। दान देना पुण्य का कार्य है श्रोताओं, इसलिए जब जब अवसर हाथ आए तब तब हमें दान अवश्य करना चाहिए। पीयूष धारा कार्यक्रम का समय समाप्त हो चला श्रोता भाई बहनों, एक गीत आपके लिए छोड़े जाती हूँ, इसे सुनिए, आनंद उठाइए और अंजू और मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद और नमस्ते।

तो श्रोताओं, अभी हम डॉक्टर शांति महावीर जी की प्रस्तुति में सुन रहे थे कार्यक्रम भक्ति सागर, सुन रहे थे कार्यक्रम पीयूष धारा भक्ति सागर इस कार्यक्रम के अंतर्गत। और इस कार्यक्रम के लिए हम डॉक्टर शांति महावीर जी को धन्यवाद देते हैं। भक्ति सागर इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, 4:35 यहाँ पर हो रहे हैं और ईश्वर की आराधना करते हुए चलिए यहाँ पर भगवान साई का ध्यान करते हैं। गुरुवार का दिन है, भगवान साई की पूजा अर्चना होती है, तो हाँ यहाँ पर आइए हम भी साथ मिलकर उनका नाम जपते हैं।

कहते हैं जिस भी बात को हम बार बार कहते रहते हैं, जिस भी विचार के बारे में हम बार बार सोचते रहते हैं, कहीं ना कहीं वो बातें सत्य होने लगती हैं। ऐसे ही जब हम ईश्वर का नाम बार बार जपते हैं तो ईश्वर के नाम में अपने आप में इतनी सकारात्मकता है, इतनी शक्ति है कि हर नकारात्मक विचार, हर नकारात्मक भाव, हर नकारात्मक परिस्थितियाँ अपने आप में सकारात्मकता में बदल जाती है। और किस तरह से ईश्वर का नाम हमारे जीवन, हमारे आसपास के वातावरण को पूरी तरह से परिवर्तित कर देता है।

कितना मधुर था ये भक्ति गीत, मानो इस भक्ति गीत को सुनते सुनते हम ईश्वर की शरण में चले गए। कहीं ना कहीं बहुत आवश्यक होता है दिन में कुछ समय निकालना, ईश्वर की शरण में जाना, उनका नाम लेना, उनका नाम जपना। ये कहीं ना कहीं हमें आंतरिक शक्ति प्रदान करता है, हमारे मन में जो है ईश्वर के प्रति आस्था और भी बढ़ती है, ईश्वर के प्रति विश्वास और भी बढ़ता है। चलिए इसी के साथ समय हुआ है कि भक्ति सागर इस कार्यक्रम के अंत तक हम आ गए हैं और इस अंतिम आरती के साथ आज के इस कार्यक्रम का समापन हम करते हैं। ईश्वर की अपार कृपा आप पर हमेशा रहे, ईश्वर सदा अपनी कृपा आप पर, आपके पूरे परिवार पर बनाए रखे, ऐसी कामना हम करते हैं। और इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ इस आरती के साथ भक्ति सागर इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। 5 बजे से शुरुआत होगी सदाबहार गीतों के प्रोग्राम की, तो आप हमारे साथ रेडियो मॉरिशस पर यूं ही जुड़े रहिए। धन्यवाद।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: MRIP est informe d'un contribuable individuel qui peut faire son return income tax ou ça l'année là, qui deadline c'est le 15 octobre. Attendez à le site web MRIP www.mri.mu, clique le e-filing season 26 et suivez ban instruction. Ou bien aide, prend un rendez-vous, le e-appointment, un officier MRIP pour aide ou remplir au return à travers un WhatsApp video call. Et puis, si vous soumettez au return au plus tard le 10 octobre, vous pouvez être éligible pour un tirage au sort que vous capable de gagner un des 25 cash prizes de 25 000 roupies. Pas attendre dernier l'air, faire au return income tax au plus vite.
0: 819 kHz, c'est Radio Mauritius. Radio Mauritius.
2: Sada Bahar ki. रेडियो मॉरिशस पर
3: गुरुवार 8 अक्टूबर शाम के 5 बज चुके हैं। रेडियो मॉरिशस पर एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का स्वागत हम करते हैं। सुमिता की ओर से प्यार भरा नमस्कार स्वीकार करें। हम आ गए हैं यहाँ पर 6 बजे तक आपके साथ साथ रहने वाले हैं और ऐसे तो दोपहर ही से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सदाबहार गीतों का ये जो प्रोग्राम है चलता है हर गुरुवार को शाम के 5 से 6 बजे के बीच। कुछ पुराने तराने आप लोगों के लिए हम यहाँ पर चलाते हैं, आपके ढेर सारे डेडिकेशन हमें मिलते हैं 5251700005 पर। और आज जो है नाना पाटेकर जी हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन नाना पाटेकर जी की जो कला है वो हमारे बीच हमेशा रहेगी। तो उन पर पिक्चराइज्ड गुलाम मुस्तफ़ा इस फिल्म के इस गाने के साथ उनको श्रद्धांजलि देते हुए आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं। और बहुत सारे उन पर फिल्माए हुए जो फिल्में हैं वो आज MBC के चैनलों पर चलाए जाएंगे और उनका भी आप जो है लाभ उठा सकते हैं, उन फिल्मों को आप देख सकते हैं। अभी के लिए आइए इस गीत के साथ आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं।

0: चौधरी छोड़ो उसे, कहीं नहीं भागेगी। इसने कितने पैसे दिए थे मुझे मारने के लिए?
1: 1 करोड़।
0: मैं 2 करोड़ देता हूं, मारो इसे। कहां से पैसे देगा ये? है क्या इसके पास? कल तक मेरे बाप के फेंके हुए टुकड़ों पर पल रहा था, आज मेरी मेहरबानी पर जी रहा है। कहां से लाएगा ये पैसे? मारो, मैं 3 करोड़ देता हूं, मारो इसे।
2: गुरुवार 8 अक्टूबर को एमबीसी 16 पर शाम के 7 बजे हिंदी फीचर फिल्म हम दोनों, नाना पाटेकर, ऋषि कपूर और पूजा भट्ट पर फिल्माई गई हिंदी फीचर फिल्म हम दोनों।
0: तुम क्या समझते हो, तुम्हारे लिए मेरे दिल में हमदर्दी है? रास्ते में मार देना चाहिए था तुम्हें। मारो इसे, इसके अलग से पैसे दूंगा। मारो, मारो इसे भी।
3: हमारे बाद महफिल में अफसाने बयां होंगे, बहारे हमको सुन लेंगे।
4: देखिए, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शौहरत है, इज्जत है, इतना रुतबा ही शर्म है कि किसी भी घर में अगर रिश्ता बनाना चाहूँ तो कोई ना नहीं कह सकता। बस एक अच्छा खानदान चाहिए, एक शरीफ नेक लड़का चाहिए। मैं ऐसा काला कलूटा वो गोरी चिट्टी इसलिए पूछ रहा है ना, शंकर शेट्टी 2 शादी किया मेरा बाप।
2: मराठी फिल्म अभिनेता विश्वनाथ पाटेकर, जिन्हें हम नाना पाटेकर के नाम से अधिक जानते हैं, 8 अक्टूबर 2026 को 75 वर्ष की आयु में उनके निधन की खबर ने बॉलीवुड इंडस्ट्री को हिला के रख दिया है। नाना पाटेकर ने अपनी अदाकारी से सभी के दिलों को छुआ है और आज हम उन्हें दिल से श्रद्धांजलि देते हैं। उनकी फिल्मों के माध्यम से वे सदा हमारे दिल में बसे रहेंगे। अंगार, तिरंगात, क्रांतिवीर, अग्नि साक्षी, खामोशी जैसी फिल्मों के मुख्य अभिनेता, आपको हमारा अंत

0: din naman.
1: kHz, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
2: सदाबहार की रेडियो मॉरिशस पर

0: ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं हैं, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहाँ आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी।

0: सदाबहार की रेडियो मॉरिशस पर।
1: जी हाँ, रेडियो मॉरिशस पर यह है सदाबहार गीत। मैं हूँ सुमी, आप सबका साथ दे रही हूँ हर गुरुवार की तरह, और आपका भी प्यार भरा साथ हमें मिल रहा है। इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है भला। सदाबहार गीतों की बात करें तो अगला जो तराना है, एग्रीमेंट फिल्म का ये गाना होगा शैलेंद्र सिंह जी की आवाज़ में। ऐसे शैलेंद्र सिंह जी ने उतने गाने नहीं गाए हैं, लेकिन जितने भी गाने गाए हैं ज़्यादातर गाने इनकी आवाज़ में बड़े ही कमाल के रहे हैं। शैलेंद्र सिंह जी गायकी के साथ साथ काफ़ी फिल्मों में इन्होंने एक्टिंग भी की है। और चलिए अभी के लिए बड़े ही प्यार से यहाँ पर अनीता जी मौदालबिया से हमारा साथ दे रही हैं। दिखती है कि नाना पाटेकर जी पर जो गाना हमने चलाया उन्हें बहुत ही अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया अनीता जी। यहाँ पर अगला मैसेज आया है सुबी जी की ओर से, वाकवा से हमारा साथ दे रही है, नाइस सिलेक्शन कह रही है, और आप आए बाहर आई, बहुत बहुत धन्यवाद। अर्जी, आप लोग जुड़ते हैं हमारे प्रोग्रामों से तो हमारे प्रोग्रामों में जो है बाहर आ जाती हैं, और बस आपका प्यार भरा साथ हमें यूं ही मिलता रहे। ऐसे तो ये फरमाइशी गीतों का प्रोग्राम नहीं है, फिर भी इतने सारे आपके मैसेजेस और डेडिकेशंस आते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। 5251700505 है नंबर हमारा आपके डेडिकेशंस के लिए, और ये तराना आप सभी के नाम।

0: सदाबहार गीत रेडियो मॉरिशस।
1: चलिए सदाबहार गीतों की जो दीवानगी है यहाँ पर जारी है रेडियो मॉरिशस पर, और आप लोगों के मैसेजेस और डेडिकेशंस की भी बरसात हो रही है। शाम का वक्त है, हमें यकीन है कि इन गानों को आप बहुत ही पसंद कर रहे हैं। और चलिए यहाँ पर गाना जाता है शोभा जी, आपके नाम शोभा पूरन जी जो वाकवा से साथ दे रही हैं। वो लिखती है कि नाना पाटेकर जी को उनके सभी के सभी फिल्म बहुत बढ़िया लगते हैं, वो हमेशा हम लोगों को याद आएंगे, और आज का प्रोग्राम भी उन्हें बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे नाना पाटेकर जी जो है उन्होंने काफ़ी फिल्मों में तो काम किया है, लेकिन उतने ज़्यादा गाने उन पर पिक्चराइज नहीं है, तो एक खूबसूरत सा गाना हमें मिला तो हमने उस गाने के साथ आज के प्रोग्राम की शुरुआत की। ऐसे आज नाना पाटेकर जी को श्रद्धांजलि देते हुए MBC के अलग अलग चैनलों पर उनकी फिल्में चलाई जा रही है, जिसका प्रोमो हमने थोड़ी देर पहले चलाया था, तो आप उन फिल्मों को ज़रूर देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शोभा जी, वाकवा से आप हमारा साथ दे रही हैं और प्रोग्राम को पसंद कर रही हैं। विश्वानी दुमन जी भी वाकवा से जुड़ी हुई है, बहुत बढ़िया गीत सुमी जी, किचन में हूँ और आपके बढ़िया गीत सुन रही हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद विश्वानी जी। अगला गाना आपके नाम और सभी दुमन परिवारों के नाम हम करते हैं। यहाँ पर एक और मैसेज आया है लक्ष्मी जी की ओर से, सुमी जी आप ठीक है, मैं भी आपके साथ हूँ। बिल्कुल हमें पता है लक्ष्मी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ संध्या आप को भी, और बिल्कुल आपका ये मैसेज हमें मिला इसके लिए धन्यवाद। और सुमी जी आपके प्यारे गाने के साथ जुड़े हुए हैं और गानों का आनंद ले रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आपने आनंद की बात की तो आनंद फिल्म का जो गाना है हमारे लिस्ट में है, तो चलिए इस फिल्म का ये गाना मुकेश साहब की आवाज़ में आप सभी के नाम हम करते हैं। और बिल्कुल 6 बजे तक हमारा ये जो सदाबहार गीतों का प्रोग्राम है चलने वाला है, तो आनंद फिल्म के इस गाने को मुकेश साहब की आवाज़ में आप सभी के नाम हम करते हैं। बिल्कुल ये जो फिल्म है अपने आप में बड़ी ही एक आइकॉनिक फिल्म रही है, जिसमें राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन जी नज़र आए थे, तो ये गाना आप सभी के लिए।

दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए।

जी हाँ, दिल उसे दो जो जहाँ दे दे, जहाँ उसे दो जो दिल दे दे। अंदाज फिल्म का ये बड़ा ही खूबसूरत सा गाना एक अलग अंदाज में अभी आपके लिए हमने चलाया रफ़ी साहब, आशा जी और साथियों की आवाज़ों में। और बहुत कम समय रह गया है और इस कम समय में इतने सारे मैसेजेस के हम क्या कहें। चलिए, इतना प्यार बरसाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते जी, रीच्ड होम। अच्छा, आप अभी अभी घर पहुंची है और डिनर बनाते बनाते सदाबहार गीतों के प्रोग्राम से जुड़ी हुई है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये मैसेज आया है बेलरोज से, शिमला जी की ओर से। और शिमला जी, चलिए उम्मीद करते हैं कि इन गानों के ज़रिए दिन भर की जो थकावट है वो दूर हो रही होगी और गानों को गुनगुनाते गुनगुनाते खाना बनाने का जो मज़ा है वो और भी बढ़ गया होगा, है ना। और यहाँ पर नमस्ते जी, मैं सरिता हूँ कटरबोन से, गाने बहुत अच्छे लग रहे हैं और नाना पाटेकर जी को श्रद्धांजलि वो कह रही है, बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, बिल्कुल बहुत अच्छे और उम्दा कलाकार थे वो। सरिता जी, आपके इस मैसेज के लिए धन्यवाद। शुभ संध्या सुमी जी, बहुत आनंद मिला आनंद फिल्म के गाने को सुनकर, बहुत बहुत धन्यवाद। मानिता जी फ्रांस से हमारे साथ हमेशा जुड़ती है और आपके इस मैसेज के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए, कभी कभार लोगों का एक बार लोग फ़ोन नहीं करते हैं, यहाँ पर कुछ लोग एक ही प्रोग्राम में दो दो बार हमारे साथ जुड़ते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सुबी जी लिखती है कि मैं और मेरे हस्बैंड जो है प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं और 60th बर्थडे था शायद आपके हस्बैंड का, आपने वही लिखा है, और इस गाने को आप लोगों ने गाया था, आई थिंक सो, या आपने सुना था, मैं आपके मैसेज को समझ नहीं पा रही हूँ, लेकिन कोई बात नहीं सुबी जी। चलिए, आप और आपके हस्बैंड ने अंदाज़ फिल्म के गाने को एंजॉय किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी के लिए ये जो गाना चल पड़ा है ये भी अपने आप में बड़ा ही लाजवाब है। 16 शुक्रवार इस फिल्म का तराना है, रविंद्र जैन, चंद्रानी मुखर्जी और साथियों की आवाज़ों में। एक नहीं कई जन्मों का तेरा मेरा साथ है। जन्मों के साथ का तो पता नहीं, 6 बजे तक तो हम आपके साथ साथ बिल्कुल यहाँ पर रहने वाले हैं।

0: सदाबहार की रेडियो मॉरिशस पर।
1: चलिए, जन्मों का तो पता नहीं जैसे कि हमने कहा, लेकिन जब भी मौका मिलेगा हम आप लोगों का साथ देने के लिए यहाँ पर ऐसे ही आते रहेंगे। और आपका ये जो प्यार है हमें खींच ही लाता है। बहुत बहुत शुक्रिया, आज भी इतने प्यार से आप जुड़े रहे, इतने सारे डेडिकेशंस, इतने सारे मैसेजेस। चलिए, आपने तो मानो हमारी शाम बना दी। जाते जाते ये आखिरी गाना सदाबहार गीत इस प्रोग्राम के अंतर्गत आप सभी सुनने वालों के नाम हम करते हैं शुभ संध्या आप सभी को। 6 बजे जो है आप सुन पाएंगे समाचार MBC रेडियो पर। हमारी आपकी मुलाकात जल्द फिर होगी, तो ऐसे ही साथ देते रहिए, हमारा रेडियो मॉरिशस को सुनते रहिए। और आज की ये शाम आप सभी के लिए बहुत अच्छे से बीते। नमस्कार आप सभी को हमारी।
2: तुमको

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस,
1: सभी को हमारा नमस्कार। शाम के ठीक 6 बजे हैं। पेश आज का पूरा समाचार बुलेटिन। सबसे पहले सुर्खियां। लाकाबियन फिनिक्स में के लोग कल रात पानी की कमी को लेकर हुए प्रदर्शन के बाद अंतरिम प्रधानमंत्री आर्यन नाबामागी ने जनता से समझ बूझ और धीरज रखने की मांग की। ऊर्जा मंत्री पत्रिका से आवादन ने बताया कि ये समस्या मऊवाक्वा जलाशय के सूखने के कारण पैदा हुई। अफ्रीका क्रेडिट रेटिंग एजेंसी यानी अफ्रा अगले 3 महीनों में अफ्रीकी देशों और कंपनियों की पहली क्रेडिट रेटिंग जारी कर सकती हैं। कल शाम मॉरिशस की मेजबानी में इस एजेंसी की औपचारिक रूप से लॉन्चिंग की गई। अफ्रा का उद्देश्य अफ्रीका की वित्तीय स्थिति का स्वतंत्र और भरोसेमंद आकलन करना है। फेसबुक पर प्रकाशित आपत्तिजनक और समस्याग्रस्त सामग्री की बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकार ने मीटा के प्रतिनिधियों के साथ एक कार्य सत्र आयोजित किया। इसमें मॉरिशस में कंटेंट मॉडरेशन की कमियों को सामने रखा गया और इस समस्या के समाधान के लिए संभावित उपायों पर चर्चा की गई। मशहूर फिल्म अभिनेता नाना पाटेकर की 75 साल की उम्र में निधन हो गया है। आज टर्की उन्हें कॉल

0: तक अरेस्ट हुआ। महाराष्ट्र सरकार ने ये घोषणा की है कि अभिनेता का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। और अब पेश समाचार विस्तार से। लाकावियन फिनिक्स के लोग कल रात सड़कों पर उतर आए थे। वजह ये थी कि उन्हें कई दिनों से पानी नहीं मिल रहा है। वे कम से कम 1 से 2 घंटे पानी देने की मांग कर रहे हैं ताकि उनका घरेलू वाटर टैंक भर सके। अंतरिम प्रधानमंत्री आर्या नावामागी ने जनता से समझबूझ और धीरज रखने की मांग की। ऊर्जा मंत्री फातिका सियाबादेन ने बताया कि ये समस्या मऊ फाकवा जलाशय के सूखने के कारण पैदा हुई है। सेंट्रल वाटर अथॉरिटी जनता को राहत देने के लिए रात दिन काम कर रही है। इस पर काविंता पेसा की रिपोर्ट पर अशिता रघु का विवरण पेश है।
1: सैपोल के बिशोलिन में कल शाम स्थिति कुछ समय के लिए तनावपूर्ण हो गई। पानी की किल्लत से परेशान वहां के स्थानीय लोग सड़क पर उतर आए और मुख्य सड़क को बंद कर दिया। उनकी मांग थी कि रोजाना 1 से 2 घंटे पानी की आपूर्ति की जाए ताकि वे अपने घरेलू पानी के टैंक भर सके। इलाके के सांसद भी मौके पर पहुंचे।
2: C'est pour cela que moi, avec Bouchard, nous là, nous apportons le soutien. Nous pouvons rester avec eux et nous faire un appel. Encore une fois, moi, je redemande mes habitants. Nous débloquons la rue parce qu'il y a des chemins bloqués jusqu'à la municipalité.
3: Moi, je l'appelle dans une situation pareille de crise. Au moins, la CWA prend la responsabilité. L'ordre de l'eau, au moins désertant, avec un peu de pression pour du moulin rempli de tank.
1: CWA की ओर से भेजे गए पानी के टैंकरों ने पूरी शाम इलाके में कई चक्कर लगाए और घरों के पानी के टैंक भरने में मदद की। रात करीब 9 बजे मुख्य सड़क को खोल दिया गया और स्थिति सामान्य हो गई। मऊवाकवा जलाशय में पानी का स्तर कम होने के साथ साथ मीनील जैसे सहायक जलाशय भी प्रभावित हुए हैं। ऊर्जा और सार्वजनिक सेवाओं के मंत्री पत्रिका सेवादेन के अनुसार यही लाकावेन और फिनिक्स इलाके में पानी की आपूर्ति में आ रही समस्याओं का एक कारण है। मंत्री ने आज सुबह लामारी वाटर ट्रीटमेंट स्टेशन का दौरा किया।
4: Qui fait pas de problème là qu'il faut parce que quand réservoir Ménil est rempli, nous pas pérer ici à 18 pieds. Nous peut arrive l'eau 15 pieds. Sans montrer qu'il y a un manque d'eau entre 15 et 18 pour un manque de pression. Ça veut dire qu'arriver, c'est qui 10 monde qui habite alimenté dans sa région là, l'île ça tous les jours quand ça monte, il vient 15 nous donner et n'a 10 monde pas gagné. Demain quand il est rempli Livine 15 ou Livine 14, j'y parais gagner encore. C'est même qui vous t'envoie, il y a 3 jours pour gagner de l'eau. Nous avons un manque de l'eau, pourquoi pas alimenter ce réservoir-là? Alors, rien ne fait. Mais seulement nous pouvons gérer avec ça qui nous est là. Ce n'est pas une situation idéale. Moi, j'ai une compassion terrible. Là. Je comprends quand tout le monde peut en colère. Puis, je comprends. Moi, pas, au contraire, je ne suis pas en colère ça va du monde là. Je comprends. Qu'ils ont pu souffrir parce qu'ils ont des lots, ils ont besoin des lots pour vivre. C'est pas possible, c'est 3-4 jours. Mais nous avons une situation qui nous peut bien gérer telle qu'il était.
1: पानी की इस किल्लत के बीच कार्यवाहक प्रधानमंत्री आर्या नावामागी ने भी मॉरिशनों से सहयोग की अपील की है।
5: Nos réservoirs pas pé remplis comme on besoin rempli. Et deuxièmement, il y a un tuyau qui demande à être remplacé. Depuis des années pas fini remplacer tuyau et ça pour un projet à long terme, nous ne sommes pas capables de résoudre le problème tout de suite, mais tigit, nous sommes capables de régler les. Donc, je demande de faire un appel à la population et dans un tigit compréhension, un tigit patience. Donc, donne-nous coup de main, comment dire, pour essayer de trouver une solution à ce problème-là.
1: इस बीच सेंट्रल वाटर अथॉरिटी ने जमीनी स्तर पर अपनी कार्रवाई तेज कर दी है और लोगों से पानी का सोच समझकर इस्तेमाल करने की अपील की है।
0: हमारे जलाशयों में खासकर मऊ फाकवा में पानी के स्तर के चिंताजनक स्थिति से कम होने के कारण CWA पानी की आपूर्ति बरकरार रखने के लिए अतिरिक्त कदम उठा रही है। आज सुबह ऊर्जा मंत्री पत्रिका सियावादेन ने लामारी ट्रीटमेंट प्लांट का दौरा किया ताकि स्थिति का जायजा लिया जा सके और समाधान ढूंढे जा सके।

0: इस पर पेश है ये रिपोर्ट।
1: लामाहरी में पानी की कमी का असर सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है। मोगवाक्वा जलाशय पर निर्भर इस वाटर ट्रीटमेंट स्टेशन को अब सामान्य क्षमता की तुलना में काफी कम मात्रा में पानी के साथ काम करना पड़ रहा है। उपलब्ध ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 6 अक्टूबर को मोगवाक्वा में पानी का स्तर सिर्फ 35.9% था। आमतौर पर लामाहरी वाटर ट्रीटमेंट स्टेशन तक हर दिन करीब 1,10,000 क्यूबिक मीटर पानी पहुँचता है, लेकिन अब इसमें काफी कमी आई है। मंत्री पात्रिक सियावादेन कहते हैं कि आज स्तर 56,000 क्यूबिक मीटर पहुंच गया है, कल 61,000 क्यूबिक मीटर था। हर रोज ये घटता जा रहा है और इस 56,000 क्यूबिक मीटर पानी को इन इलाकों के 1,05,000 बाशिंदों में वितरित करना होगा जो लामाहरी स्टेशन से आपूर्ति लेती हैं। इसीलिए 2-3 दिनों से पानी बंद है। मोगवाक्वा से स्वयं लामाहरी को आपूर्ति करने वाला पानी बंद हो गया है। CWA वहाँ पानी रोकने नहीं गया, यहाँ स्वयं ही कम पानी सप्लाई आ रहा है, अतः हमारे पास जितना पानी है उससे ही काम करना पड़ रहा है। इसलिए प्राथमिकता अब पानी के दूसरे स्रोत तलाशने की है। CWA के टेक्नीशियन नदियों के पानी को फिल्टर करने के लिए विशेष उपकरणों के इस्तेमाल की संभावना तलाश रहे हैं। इसके साथ ही नए बोरहोल्स से पानी निकालने पर भी विचार किया जा रहा है।
2: Nous pérons dès l'eau dans la rivière qui est là autour de Mogowaqua ou Lamaahri.
1: हम मोगवाक्वा तथा लामाहरी के आसपास की नदियों से पानी ढूंढ रहे हैं जिसे नेटवर्क में पानी भेज सके, जिससे 110 से 156,000 बाशिंदों को पानी उपलब्ध कराया जा सके। हमें आने वाले सप्ताहों में 13 अक्टूबर तक इलाके के बोरहोल्स को लामाहरी की नेटवर्क से जोड़ना है, जिससे क्षमता बढ़ सके, यानी 70,000 क्यूबिक मीटर पानी नेटवर्क में भेजा जाएगा, क्योंकि हमें 110 से 56,000 बाशिंदों के लिए पानी उपलब्ध कराना है।
2: 60,000 मीटर क्यूब डेलो encore l'eau ça réseau la Marie là. Qui fait nous peut faire ça pour compense sa perte entre 110,000 aujourd'hui et 56,000.
1: एक और विकल्प के तौर पर लामाहरी वाटर ट्रीटमेंट स्टेशन के जलाशयों के प्रबंधन की समीक्षा की जा रही है, ताकि पानी की आपूर्ति को बेहतर तरीके से नियंत्रित किया जा सके और नेटवर्क में पानी का दबाव भी सुधारा जा सके। CWA स्थिति का अध्ययन कर रहा है, जहां देखेंगे कि हम टैंक को पूर्ण रूप से प्रेशर के साथ भर पाएंगे और इसके बाद 2 इलाकों में आपूर्ति कर पाएंगे। कल एक अन्य इलाके में वितरण पूरी क्षमता यानी प्रेशर में कर पाएंगे, अतः जिन्हें परसों पानी मिला है उन्हें आज पानी नहीं मिलेगा। सभी के पास टैंक होना जरूरी हो गया है। फिलहाल सेंट्रल वाटर अथॉरिटी पानी की कमी से सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में आपूर्ति व्यवस्था में बदलाव कर रही है और पानी के टैंकरों का इस्तेमाल भी बढ़ाने की तैयारी है। बारिश लौटने का इंतजार है, तब तक पानी की हर बूंद का सही इस्तेमाल और उपलब्ध पानी का बेहतर प्रबंधन बेहद जरूरी हो गया है।
0: अफ्रीका क्रेडिट ट्रेडिंग एजेंसी यानी अफ्खा अगले 3 महीनों में अफ्रीकी देशों और कंपनियों की पहली क्रेडिट रेटिंग जारी कर सकती हैं। कल शाम मॉरिशस की मेज़बानी में इस एजेंसी की औपचारिक लॉन्चिंग की गई। अफ्खा का उद्देश्य अफ्रीका की वित्तीय स्थिति का स्वतंत्र और भरोसेमंद आकलन करना है। इसके तहत महाद्वीप की वास्तविक आर्थिक परिस्थितियों को अधिक ध्यान में रखा जाएगा। लॉन्चिंग समारोह के दौरान अफ्खा की पहली संचालन टीम का भी परिचय दिया गया। 156 नर्सिंग अफसरों को आज MGI में आयोजित एक समारोह के दौरान उनकी डिग्रियां प्रदान की गई। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री ने ऐलान किया कि बहुत जल्द हमारे अस्पतालों में 200 नर्सों की भर्ती की जाएगी। करुणा लालू को सुनते हैं।
3: आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका इंतजार इन 156 नए नर्सों को था। स्कूल ऑफ नर्सिंग में वर्षों की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद अब उन्हें नर्सिंग में राष्ट्रीय डिप्लोमा प्राप्त है।
4: Maintenant, j'ai plus de maîtrise, j'ai plus de connaissances.
3: अब ज्यादा कुशलता प्राप्त हुई। सेंट्रल स्कूल ऑफ नर्सिंग के प्रशिक्षण की बदौलत ये मरीजों के लिए भी बेहतर होगा।
5: C'était vraiment dur.
3: कठिन था लेकिन सफल रहे।
5: मन कोलेग की मन गया ऐसी मोबाइल कमागाड
3: अपने साथियों और ट्यूटर के साथ सब ठीक से चला और रोड्रिक्स लौट कर काम करूंगी, अपनी बेहतरीन सेवा दूंगी। मिडवाइफ हूँ, अब जनरल नर्सिंग करूंगी, मरीज

0: मरीजों को बेहतर सेवा दूंगी। एक भाई और बहन के लिए नर्स बनना एक पारिवारिक परंपरा को आगे बढ़ाने जैसा भी है। ये पेशा बहुत पसंद करते हैं, इसके लिए बहुत साहस और धैर्य चाहिए, मानवता और दूसरों की मदद की भावना भी। मैं बहुत केयरिंग हूँ, लोगों की सेवा करना बहुत पसंद करती हूँ। ह्यूमन टच भी है जिसकी जरूरत इस पेशे में है। मेरा एक बेटा फ्रांस में एक बड़ा नर्स है, मेरी बहनें इंग्लैंड में नर्स हैं, पूरा परिवार इस पेशे में लगा हुआ है। ये प्रशिक्षण तकनीकी कौशल विकसित करने से परे नर्सिंग को और अधिक पेशेवर बनाने में भी योगदान देता है। 3 साल पहले प्रवेश पाया, बहुत कम स्टाफ के साथ काम पूरा किया। स्वास्थ्य मंत्री अनिल बेचू ने मरीजों की देखभाल में नर्सों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। ये हमारी प्रणाली को बेहतर करने में मदद करेगी। ये शुरुआत है। पीएससी के जरिए 200 नर्सों की भर्ती की जाएगी, जिनमें 60 वरिष्ठ नर्सिंग अफसर भी हैं, जिनका 10 साल के अनुभव हैं, जो विदेश से हैं, कमी के कारण डिप्लोमा होल्डर को भी ले रहे हैं। अपने डिप्लोमा और जानकारी तथा उससे भी बढ़कर मानवीय संवेदनाएं मरीजों की सेवा में समर्पित होंगी।
1: हर दिन फेसबुक पर प्रकाशित करीब 20 पोस्ट को लेकर शिकायतें अधिकारियों तक पहुंचती हैं, लेकिन इन शिकायतों पर कार्रवाई के नतीजे अक्सर सामने आने में समय लगता है। आपत्तिजनक और समस्याग्रस्त सामग्री की बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकार ने मेटा के प्रतिनिधियों के साथ एक कार्य सत्र आयोजित किया। इस बैठक में मॉरिशस में कंटेंट मॉडरेशन की कमियों को सामने रखा गया और इस समस्या के समाधान के लिए संभावित उपायों पर चर्चा की गई। नेशनल क्राइम एजेंसी इंटरिम बिल को लेकर डीपीपी द्वारा आयोजित एक चर्चा में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। इस चर्चा में अगले महानिदेशक के अधिकार और उनकी पहचान, नागरिकों की निगरानी को लेकर आशंकाएं तथा पुराने और अनसुलझे मामलों यानी कोल्ड केसेस को दोबारा खोलने जैसे मुद्दे शामिल रहे। एमएसएम के नेता प्रवीण जगनाथ ने आज सेंट्रस्ट बिल्डिंग पोर्टलिस में एक प्रेस सम्मेलन लगाया। उन्होंने मुख्य रूप से देश में पानी की स्थिति और स्टेट ऑफ इकोनॉमी नामक दस्तावेज पर बात की, जिसे 2024 में प्रधानमंत्री डॉ. नवीन रामगुलाम ने पेश किया था। प्रवीण जगनाथ के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा सुपुर्द एक रिपोर्ट में स्टेट ऑफ इकोनॉमी में दिए गए आंकड़ों से असहमति जताई गई है। करुणा लालू को सुनते हैं।
0: एमएसएम के लीडर प्रवीण जगनाथ ने 2025 में सरकार को सौंपी गई अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की एक रिपोर्ट का उल्लेख किया। उनके अनुसार स्टेट ऑफ द इकोनॉमी दस्तावेज में आंकड़ों में कुछ विसंगतियां थीं।
2: पूर लानी 2020 स्टेट ऑफ द इकोनॉमी इन रेगेट नू जीडीपी अ ला बेस सा नू गवर्नमेंट सा इन बेसली आ 570.3 मिलियन रुपी। Le vrai chiffre qui a IMF India, c'est 623.1 milliards de roupies. Nous get 2023, c'était là. State of the economy, Jiaou, 641.3 milliards de roupies, GDP. Et vrai chiffre, c'est 695.2 milliards de roupies. À ça nous vient le 2024. Et GDP, selon State of the Economy, 698.5 milliards roupies. IMF rappelle sa gouvernement-là à l'ordre, dire qu'il vrai chiffre, c'est 756.7 milliards de roupies. Un trou qui existe, d'après IMF, en 2022 à 2024, il totalise 164.9 मिलियन रुपी।
0: प्रवीण जगनाथ ने देश में पानी आपूर्ति की कठिनाइयों पर भी बात की। उनके अनुसार मौसम संबंधी पूर्वानुमानों और सेंट्रल वाटर अथॉरिटी की चेतावनियों को देखते हुए सरकार को इस स्थिति के लिए पहले से तैयारी करनी चाहिए थी। उन्होंने ईंधन की कीमतों में वृद्धि तथा रिटायरमेंट पेंशन, सामाजिक भत्तों और पे रिसर्च ब्यूरो की रिपोर्ट के संबंध में भी अपनी

0: चिंताएं व्यक्त की।
1: जाने माने अभिनेता नाना पाटेकर का 75 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट के बाद निधन हो गया है। भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि नाना पाटेकर जैसे विशिष्ट व्यक्तित्व और अनोखा प्रभाव बहुत कम अभिनेताओं में देखने को मिलता है। नाना पाटेकर का हिंदी और मराठी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ा योगदान है। महाराष्ट्र सरकार ने ये घोषणा की है कि अभिनेता का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। विधिमासी बुरन को सुनते हैं।
2: बम्बई आए वाले का पहला कदम नहीं पड़ा।
3: अरे अपना जिंदगी के वास्ते सबका जिंदगी बिगाड़ देगी क्या?
4: हिंदी सिनेमा के दमदार कलाकारों में शुमार नाना पाटेकर आज हिंदी सिनेमा से विदा ले रही है। अपने कई दशकों लंबे फिल्मी करियर में उन्होंने ऐसे किरदार निभाए जो आज भी दर्शकों के दिलो दिमाग में एक अमित छाप छोड़ गई है। क्रांतिवीर, परिंदा, प्रहार और अब तक 56 जैसी फिल्मों में नाना पाटेकर ने अपने गंभीर और प्रभावशाली अभिनय से अलग पहचान बनाई। लेकिन उनका एक दूसरा अंदाज भी दर्शकों को खूब पसंद आया। 2007 की फिल्म वेलकम में उनके किरदार उदय शेट्टी ने उन्हें एक अलग ही अंदाज में लोकप्रिय बनाया।
5: अरे एक्साइटमेंट मतलब क्या? कहाँ बैठा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ, समझ में नहीं। कंट्रोल उदय,
4: और कंट्रोल मजनू कंट्रोल जैसे संवाद आज भी मीम और सोशल मीडिया रील्स में सुनाई देते हैं। नाना पाटेकर सिर्फ अभिनेता नहीं थे, उन्होंने रंगमंच, मराठी सिनेमा और फिल्म निर्देशन में भी अपनी पहचान बनाई। गमन से शुरू हुआ उनका सफर कई यादगार फिल्मों तक पहुंचा। गंभीर भूमिकाएं हो या कॉमेडी, नाना पाटेकर ने हर किरदार को अपनी अलग आवाज और अंदाज दिया।
6: कैसे बताऊं मैं तुम्हें, तुम धड़कनों का गीत हो, जीवन का तुम संगीत हो, तुम जिंदगी, तुम बंदगी, तुम रोशनी, तुम ताजगी, तुम हर खुशी, तुम प्यार हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो।
4: कभी वे वजूद फिल्म में कविता सुनाते हुए अपने लफ्जों से हर सीन को जीवित कर लेते, तो कभी खामोशी से बिना शब्द के जज्बातों को दिल में उतार देते। आज उनके निधन के साथ हिंदी सिनेमा ने एक ऐसा कलाकार खो दिया है जिसकी आवाज, संवाद, अदायगी और किरदार लंबे समय तक दर्शकों की यादों में बने रहेंगे।
1: और अब पेश है मौसम संबंधी जानकारियां करुणा लालू के साथ।
0: हमारे इलाके पर हल्की से कुछ तेज हवा पाई जा रही है। अनुमान है कि रात के दौरान आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे। कल सुबह भी और ऊंचाइयों पर जहां तहां थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। दोपहर में कुछ घरी के लिए बादल घेर आएंगे, खासकर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम एवं सेंट्रल प्लाटू पर, और जहां तहां थोड़ी बहुत बारिश होगी। अन्य इलाकों में हल्के बादल छाए रहेंगे। तापमान सेंट्रल प्लाटू पर न्यूनतम 17 से 19, अधिकतम 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच। साहिली इलाकों में न्यूनतम तापमान 20 से 22, अधिकतम 27 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। प्रवाह रेखा से परे समंदर चंचल रहेगा। दक्षिण पूर्व में लहरें 2.50 मीटर तक हो सकती हैं। रात के दौरान दूर समंदर में न जाने की सलाह दी जाती है। कल सुबह समंदर की स्थिति में सुधार आएगा। सूर्यास्त 6:09 पर, कल सूर्योदय 5:44 पर।

0: और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन पूरा हुआ। इसे आप तक पहुंचाने में हमें फैजन का सहयोग मिला है, उन्हें धन्यवाद देते हैं। आपको भी आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। कुछ ही देर में शोक समाचार सुन सकेंगे।
1: Your news on NBC Play and NBC.mu.
0: अपना लेन शामुनी में 75 साल के 75 ईयर ओल्ड के श्री मौडे काटों, जो वासन से ज्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल सुपहर बाद के 3 बजे उनके घर अपना लेन शामुनी से उठाकर

0: MBC Radio 24 hours a day.
1: सीबी अपने ग्राहकों को सूचित करता है कि मरम्मत कार्यों की वजह से इन इन इलाकों में बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। कल शुक्रवार 9 अक्टूबर को दिन के 3:30 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक विलाज दे मेलरोज में और आसपास के इलाकों में रेजिडेंस अगात मोसलमान मों प्लेजियर NHDC मेलरोज रू दे लेकल मोसलमान कोऑपरेटिव मेलरोज और आसपास के इलाकों में बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। और शनिवार 10 अक्टूबर को सुबह के 8:30 बजे से लेकर दिन के 3 बजे तक रेजिडेंस लाक्यूर और आसपास के इलाकों में रॉबर्ट स्कॉट क्राउन लैंड रॉबर्ट स्कॉट टी रोड्रिग और CWA लाक्यूर में भी बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। मरम्मत कार्यों के समाप्त होने पर बिना सूचना दिए ही बिजली की सप्लाई फिर से जारी कर दी जाएगी और सीबी अपनी ग्राहकों से क्षमा चाहते हैं और अपना इंतजाम करने की मांग करते हैं। शुक्रिया।
2: रेडियो मॉरिशस 800 किलोहर्ट्ज़ पर।

नजर चव्हाण काळ जात घुमशान खोल जाऊन रुतल

0: ABC Radio 24 hours a day.
1: बजले प्रभु का नाम रेडियो मॉरिशस के लहरों पर. बजले प्रभु का नाम. नमस्कार श्रोताओं. श्रोताओं, प्रभु का नाम भजना मजाक नहीं है. जरा नाम जप करके तो देखिए, कितने समय तक आप विचार शून्य होकर प्रभु का नाम जप सकते हैं. जब हम प्रभु का नाम भजते हैं तो विचार शून्यता की ओर बढ़ना चाहिए, नहीं तो वह विचार प्रभु नाम पर भी हावी हो जाते हैं और फिर नाम बीच बीच में छूट जाता है. इसलिए बहुत ज़रूरी है कि मन को एकाग्र करके प्रभु का नाम भजा जाए. आइए सुनते हैं.

श्रोताओं, पीपल के नीचे एक भक्त बैठा था और एक भक्त बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था। नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। एक भक्त ने पूछा, भगवान कब मिलेंगे? दूसरे ने भी पूछा, मुझे कब मिलेंगे? तो नारद जी ने कहा, अच्छा मैं भगवान से पूछ के तुम लोगों को बताऊंगा। कहते हैं कि नारद जी ने बरगद वाले को कहा कि तुम्हें इसी जन्म में भगवान मिल जाएंगे, और जो पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था उसको कहा कि जितने पीपल के पत्ते हैं उतनी भक्ति अभी और चाहिए, तब जाकर तुमको भगवान मिलेंगे। बरगद वाला बोला, इसका मतलब अभी और प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। लेकिन पीपल के वृक्ष के नीचे वाला तो नाच उठा। उसने कहा, प्रभु तुम जानते हो मुझे ना, धन्यवाद, तुम प्रकट हो जाओगे क्योंकि तुमने भाव में मुझे ले लिया है। बरगद वाला इसलिए दुखी था कि अगले जन्म में, लेकिन पीपल वाला प्रसन्न था कि प्रभु मुझे पहचान रहे हैं। तो श्रोताओं, विनम्रता भक्ति में बड़ी ज़रूरी है।

श्रोताओं, जितने भी बड़े भक्त हुए हैं उन्होंने इस अहंकार पर ही विजय प्राप्त की है। हनुमान जिसने अपने मान का हनन कर दिया, किसी तरह का कोई अहंकार नहीं, कोई अहम भाव नहीं, ऐसा भक्त ही सच्चा भक्त बन पाता है।

0: और अंत में श्रोताओं, भजले प्रभु का नाम। जब हम प्रभु नाम से जुड़ जाते हैं तो राम कृपा मिलने लग जाती है, और जिसको राम कृपा मिल गई वह तो मानो बड़े से बड़े कार्य को भी सहज भाव से कर लेता है, क्योंकि राम मंगलमय हैं, प्रभु भला करने वाले हैं। जिसने भी प्रभु के साथ बिना विलंब किए अपने आप को जोड़ा, उसे प्रभु ने अपनी सुखदायिनी भक्ति प्रदान की। तो श्रोताओं, क्यों ना हम भी भजले प्रभु का नाम, अर्थात उस प्रभु से जुड़े, उनके पद पंकज में अपना सिर नवा सकें और समझ सकें कि जब आप सकारात्मक होकर प्रभु का ध्यान करते हैं तो प्रभु सदैव आपके साथ होते हैं और प्रभु आपकी रक्षा करते हैं। तो श्रोताओं, इस अंतिम भजन के साथ अनुमति दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।
1: इस भजन में राम भक्त गिद्धराज जटायु का वर्णन किया गया है।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मज़ीद सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आज की उर्दू नशियात महफिल शब में समीर आप तमाम सामीन का खैर मकदम खुलूस कल्ब से करता है। उम्मीद है कि आप तमाम सामीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़्ल व करम से खैर वाफियत से हैं। मोहतरम सामीन, आइए महफिल शब की इब्तिदा इस खूबसूरत कलाम से करते हैं।

हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने उस शख्स के लिए उज़्र की गुंजाइश बाकी नहीं रखी जिसकी उम्र को 60 साल तक मौखर किया, यानी उसे इतनी उम्र अता फरमाई। इस हदीस में इंसान को उम्र की कदर करने की तरफ मुतवज्जो किया गया है। जब अल्लाह ताला किसी इंसान को लंबी ज़िंदगी अता फरमाता है तो उसके पास तौबा, इबादत, नेकी और इस्लाह के बहुत से मौके आते हैं। लेकिन अफसोस कि इंसान अक्सर कहता रहता है कि अभी उम्र पड़ी है, बाद में नेक बन जाएंगे। वक्त गुजरता रहता है और अचानक बुढ़ापा आ जाता है। इस हदीस का मकसद ये है कि इंसान को मौत और आखिरत को याद रखते हुए आज ही नेकी की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए, क्योंकि किसी को मालूम नहीं कि उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन कौन सा है।

हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन बंदे से उस वक्त तक सवाल किया जाएगा जब तक वो अपनी उम्र के बारे में ये न बता दे कि उसे कहाँ गुजारा, अपनी जवानी के बारे में कि उसे किन कामों में ख़त्म किया, और अपने माल के बारे में कि कहाँ से हासिल किया और कहाँ खर्च किया, और अपने इल्म के बारे में कि उसके साथ क्या अमल किया। यह हदीस हमें खालिस तौर पर जवानी और वक्त की कदर सिखाती है। जवानी इंसान की ताकत और सलाहियत का बेहतरीन दौर है। अगर ये वक्त इल्म हासिल करने, इबादत, वालिदैन की खिदमत, माशरे की भलाई और हलाल मेहनत में गुजारा जाए तो यही जवानी आखिरत का बेहतरीन सरमाया बन सकती है। लेकिन अगर यही वक्त गफलत, गुनाहों और फजूल मशागिल में ज़ाया कर दिया जाए तो बाद में पछतावा बाकी रह जाता है। आज मैंने अपने वक्त से क्या हासिल किया, इसलिए हमें हर दिन अपने आप से पूछना चाहिए। सामिन मोहतरम, महफिल शब प्रोग्राम अपने अख्तिताम को पहुंच रहा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वह हमें आज की हदीसों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आइए महफिल शब के आखिर में रसूल अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में सलाम का नजाना पेश करते हैं। अगली मुलाकात तक समीर को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह।

0: भोजपुरी
1: भोजपुरी तड़का
0: तड़का
2: रात्रि के सुंदर बेला बा और तोहर सुनहरा साथ बा भोजपुरी प्रेमी लोगन और संगतिया लोग उषा के नमन स्वीकार करा जा भोजपुरी तड़का तोहर बरिया प्रोग्राम तोहर खातिर रोज चलेला और आज भी तोहर सेवा में हम आगे सा और हिया परी नंबर वा घुमावा का थो वै सैक और अपन मनपसंद गीत की फरमाइश करा जा और उषा तोहर संगे अभी से रात के 11 बजे ले तो चला शुरू करी जा

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: भोजपुरी भोजपुरी तड़का तड़का
2: रात के 9:17 हो गल बा श्रोता लोग, तो चल भोजपुरी तड़का तुहर खातिर रेडियो मॉरिशस और आरएम फ्री रेडियो पर रेडियो मनोरंजन। चल अगला गीत सुनीता जी खातिर जो हमने के सुनाता रोजिल से गाना मांगा तवंजा अपन पति देव खातिर और बेटे कुश खातिर।

रात के 9:30 प्यारे साथी लोगन ने ई भोजपुरी तर का तोहर अपन प्रोग्राम है जेकर से तोहर रात्रि एकदम मस्त हो जाला। बहुत धमाकेदार शुरुआत होल जलसा के रात बा कितवा से ना एक तरफ जलसा गमत त दूसर का तरफ पूरा बॉलीवुड में सन्नाटा छा गल बा। काहे कि आज भारतीय सिनेमा के एगो सच्चा सापूत श्री नाना पाटेकर जी के स्वर्गवास हो गल। सब कोई तो बहुत दुखी हो गल बा ही दुखद समाचार से। का करबा जे आयल बा तो ओकरा जाए के भी परेला। दुनिया के पुराना रेत है तो चला अगला गीत रॉय खातिर जोन काम करेला विक्टोरिया हॉस्पिटल में गाना एकर खातिर और एकर सभी कोलीग्स खातिर।

0: भोजपुरी
1: भोजपुरी तड़का
0: तड़का
1: भोजपुरी
0: भोजपुरी
1: तड़का
0: तड़का
2: नौ बजकर 41 मिनट हो गल बा श्रोता लोग तपिया नाना पाटेकर जी के बारे में बात होल। ऐसा कलाकार बार बार जन्म नए लेवेलन जा है ना। नाना जी की भूमिका, अंदाज, डायलॉग बाजी, हंसने के स्टाइल, एक्शन करे के सबसे हट के बातें, सभी फिल्म उनकर बहुत बढ़िया रहल। चाहे अग्नि साक्षिक हो या खामोशी, वेलकम, परिंदा, एक से बढ़कर एक मूवी। चला आगे बढ़े और यहाँ पर ही हमने के सुनता अनीता जी, जी हाँ, काठोबोन से गाना मांगा था वंजा अपन बेटा अक्षय खातिर और बहू रीना खातिर और सभी रामलोगन परिवार खातिर।

0: भोजपुरी तड़का। भोजपुरी तड़का।
1: रात के 9:53 हो गल बा। ई अक्टूबर महीना त बहुत विशेष बाती। रविवार से दुर्गा पूजा आरंभ होता और ई महीना में त बॉलीवुड कलाकार लोगन के जन्मदिन भी मनावल जाला, जैसे अमिताभ बच्चन जी, रेखा जी, सनी देओल जी और रवीना टंडन, हेमा मालिनी, कुमार सानू और अभिजीत। त चला अगला गीत, कृषि के गावल गीत, खासकर अमृता जी खातिर जोन रहीला क्यूपिप गाना मांगत वंजा अपन खातिर और हमारे तमाम सुनने वाली खातिर।

0: भोजपुरी तड़का।
1: रात के 10:06 हो गए बा संगतिया लोग। हमने के देश में जहाँ भोजपुरी कलाकार लोगन के ढेर मान बाते, वही पर बॉलीवुड के गायक लोगन की भी बहुत प्रतिष्ठा बा। 13 अक्टूबर के किशोरदा के पुण्यतिथि बाते, चला उनका तो कबू नहीं सकब भूला सा। उनकर याद में एगो छोटा सन टुकड़ा गावत है, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम। जी हाँ छोटा लोग, सब गीतवन किशोरदा की तो जबरदस्त है। तो चला अगला गीत सुना जा, गीता गजाधर के कावल गीत।

0: भोजपुरी तड़का।
1: रात के 10:24 हो गए बा श्रोता लोग, आजकल सभी के होंठ पर भोजपुरी गीतवन के मार भा। जहाँ दिग्गत भोजपुरी गाना के बम्बारी होता, ये भाषा के और ही आगे बढ़ाए के जिम्मा हमनी सबके है। चला तो हर सहयोग सहित ही संभव है। अगला गीत सुदेश भोजो के गावल गीत बरका बरका मामा। चला बरका मामा और ये गाना खास कर सुदेवी जी खातिर जन रही सुया कौरी बखत हमने के सुनाता और गाना मांगा तो वंजा अपन खातिर, पति राजन खातिर और बेटी आयुषी खातिर।

0: भोजपुरी तड़का। भोजपुरी तड़का।
1: रात के 10:40 हो गए बा श्रोता लोगन, अभी हमने इगो कठिन दौर से गुजरा था ही था। वर्षा के कमी बा सबसे बड़ा हिजेवा जो हम माओ वाकवा हो जा पानी के स्तर गति जाता। चल सब कोई मिलजुल के ईश्वर से प्रार्थना करी ला के ताकि बहुत वर्षा हो। आगे कर जमाना में बहुत पूजा पाठ होत रहल पानी बरसात खातिर। हर परोरी एगो ऐसन पूजा है जेकर करला से बारिश होत रहल। तो चला अगला गीत सुना जा, सोना नोयन के गावल गीत और गाना नसीम खातिर जो हमने के सुना था भुजिया से, और गाना मांगा तवन जा अपन बहन खतीजा खातिर।

0: भोजपुरी
1: भोजपुरी तड़का
0: तड़का
1: भोजपुरी
0: भोजपुरी
1: तड़का
0: तड़का।

संगतिया लोगन, आशा बात है कि हमने के कार्यक्रम तोहरा पसंद पड़ल और ऐसे ही साथ देते रहिया। तोहर सेवा करे के मौका मिलल हमके, सेवा कर ली तो मेवा हमके मिली। हाँ, मेवा के मतलब तोह लोग सब के प्यार हमने के प्राप्त होला। चला आज्ञा चाहत हैं। नमस्ते और शुभ रात्रि।

0: नमस्कार, मैं हूं नमनी और आप कनेक्टेड है सुनहरे पल में। रात गहरी हो चुकी है, शहर की रौनक धीरे धीरे थम रही है, लेकिन कुछ कहानियां अभी भी जाग रही है। और आज की रात हम लौटेंगे उन सुरों की दुनिया में, 60s, 70s, 80s, जब गीतों में सादगी थी, अल्फाजों में गहराई थी और धुनों में एक अलग ही जादू था। सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: खवातीन और हजरात, आज की शाम इस महफिल में आपके पसंदीदा कव्वाल जनाब चुलबुले असरानी साहब को बुलाया गया था, मगर अचानक तबीयत खराब हो जाने की वजह से वो चुलबुले गुलगुले होकर बुलबुले हो चुके हैं और इसलिए यहां नहीं आ सके। उनके ना आने की मैं जनाब कर्नल टिप्सी से माफी चाहता हूं, इस गुजारिश के साथ कि उनकी ये हसीन महफिल साज और आवाज के जादू से महरूम नहीं रहेगी। अगर मेरे सीने में दिल है और उस दिल में तड़प, तो उसका असर लाजमी है। अपनी आवाज से सब दिलों को जीतने का वादा तो नहीं कर सकता, मगर हुजूर, ये नाचीज अगर एक रात में एक दिल भी जीत सका तो मेरी किस्मत चमक उठेगी।

कुछ गीत केवल सुने नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं, और पुराने गीतों की तो बात ही कुछ और है। एक धुन चलती है और अचानक कोई चेहरा, कोई जगह, कोई पुराना लम्हा याद आ जाता है। तो चलिए उन्हीं गलियों में आपको ले चलते हैं।

जरा सोचिए, अगर आपको अपनी जिंदगी के किसी एक खूबसूरत पल में वापस जाने का मौका मिले तो कौन सा गाना उस पल के साथ चलेगा? शायद आपका जवाब इसी अगले गीत में छुपा हो। जाने के लिए साथ देते रहिए आपकी सुनहरी पल में।

मोहब्बत के जमाने बदल गए, अंदाज बदल गए, लेकिन मोहब्बत के एहसास को बयां करने वाले कुछ गीत आज भी उतने ही खूबसूरत ही है। चलिए एक ऐसे ही गीत के साथ रात को थोड़ा और हसीन बनाते हैं।

60s के गीतों में एक अलग ही मिठास थी, साफ अल्फाज, कोमल धुने और आवाज में वो ठहराव। अब चलिए उसी सफर को आगे बढ़ाते हैं और पहुंचते हैं 70s के दौर में, जहां रोमांस भी था, मस्ती भी थी और जिंदगी के रंग भी।

हर किसी के पास एक पुराना गीत होता है जो सुनते ही दिल के किसी कोने का दरवाजा खोल देता है। आज रात अगर कोई ऐसा गीत आपको मिल गया हो तो समझिए हमारी महफिल सफल हुई। मैं हूं नलिनी और आप सुन रहे हैं वो संगीत जो वक्त के साथ पुराना नहीं बल्कि और हसीन हो जाता है। तो इसी के साथ आपको विश करते हैं शुभ रात्रि।